FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के बैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान

0: वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है समय का सदुपयोग।
3: जो कर्तव्य कल करना है उसे आज ही कर लेना अच्छा है। मृत्यु बड़ी निर्दय है, वे कब आ जाएगी उसका कुछ पता नहीं। कल के भरोसे मत बैठे रहो, कल किसने देखा है। बस और समय मत चाहो, जो कुछ करना है अब निश्चय ही कर लो। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाने की आदत डाल लेना आसान है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी बड़े उत्तम शब्द निकृष्टतम व्यक्तियों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। हम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की चर्चा करते हैं और बहुधा तथा कथित देशभक्त निकृष्ट कार्यों में भाग लेते हैं। इसलिए इस बात का कुछ अधिक महत्व नहीं है कि मैं कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करता। अंतिम कसौटी कर्म है। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में कभी नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान क्षणों को जो व्यर्थ ही गंवाते हैं, उन नर पशुओं को नमस्कार। अधिकांश व्यक्ति जितना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं, उतने ही समय में संसार के अनेक महापुरुषों ने चिर स्मरणीय कार्य कर दिखाए हैं। जो लोग ये बहाना किया करते हैं कि हमको सेवा कार्य अथवा परोपकार के कामों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता, उनको महापुरुषों के जीवन पर ध्यान देकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए। सफलता को खो देने का निश्चित तरीका अवसर को खो देना है। गया आज फिर कभी लौटने वाला नहीं है, इसलिए यदि अच्छा करना है तो आज ही कर। कौन जाने कल उगने वाला सूर्य तू देख

0: सके या नहीं। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, वो लौट नहीं सकता। भविष्य की बात सोचो और उसे मूर्तमान करने के लिए आज ही सरंजाम जुटाओ। सुअवसर की प्रतीक्षा में न बैठे रहो। ज्योतिषी से मुहूर्त न पूछें। हर दिन और हर पल काम करने के लिए शुभ मानकर चलें। जो अपने कल्याण की बात है उसे आज ही करें। वृद्ध होकर क्या करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में अपने शरीर भी भारभूत हो जाते हैं। ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझ सके और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो? फिर समय को व्यर्थ नष्ट न होने दो, क्योंकि वही तो जीवन तत्व है। समय का सदुपयोग न करने से मनुष्य दीन और दुनिया दोनों में कंगाल हो जाता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो कार्य आपके सामने है उसे शीघ्रता और निष्कपट भाव से करना ही कर्तव्य है। यही आज के अधिकार की पूर्ति भी है। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। प्रत्येक क्षण भगवान की प्राप्ति में सेतु बन सकता है। इसलिए जीवन का कोई भी क्षण प्रमाद में, न करने योग्य कर्मों में या व्यर्थ में कभी नहीं जाना चाहिए। समय की कदर करो। प्रत्येक दिवस एक जीवन है, एक मिनट भी फिजूल ना गवाओ। जिंदगी की सच्ची कीमत हमारे वक्त का एक एक क्षण ठीक उपयोग करने में है। सत्य का दुर्व्यय करना अपने ही जीवन से द्वेष करना है। समय के द्वारा ही जीवन का संगठन हुआ है। कल का काम आज और शाम का सवेरे ही कर डालो। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि तुमने क्या कर लिया और क्या शेष रह गया। अवसर की प्रतीक्षा में ना बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। उसका सही उपयोग कर सके तो बड़ा अवसर भी आपके सामने हाथ बांध कर आ खड़ा होगा। समय प्रकृति का खजाना है। घंटे और घड़ियां वे उसकी मजबूत तिजोरी हैं। क्षण उसके मूल्यवान हीरे हैं। इन अमूल्य हीरों को व्यर्थ ही इधर उधर ना फेंको।
1: समय का सदुपयोग। विचार बिंदु में आज के विचार इसे विषय पर थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

राधे मोहन बनवारी, राधे में प्राण कृष्ण के बसे, सारा संसार तुम पर बलिहारी। कृष्ण में राधे की शक्ति सारी है बनवारी, राधे मोहन को कोटि कोटि नमन, भक्त का प्रातः वंदन संग। आराधना की प्रथम भजन पुष्पांजलि को स्वर दिया है पंकज उदास और शंकर महादेवन ने।

प्रातः हो या शाम, आठ हो याम, सुमिरें परमपिता परमात्मा तुम्हारा ही नाम। जीवन का हो परिष्कार, आए ना कोई विकार, नाम का संबल जीवन का संपूर्ण बल। आइए वंदन करें सोनू निगम संग।

हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, तू महेश्वर सुरेश्वर, तेरे नाम हजार हैं, हर नाम को कोटि कोटि प्रणाम है। महादेव ही विश्वनाथ है, काशी जिनका धाम, जप मन मेरे पंचाक्षर तू, ओम नमः शिवाय। आराधना की अगली भजन भावांजलि को स्वर दिया है उषा मंगेशकर और राम शंकर ने।

मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो हर पल हर क्षण तेरे ही पास में। आराधना की अगली भजन भावांजलि को स्वर दिया है विनोद पटेल ने।

भक्त का भगवान से कुछ यूं नाता हो जैसे चंदन पानी मोती धागा, एक दूसरे के पर्याय भक्त ऐसे साधे, प्रभु का नाम जीवन में आठो याम। आराधना के समापन की भजनांजलि अनुराधा पोटवाल के स्वर में।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की बात। श्रोताओं, आज है 17 मई। इतिहास में क्या है खास, आइए जानते हैं आज की बात में। सभी श्रोताओं को अंजु पांक्ति का नमस्कार। श्रोताओं, आज 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप के खतरों और इसे नियंत्रित करने और इसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप पूरे विश्व में आज एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। अत्यधिक तनाव, मधुमेह, धूम्रपान, मोटापा, वसायुक्त भोजन, मोबाइल पर लंबे वक्त तक समय बिताना, शारीरिक व्यायाम ना करने के चलते, गलत खानपान और आधुनिक जीवन शैली के कारण हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। 2006 से 17 मई को हर वर्ष उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। किसी भी तरह की परेशानी हो, डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। 17 मई 1949 भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का निर्णय लिया। खेलों की दुनिया में भी आज का दिन बेहद खास है। साल 2010 में 17 मई के दिन भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। क्रिकेट की बात करें तो महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 17 मई 1987 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। श्रोताओं, हिंदी और ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा की आज जन्म जयंती है। जो कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, वही कार्य हिंदी शोध के क्षेत्र में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। वो एक तरफ हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे, तो वहीं दूसरी ओर एक आदर्श प्राध्यापक भी रहे। भारतीय भाषाओं से संबद्ध समस्त शोध कार्य के आधार पर उन्होंने 1933 में हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा। फ्रेंच भाषा में उनका ब्रज भाषा पर शोध प्रबंध है, जिसका अब हिंदी अनुवाद हो चुका है। धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 17 मई 1897 को बरेली, उत्तर प्रदेश के भूड़ मोहल्ले में हुआ। लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के

0: अध्यक्ष पद पर भी आप आसीन रहे। आप हिंदी विश्वकोश के प्रधान संपादक भी रहे। धीरेंद्र वर्मा ने सागर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। भाषा और साहित्य को इन्होंने हमेशा संस्कृति के व्यापक परिवेश में ग्रहण किया। आपकी कई रचनाएं हैं जिनमें ब्रज भाषा व्याकरण, सूर सागर सार, मध्य देश, हिंदी साहित्य कोश, यूरोप के पत्र जैसे रचनाएं मुख्य हैं। 23 अप्रैल 1973 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में आपका निधन हुआ। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक पंकज उधास की आज जन्म जयंती है। 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में जन्म हुआ पंकज उधास का। वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनहर उधास और निर्मल उधास पहले ही संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए बचपन से ही पंकज उधास का मन सुरों में ही लगा रहा। पंकज उधास ने राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी में तबला सीखना शुरू किया। बाद में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत शिक्षा ली। उन्हें फिल्मों में पहला अवसर साल 1972 में आई फिल्म कामना से मिला। फिल्म सफल नहीं रही लेकिन उनकी आवाज लोगों को बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्होंने गजल गायकी की ओर कदम बढ़ाया और उर्दू सीखी ताकि गजल को सही भाव और अंदाज में वो गा सकें। साल 1980 में उनका पहला गजल एल्बम आहट रिलीज हुआ। इस एल्बम ने उन्हें एक नई पहचान दी। इसके बाद तरन्नुम, महफिल और नायाब जैसे एल्बम आए जिन्होंने उन्हें गजल की दुनिया में शोहरत दिलाई। फिर साल 1986 में फिल्म नाम का गाना चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, इस गीत ने पंकज उधास को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ये गाना आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। पंकज उधास ने सिर्फ गजल ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी कई यादगार गाने गाए। पंकज उधास के लोकप्रिय गीतों और गजलों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें फिल्मी गैर फिल्मी गजलें और गीत सभी शामिल है। चिट्ठी आई है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, और आहिस्ता कीजिए बातें, चांदी जैसा रंग है तेरा, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आदमी खिलौना है, एक तरफ उसका घर एक तरफ मायकदा। जैसे कई लोकप्रिय कर्णप्रिय गीत नगमे गजलें आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 26 फरवरी 2024 को पंकज उधास इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। आज की बात में बस इतना ही। अनुमति दीजिए अंजू पांगती को। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समूह स्वरों में देश गान।

0: समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज की विविधा।
1: आज की विविधा के साथ मैं अंजु पांगती हाजिर हूँ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ तकनीकी दुनिया की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये सोचने का भी समय है कि टेक्नोलॉजी का लाभ हर वर्ग तक कैसे पहुंचे। दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन अब सिर्फ कॉल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे वो इंटरनेट हो, स्मार्टफोन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर डिजिटल पेमेंट। वर्तमान समय में दूरसंचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट है। इंटरनेट ने जीवन को बेहद सरल भी बना दिया है। इसके जरिए हम असंख्य सूचनाओं को पलक झपकते ही कुछ पलों में ही प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार क्रांति आज एक ऐसी क्रांति बन चुकी है जिसने न केवल देश की छवि बदली, बल्कि देश के विकास से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की भी ये प्रत्यक्षदर्शी रही है। आज जिस आसानी से हम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कई ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसके लिए कुछ साल पहले बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। श्रोताओं, ये दिन हमें दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में भी बताता है और दुनिया भर में सशक्त डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी ये दिन खास तौर पर मनाया जाता है। दूरसंचार ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, चाहे वो इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट संचार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ये सभी तकनीकें आज के युग में हमारे जिंदगी का बेहद खास हिस्सा बन चुकी हैं। डिजिटल युग में संचार केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और वैश्विक सहयोग का आधार भी बन गया है। 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना हुई। ये संगठन दुनिया भर में संचार नेटवर्क और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इसी ऐतिहासिक दिन के स्मृति में 1969 से ये दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को ये बताना है कि सूचना और संचार तकनीक और इंटरनेट हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी इंटरनेट और तकनीक की पहुंच नहीं है। ये दिन सरकारों और संगठनों को इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए भी प्रेरित करता है। ये दिन हमें ये भी स्मरण कराता है कि कैसे कनेक्टिविटी ने, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील और कम विकसित देशों को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, आर्थिक उन्नति करना, ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो पहली बार 1969 में इसे मनाया गया था। साल 2006 तक इसे केवल विश्व दूर संचार दिवस के रूप

में मनाया जाता था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सूचना समाज दिवस को भी जोड़ दिया, जिससे अब इसे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हर साल विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है और इस बार की थीम है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक संयोजित दुनिया में लचीलेपन को मजबूत करना, यानी डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आज इंटरनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना। जिस तरह से इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह इसके सामने कई समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारा समाज आज प्रभावित है। ऐसे में बहुत से नकारात्मक तथ्य हैं, लेकिन बावजूद इसके दूरसंचार तकनीक आज पूरे विश्व में समृद्धि के लिए बेहद सहायक सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में निरंतर विकास से प्रभावित होकर बहुत से सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में नकारात्मकता से दूरी बनाएं और सकारात्मकता का दामन थामें, यही हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज विविधा में बस इतना ही। अंजु पांक्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविधा FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत और उसके बाद हिंदी में।

0: कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः 23-अधिकद्विसहस्रतमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयार्थविभागेन अद्य अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहाय पश्चिमबङ्गाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारङ्गवारणकी सञ्चेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपयभागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्टिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

0: विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 रविवासरीय संगीत सभा में विवेक सोनार का बांसुरी वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। प्रातः 7:45 पर स्वास्थ्य चर्चा में आज सुनिएगा उच्च रक्तचाप को कैसे रखें नियंत्रण में, इस विषय पर डॉक्टर विशाल शर्मा से संजय जोशी की भेंट वार्ता। सुबह 8:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनते हैं बाल वाटिका, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत जयंती, जैव विविधता दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व कछुआ दिवस, शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी विविध प्रस्तुतियां भी सुन सकेंगे। दिन में 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा जागरूकता बढ़ाता आकाशवाणी। इसी कार्यक्रम में महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर डॉक्टर श्वेता चौहान एसोसिएट ऑफिसर सोबन सिंह जीना आयुर्विज्ञान संस्थान बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा से गीता कनवाल की क्षेत्र संकलित बातचीत सुनवाई जाएगी। दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे रूपक कहानी ऐसे बनती है, प्रस्तुति होगी विनोद कुमार की। दिन में 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में खुबानी, आड़ू व पुलुम की बागवानी में रोग और नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल कुमार। सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5:00। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में युवा साथी आज की बात सुनेंगे विश्व दूर संचार सूचना समाज दिवस पर। इसके अलावा सुनिएगा

चर्चा विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर घटनाक्रम और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे इसी कार्यक्रम में। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज रविवार है तो आज श्रोताओं के लिए हम लेकर आते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत सुनवाया जाएगा जिसमें आज आप आनंद लेंगे अनूप जलोटा और घनश्याम वासवानी के गाए भक्ति गीतों का। शाम 7:15 पर कृषि समृद्धि इस प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सुनेगा पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरक के प्रयोग का महत्व विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा, संचालन करेंगे श्री संजय कुमार आर्या। संगीत के कार्यक्रमों में आज लोकगीत सुनिएगा। प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी में, दिन में 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत में, शाम 5:00 शैलस्वर में, शाम 7:00 प्रादेशिक लोक संगीत में। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 पर सबरंग में, दिन में 1:15 पर और रात 8:00 सबरस में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर, 10:35 पर सुरबहार में, 11:00 सैनिकों के लिए में, मध्यान्ह 12:00 मेरी पसंद में, दिन में 2:45 पर एक ही फनकार में, अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों में और शाम 7:40। इसके अलावा रात 9:15 पर भी आप इंद्रधनुष में फिल्म संगीत सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समूह स्वरों में श्री रामचरितमानस से आज की प्रस्तुति। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने और भाग है 96।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागट और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। संगीत सतीश भाटिया का था और भाग 96। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मां वाराही धाम में निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सतर्क, आम जनमानस से साफ सफाई रखने का आह्वान किया गया। और चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां वाराही धाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने चंपावत के देवीधुरा स्थित मंदिर के नवनिर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा एवं मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ताकि श्रद्धालु को आधुनिक सुविधा के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मां वाराही धाम आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गौरतलब है कि लगभग 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंदिर के भव्य नवनिर्माण कार्यों को 4 खाम 7 थोक और मां वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट द्वारा आगामी 2 से 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने देवीधुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा और 3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक हो गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBSE 12वीं की परीक्षा में राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रघुवंशी की ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंढोर बाजार में भूधसाव प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लिया। श्री जोशी ने कहा कि लंढोर बाजार क्षेत्र में करीब 26 लाख रूपये की लागत से मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग और मॉल रोड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोग और पर्यटकों को राहत मिल सके। वहीं इस दौरान गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का उल्लेख करते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत में सहयोग करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री ने उपजिला चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण कर कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई और अधिकारियों को अस्पताल में आवश्यक नियुक्तियों की जल्द व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सतपुली रेखारे ने क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं मिले और व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेठाखार में 3 कर्मचारियों से केवल फार्मासिस्ट मौजूद मिले, जबकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और ANM अनुपस्थित पाए गए। वहीं PSC संगला कोटी में भी प्रभारी चिकित्सक और फार्मासिस्ट ड्यूटी पर नहीं मिले और पेयजल व्यवस्था भी बाधित पाई गई। PHC पोखड़ा में एक चिकित्सक समेत RBSC की टीम अनुपस्थित मिली है। निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं रेठाखाल आयुष विंग में 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और बायोमेट्रिक मशीन भी बंद मिली है। SDM ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी ताकि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर डेंगू के नियंत्रण और रोकथाम के लिए हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि डेंगू के प्रकोप से लोगों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज, खंड विकास अधिकारियों, शिक्षा विभाग एवं बाल विकास विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मलेरिया अधिकारी को डेंगू जांच की पर्याप्त व्यवस्था, मरीजों के लिए समुचित वार्ड, ब्लड बैंक में प्लेट्स की पर्याप्त उपलब्धता तथा आवश्यक दवाइयों का अग्रिम भंडारण करने के भी निर्देश दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए आमजन से घर और आसपास के परिसर की साफ सफाई का आह्वान किया गया ताकि डेंगू के मच्छरों के पनपने की संभावना को समाप्त किया जा सके। चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का कल हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह को संबोधित

0: संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलचू महोत्सव प्रदेश की लोक सांस्कृतिक परंपरा, कला और विरासत को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। वहीं पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगई की पहल हेलो हेल्प पिथौरागढ़ को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शुक्रवार को शुरू किए गए इस शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म पर पहले दिन 57 शिकायतें दर्ज की गई। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, विपक्ष को एसआईआर से नहीं बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया से है परेशानी। सांसद अनिल बलूनी के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, बरसात से पहले सड़क के काम पूरे किए जाए, पौड़ी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। एक सप्ताह में होगी शिक्षकों की तैनाती, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सीबीएसई के छात्र छात्राएं घर बैठे देख सकेंगे अपनी कॉपी, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुरू की नई व्यवस्था, 19 मई से प्रारंभ होगी प्रक्रिया। नीट यूजी पेपर लीक की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर, पेपर लीक कराने वाली दूसरी लेक्चरर भी गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में मां वाराही धाम में नवनिर्माण और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों और मोटर मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सतर्क, आम जनमानस से साफ सफाई रखने का आह्वान। और चंपावत में 13 दिवसीय गोलचू महोत्सव 2026 का हर्षोल्लास के साथ समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। शुभारंभ कर रहे हैं भाषा पंत के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: और जब सुनिए विमल पंत के स्वर में ये कुमाऊनी लोकगीत।

बिखोती पाकण लागी साऊ खेती हिट गोपाल ही साऊ खोला बाद बिसरा घर ने जोला हिट गोपाल ही साऊ खोला बाद बिसरा घर ने जोला लखनऊ में अब गरम है गो नैनीताल को सीजन है गो लखनऊ में अब गरम है गो नैनीताल को सीजन है गो हिट गोपाल ने जोला घर पैर कपड़ा बांध बिस्तरा

तैयार है गेल गेनों की खेती धान भूतना ले रही थी बैसाख आखरी सोमनाथ आचा उती कोटि कमा आनंद ऊंचा बैसाख आखरी सोमनाथ आचा उती कोटि कमा आनंद ऊंचा हिट गोपाला खेती करौला बैसाख आखरी

रानी खेतन मोड़ा कोसाणी कतु छो पानी रानी खेतन मोड़ा कोसाणी कतु मीठो कतु पानी हरिया है रे जंगल सब कसी रौनक यहाँ है रई हरिया है रे जंगल सब कसी रौनक यहाँ है रई हिट गोपाला सल के ओला बांध बिस्तरा घर ने जोला हिट गोपाला सल के ओला।

0: नीलम जयसिंह के गाए ऐसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ लोकमंजरी संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में उच्च रक्तचाप को कैसे रखें नियंत्रण में, इस विषय पर डॉक्टर विशाल शर्मा से भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। भेंट करता है संजय जोशी।
1: श्रोताओ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर, और इससे विश्व में करीब करीब माना जाए तो 33% लोग यानी कि 1,40,00,000,000 लोग 30 से 79 वर्ष वय के बीच के लोग इससे प्रभावित हैं, या दूसरे शब्दों में हर 3 में से 1 आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। और इस बीमारी को हम प्रीमेच्योर डेथ का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं, जो असामयिक मृत्यु हम जानते हैं हो जाती है। तो ये बीमारी है, सभी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, इस सब बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा जी को। शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: सर,
1: शर्मा जी, बात यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर का रोल आदमी के शरीर में क्या होता है?
2: जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो ठीक से काम कर रहा है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग मानते हैं वो 120/80 होता है। ये अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा सा वेरी करता रहता है, लेकिन जो नियमित जांच होती है अगर उसमें हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे है तो हम उसको कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो स्ट्रेस में नहीं है और वो ठीक से जो हमारा फंक्शन है हार्ट के उसको वो प्रॉपर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एज ये होता जाता है कि जैसे कि आजकल जो यंग एडल्ट्स हैं वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा ग्रसित होती जा रही है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि एक कारण तो है हमारे बच्चों की अब जो लाइफ स्टाइल हो गई है वो सिडेंट्री हो गई है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और या बाकी चीज़ों के कारण उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो होती जा रही है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा जंक फूड। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं हाई एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जिसके कारण इन सारी जो ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जंक फूड है, इनके कारण जो बच्चों में एक चीज़ बढ़ रही है वो बढ़ रही है ओबेसिटी। मोटापा हमारे देश में 2 बड़ी बीमारियों का कारण बन रहा है, ब्लड प्रेशर भी और दूसरा शुगर भी बन रहा है।
1: एक तरीके से बीमारी हमारी लाइफ स्टाइल बीमारी है और गैर संचारी रोगों में से एक प्रमुख बीमारियों में से इसको माना गया और भारत सरकार का प्रयास है कि इसके लिए कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। तो ये कार्यक्रम तो खैर हमारे पूरे देश में चल रहा है, पहले तो भी ये बीमारी रही होगी, ऐसा नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर इधर ही की जनरेशन में ज़्यादा मिल रहा है, पहले भी लोग इससे पीड़ित रहे होंगे और लाइफ स्टाइल हम इसको मानते हैं कि लाइफ स्टाइल है। और उत्तरोत्तर देखा जाए तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो आदमी आराम तलब होता जा रहा है। बात यह है कि हमने देखा युवा काफ़ी कुछ जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा पता चलता है कि उनकी अचानक डेथ हुई है।
2: जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कई बार क्या होता है जो ट्रेनर है वो अगर अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों की एक्सरसाइज में वो स्ट्रेस लेते हैं। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए ये बोला जाता है कि उनको करनी है एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि बेस्ट होती है ब्रिस्क वॉक होता है, साइकिलिंग होता है, स्विमिंग होता है इनसे। और जो जिम होता है वो हमारा क्या होता है ना, एक्सेसिव वर्कलोड है। अब उस व्यक्ति को पहले जो भी जिम जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक कराना चाहिए, ओबेसिटी है वो जो कहते हैं ना एक अच्छा ट्रेनर। अभी क्या हो गया है ना, सिर्फ जिम की स्टाइल के लिए लोग क्या करते हैं अपने शरीर को अननेसेसरी लोड दे रहे हैं। मान लिया कोई व्यक्ति प्राइमरी हाइपरटेंशन में है, कोई यंग बच्चा है, स्ट्रेस के कारण, जॉब स्ट्रेस के कारण नींद प्रॉपर नहीं ले रहा है, मोटापा उस बच्चे का बढ़ा हुआ है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो इतनी सारी बीमारियों को लेकर वो जिम में जा रहा है तो वो हाई रिस्क पे है क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी स्ट्रेस में है और हम लोग अननेसेसरी जो एक्सरसाइज, ओवरवेट और ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके कारण क्या है ना कि वो बच्चे रिस्क में रहते हैं।
1: जी, कोई भी बीमारी होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं। हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं, जिसको कि हम महसूस करें, घर में ही बैठे हैं तो हम कभी कभी देखते हैं कि अचानक आदमी काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, अचानक उसका बीपी हाई हो गया, कुछ उसको स्ट्रोक पड़ जाता है, तो क्या लक्षण आ सकता है?
2: हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट चीज़ होती है हमारा समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना। कई बार क्या होता है कि इसको साइलेंट किलर इसीलिए बोला गया है कि कई बार लक्षण नहीं भी आते हैं लेकिन सुना गया है कि लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। इसलिए पहला काम होता है हमारा कि समय समय पर हम अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच कराते रहें किसी स्पेशलिस्ट से। होता क्या है कि कई बार घर में मेजरमेंट कर रहे हैं और कई बार अस्पताल में मेजरमेंट करते हैं तो बहुत

0: डिफरेंस आता है,
1: जी
0: लोग उस चीज़ को समझते नहीं है कि मतलब हमने क्या करना है। रही बात आती है कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि जब हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, अब टूवर्ड्स 35, 40, 45 में, अगर किसी व्यक्ति को चलने में सांस फूलने लगती है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगती है, ये बहुत कॉमन लक्षण है। सांस फूलना ये बताता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा कभी भी आप लोग घर पर बैठे हुए हैं और हमारे जो लोअर जा होता है, निचला जबड़ा, यहाँ दर्द है, लेफ्ट आर्म में दर्द है विद टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट होती है, इसके बाद अचानक से स्वेटिंग किसी व्यक्ति को हो जा रही है घर में बैठे हुए, तो ये वो लक्षण है कि जिनको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: ठीक है, आदमी लेटा भी पड़ा है, कभी कभी स्वेटिंग हो जाती है
0: जी,
1: तो उस स्थिति में क्या करेगा? तो क्या हम ये देखें कि उस पर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए सबसे पहले?
0: बिल्कुल, स्ट्रेस के कारण कभी हम घर में बैठे हुए हैं, लेटे हैं, हम लग रहा है कि हम रिलैक्सिंग कंडीशन में, लेकिन कई बार स्ट्रेस के कारण भी बीपी हमारा बढ़ जाता है।
1: उन हम लोग जाँच कराने जाते हैं नॉर्मल जो है, लेकिन बीपी की जाँच साप्ताहिक या किस तरह की होनी चाहिए हमारी?
0: अब तो भारत सरकार कह रही है कि 30 के ऊपर जो भी युवा जा रहे हैं, मतलब चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनको समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच रेगुलर करानी चाहिए। अब वो रेगुलर का मतलब है कि अगर व्यक्ति बहुत मोटा नहीं है तो हम जो है 2-2 महीने के अंतराल पर या 3-3 महीने के अंतराल पर अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराते रहें।
1: जी, जैसे कुछ बीमारी जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ है तो वो परिवार में चलती आती है, क्या ब्लड प्रेशर भी इसी तरह का हो सकता है?
0: अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर वाली है तो उनके जो यंग एडल्ट्स हैं उनको पहले से अवेयर हो जाना चाहिए कि ये बढ़ा हुआ बीपी जो हमारी फैमिली में है ये हमें भी हो सकता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ती है।
1: जी, हम इसके मेडिसिन की बात करें कि पता चला कि ब्लड प्रेशर का मरीज है, अब वो दवाई लेता है तो दवाई कुछ मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ पहले तो मैं ब्लड प्रेशर था, हमने दवाई ली, अब हमने छोड़ दिया, तो क्या ऐसा है कि ब्लड प्रेशर अगर एक बार हो गया तो उसकी दवाई आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी?
0: ब्लड प्रेशर के 2 मेन कारण होते हैं, एक तो होता है कि हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब अभी अभी डायग्नोसिस बनी है कि मेरा बीपी 120-80 से अबव जा रहा है और वो जाता है हमारा 145 या 150 तक, और उसके बाद में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर हमारा 90 से अबव हो रहा है तो हम ऐसे पेशेंट्स को शुरू में रखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अगर पेशेंट बहुत अवेयर है तो स्टार्टिंग में ही उसको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कुछ चीज़ें होती हैं अगर लाइफस्टाइल में, जैसे कि हमें बोला जाता है सोडियम कम खाना है, यानी कि जो नमक है वो कम खाना है। हमारी जो पर डे की डाइट होती है वो 6 ग्राम होती है, यानी कि सिर्फ सोडियम जो है हमने 6 ग्राम लेना है। पोटेशियम वाली चीज़ें बढ़ानी है, हार्ट के लिए पोटेशियम वाली चीज़ें अच्छी होती है, जैसे कि पोटेशियम हमारा फ्रूट्स में मिलता है। तीसरी चीज़ बोली जाती है कि अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, उसके लिए एवरेज अब एक बोला जा रहा है कि 7 दिन में से अगर आप 5 दिन भी 25 मिनट भी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो उतना हार्ट के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब आप जो है एक्टिव बने। चौथी चीज आती है स्ट्रेस, नींद हम लोग बहुत कम लेते हैं लेकिन अब जैसा चल रहा है उसमें कम से कम 8 घंटे की नींद अगर हम लेते हैं तो वो हार्ट की हेल्थ की कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है।
1: जी, तो लबलो आप ये बन रहा है कि इसको देखें कि पहले तो आपको अपने हार्ट को मजबूत रखना है
0: जी,
1: उसके लिए एक्सरसाइज
0: बहुत जरूरी है।
1: अब ये भी देखा जाता है कि कोई आदमी है किसी और मर्ज से पीड़ित है और वो कोई दवाई ले रहा है लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट से उसका बीपी बढ़ जाता है।
0: कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, उसको बोला जाता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कई बार क्या होता है कि बीमारी किडनी की है, बीमारी थायराइड की है, लेकिन इनकी बीमारियाँ आपके ब्लड प्रेशर को शूट अप करती हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हमारा लिवर सिरोसिस हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, तो ये हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है कि बीमारी किसी और बीमारी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमें एक तो जो बीमारी के कारण बढ़ रहा है उसकी जांच नियमित करानी है और जितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट हमने लेना है
1: जी। देखिए एलोपैथिक हम मेडिसिन लेते हैं तो अक्सर क्या होता है बीपी की उसमें तो बहुत यूरिन काफ़ी पास आउट होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या फिर अगर बीपी की दवाई खाते हैं तो नींद बहुत आती है, तो इस तरह के दुष्प्रभाव भी तो इस दवाई को लेकर के हैं।
0: जो बीपी की दवाई मॉर्निंग के समय दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जो एक्टिव पर्सन है और वो डायूरेटिक होती है, वो आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालकर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा अगर बीपी स्ट्रेस के कारण है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ ऐसी ऐड करते हैं जिससे व्यक्ति थोड़ा सा उसकी एंजाइटी कम हो, उसको नींद प्रॉपर आए।
1: मतलब नींद के लिए भी दवाइयाँ उसका प्रभाव रखती हैं, कि कोई डायबिटिक पेशेंट तो भी है या अन्य बीमारी से पीड़ित है, उसका ब्लड प्रेशर हम देखते हैं कि भैया इस रेंज में

0: जा रहा है, कभी कभी किसी केस में जब बिल्कुल नॉर्मल सा भी होते हुए भी अचानक बढ़ जाता है, वो कहता है, और कोई ये कहता है मुझे तो कभी ब्लड प्रेशर था ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो जाता है?
1: वो अचानक बढ़ जाना कई सारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की उस समय स्थिति क्या है, लेकिन जो नियमित जांच का मतलब यह है कि अगर मैं रेगुलर इंटरवल पर अपना ब्लड प्रेशर जांच करा रहा हूं और वो अगर मोर देन 140 और 90 बना हुआ है, हमारे यहाँ पे गाइडलाइन आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी रेगुलर 140-90 से बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम उसको मानते हैं कि बस अब उसको जो है लाइफस्टाइल चेंज के साथ में कुछ दवाइयाँ डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेनी पड़ेंगी।
0: जी अच्छा, बीपी के लिए अब दो तरह के होते हैं मरीज, देखा जाए कोई कहते हैं कि हम एलोपैथिक पर विश्वास करते हैं, कोई कहते हैं हम आयुर्वेदिक पर विश्वास करते हैं। एक SOS के रूप में देखा जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन ली ही जाती है, अचानक बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाएगा, आयुर्वेदिक बीपी का कैसे इलाज?
1: आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए हमारे पास में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, लेकिन दवाइयाँ चाहे एलोपैथ की लो या आयुर्वेद की लो, हमें नियमित जांच करवानी है। अगर किसी भी पैथी से अगर हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं कि यही मैं लूँगा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं इसको नहीं लूँगा। आयुर्वेद में हमारे हार्ट के लिए बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, इनिशियल स्टेज में जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसके लिए हमारे यहाँ अर्जुन बहुत अच्छी दवाई आती है, ठीक है, अर्जुन की छाल होती है, उसको चाहे दूध के साथ लेते हैं, अर्जुना रिस के रूप में लेते हैं, तो वो हार्ट की मसल्स को जो है, जो वीक हमारा हार्ट वीक हो रहा है उसको जो है वो ताकत प्रदान करती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ माना जाता है ब्लड प्रेशर का मेन कारण आयुर्वेद में, वो मेद है, मेद मतलब ओबेसिटी, तो उसके लिए ओबेसिटी को कम करने की दवाइयाँ आती हैं जिसको आप जो है समय समय पर लेते रहेंगे।
0: ऐसा भी देखा जाए जो बीपी का पेशेंट होता है अक्सर उसका हार्ट इलाज भी डॉक्टर कहते हो जाता है, तो वो कैसे?
1: ओवरलोड के कारण, अगर हमारा हार्ट रेगुलर काम कर रहा है और उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जैसे बहुत से मोटे लोग होते हैं तो वहाँ क्या होता है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको कार्डियोमेगैली बोलते हैं, तो वो कार्डियोमेगैली उस व्यक्ति को हो जाती है क्योंकि उसको मोटे शरीर को, बड़े शरीर को, एक्स्ट्रा फैट को ब्लड पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है।
0: इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ जो आपको लगता है कि हमारे श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि
1: उसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और साइलेंट किलर। कारण क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि मैं हूँ स्वस्थ, अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो ये सोचता है कि जब बीपी बढ़ेगा मैं तभी दवाई लूँगा। यहाँ पर मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर ने दवाइयाँ दे रखी हैं लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन बीपी बढ़ता है, यानी कि जिस दिन सिम्टम आते हैं, हेडेक हो गया, चक्कर आ रहे हैं या सीने में दर्द महसूस हो रहा है, कह रहे कभी ऐसा होता है तब मैं दवाई लेता हूँ, इसके अलावा तो मैं ठीक रहता हूँ। तो ये जो भ्रांति है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है मैं केवल तब लूँगा जब मेरा बीपी शूटअप होगा, यहाँ बहुत गलती करते हैं। हमें डॉक्टर ने दवाई दे भी रखी है, जांच भी कर रखी है और उसके बाद भी हम जो है उस दवाई को रेगुलरली नहीं ले रहे हैं तो हम अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता को बताएं कि कैसे हम अपने को स्वस्थ, हमारा बीपी कैसे नॉर्मल रहे, उसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, सुबह से उठ करके शाम तक हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए?
1: एक ब्रिस्क वॉक होती है, बोला जाता है 25 से 30 मिनट हमें रोज पैदल चलना चाहिए, वो भी तेज स्पीड में। दूसरा होता है कि जैसे हम लोग 30 से अब हो जाते हैं, एक तो हमें अपना जो नमक है उसकी मात्रा 6 ग्राम पर डे करनी पड़ेगी। तीसरा, जो लोग स्मोकर्स हैं या जो लोग एल्कोहलिक हैं तो ये मान लीजिएगा कि अगर वो दोनों चीज़ें नहीं छूटती हैं तो उन व्यक्तियों का बीपी शूटअप होगा। चौथी चीज़ होती है हमारा कि हमारे खाने में जो होता है वो फैट को कम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑयली चीज़ें खाएंगे, जितना ज़्यादा हम फैटी चीज़ें खाएंगे वो ओबेसिटी को बढ़ाएंगे और ओबेसिटी भी हाइपरटेंशन का एक मेन लक्षण है। इसलिए हमारी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रेगुलर फाइबर वाली चीज़ें ये हमें ज़्यादा खानी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो हमारा स्लीप एपनिया, कि अगर व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आ रही है तो ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेस के बाद में हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण है।
0: सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जी तैनात किए गए हैं और वो भी गांव-गांव घर-घर जाकर के एक नियम के तहत उनको कार्य करना होता
1: है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं वो उपकेंद्रों में तैनात हैं, जैसे हवालबाग ब्लॉक में जितने भी उपकेंद्र हैं वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं। ये पूरे महीने में जितने भी हमारे 30 से अबव लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन व्यक्तियों की 3 चीज़ों की जाँच ये रेगुलर करते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर की जाँच करते हैं, दूसरा शुगर की जाँच करते हैं, तीसरा अवेयरनेस ऑफ कैंसर के बारे में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति है गाँव में जैसे मान लें 40 ईयर का है, ब्लड प्रेशर नापा और वो शूटअप हो रहा है, बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है और बार बार जैसे उन्होंने दूसरी विजिट करी तभी भी बढ़ावा आ रहा है, तब उनकी काउंसलिंग रहती है कि भाई आप अस्पताल में जाइए, अपनी जो जांचें हैं चाहे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, थायराइड की जांचें हैं, ईसीजी है, वो करवाइए और एक नियमित दवाई लेना शुरू करिए। क्योंकि व्यक्ति गाँव में है, उसकी जाँच कभी वो जाता नहीं है क्योंकि परेशानी नहीं हुई, लेकिन बीपी शूट अप है, तो ऐसे लोग हमारे गाँव में अब मिल रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है।
0: चलते चलते एक मैं अंतिम सवाल कि छोटे बच्चों में भी ये देखा जाए तो वो भी ब्लड प्रेशर के मरीज पाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
1: छोटे बच्चों में मेन कारण क्या आ रहा है कि एक तो उनकी भी लाइफस्टाइल इनएक्टिव हो गई है, मोबाइल कंप्यूटर, दूसरी चीज़ क्या हो गया ना, वो जंक फूड जो है हमारा, मेनली जंक फूड हमारा ओबेसिटी बढ़ा रहा है, तीसरी चीज़ क्या होता है जंक फूड में हमारा नमक बहुत ज़्यादा होता है, चौथी चीज़ हमारी आती है कि वो बच्चे जो होते हैं ना उनका वही नींद का जो मैं बोल रहा हूँ, वो नींद वो प्रॉपर नहीं लेते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया और इनसे रहते हैं उसके कारण बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो नींद एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में।
0: तो हम यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अगर वो अपनाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर से अपने को दूर रख पाएंगे। तो डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी दी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे उच्च रक्तचाप को कैसे रखें नियंत्रण में, इस विषय पर डॉक्टर विशाल शर्मा से भेंटवार्ता, भेंट करता थे संजय जोशी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड

0: भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को

0: गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत।

0: में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भारत में आपकी

0: तो प्यारे बच्चों, हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, आप सभी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में सभी प्राणियों से हमें कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। जैसे छोटी सी मधुमक्खी को ही देख लीजिए, यह हमें मेहनत करना, त्याग, एकता और किसी भी काम को मिलजुल कर करने की सीख अवश्य देती है ना। और बच्चों, आज मधुमक्खी पर ही हमसे एक कविता साझा कर रही है नन्ही कनिका।
1: मधुमक्खी है तुम

0: तुम्हारा नाम।
1: सच है बच्चों, मधुमक्खी मेहनत कर फूलों के रस से कितना मीठा मीठा मधु बनाती है ना बच्चों? बच्चों, मधुमक्खियों के महत्व को देखते हुए ही हर साल 20 मई को मधुमक्खी पालन के हुनर में महारत हासिल करने वाले एंटोन जोनस के जन्म दिन के अवसर पर मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, मधुमक्खियां पौधों को परागित करके कृषि का समर्थन करके जैव विविधता को भी बढ़ावा देती हैं। मधुमक्खी पालन दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता और समर्थन फैलाने के लिए अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मधुमक्खियों की आबादी को बढ़ाने के लिए बगीचों या छतों पर छोटे छोटे मधुमक्खी फार्म भी स्थापित किए जाते हैं और मधुमक्खी संरक्षण पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और बच्चों, लोग स्थानीय मधुमक्खियों को पाल कर उन मधुमक्खियों से शहद इकट्ठा कर इसे अपने रोजगार के रूप में भी अपनाते हैं। बच्चों, विश्व मधुमक्खी दिवस इन आवश्यक के जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और उनके भविष्य की रक्षा के लिए भी बढ़ावा देता है। ये तो हमने जाना मधुमक्खी दिवस के बारे में। और अब बच्चों, हमें स्वस्थ रहने हेतु सबसे अधिक जरूरी होता है संतुलित आहार, है ना? जब हम संतुलित आहार ग्रहण करती हैं, तो हमारे शरीर में सभी तरह के पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, है ना? और इस संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होते हैं? बच्चों, इस संतुलित आहार में शामिल होते हैं मौसमी फल सब्जियाँ, सभी तरह के पौष्टिक तत्व, है ना? और यही बात आज अपनी कविता से हमें बता रही हैं कनिका।
2: रंग बिरंगी थाली में हो सेहत की सौगात, दाल चावल रोटी सब्जी फल सब्जी दिन रात, दूध दही से मजबूती आए प्रोटीन का हो संग, हरी सब्जियां अंकुरित दाने लाए जीवन में रंग, तेल मिठाई कम ही खाए नमक भी थोड़े में, फ्रूट्स नट्स से ऊर्जा पाए रहे सदा हम जोश में, हर दिन पानी खूब पिए खाली पेट न जाए, संतुलित भोजन जो अपनाए बीमारियां दूर भगाए।
1: सच कहा कनिका आपने, संतुलित आहार को अपनाए और बीमारियों को दूर भगाए। प्यारे बच्चों, जिस तरह से स्वस्थ शरीर हेतु संतुलित भोजन बेहद जरूरी होता है, ठीक उसी तरह बच्चों, जैव विविधता भी होती है, जो कि न केवल हमारे जिंदगी स्वस्थ पर्यावरण हेतु जरूरी है, बल्कि स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए भी अनिवार्य होती है। प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। और ये विविधता विशालकाय बरगद के पेड़ से लेकर अति सूक्ष्म जीवाणुओं तक होती है। और प्रकृति के संतुलन हेतु तो ये जैव विविधता बेहद ही जरूरी है, है ना? प्यारे बच्चों, ये विविधता हम मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से भोजन, स्वच्छ जल, दवा और जीवित रहने हेतु सभी जरूरतमंद वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। तभी तो बच्चों, जैव विविधता के इस महत्व को देखते हुए ही हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हम अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीवधारियों पर ही निर्भर रहते हैं, है ना? और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना। तो बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण तो बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चों, जैव विविधता ही हमारे अस्तित्व और संपूर्ण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। और जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, चलिए बात जानते हैं जतिन

0: से और जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये जानते हैं नेहा से।
1: वनों का संरक्षण, वनों की अंधाधुन कटाई को रोकना चाहिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बचाकर रखना चाहिए, अवैध शिकार पर सख्त कानून और कड़ाई से पालन, विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम चलाना, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व निर्माण और विस्तार, जल वायु और मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय करना, रासायनिक कीटनाशकों और प्लास्टिक का सीमित उपयोग, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का सही निपटान, सतत विकास को

0: चाहिए। अवैध शिकार पर सख्त कानून और कड़ाई से पालन, विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम चलाना, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व निर्माण और विस्तार, जल वायु और मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय करना, रासायनिक कीटनाशकों और प्लास्टिक का सीमित उपयोग, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का सही निपटान, सतत विकास को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग, पारंपरिक कृषि प्रणालियों और जैविक खेती को बढ़ावा देना, नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जन जागरूकता और शिक्षा, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना।
1: तो बच्चों, आप भी इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और जीवों के संरक्षण में अपनी नन्ही परंतु महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं।

0: तो बच्चों, बात जहाँ जीवों के संरक्षण पर हम कर ही रहे हैं, तो चलिए आज पशु पक्षियों के अद्भुत संसार क्रम में जान लेते हैं कछुए के बारे में सुमित से।
1: कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है। ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति है। चिड़ियाओं, सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुकी थी। पारितंत्र में कछुओं का अस्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेतात्मक माने जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में इनका अहम स्थान है और पौधों व मछलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके नियंत्रण के लिए कछुओं का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व में कछुओं की 300 से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 130 IUCN के द्वारा घोषित की गई है। भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 24 प्रजाति कच्छप अर्थात स्थलीय कछुए टोटोटॉइस के एवं 5 प्रजाति कुर्म अर्थात समुद्री कछुओं टर्टल के हैं। इनमें से अधिकांश कछुए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत संरक्षित हैं। भारत में कछुओं को सबसे बड़ा नुकसान मछली पकड़ने वाले नौकाओं से होता है। बड़े आकार के कछुए अक्सर मछली के जाल में फंस जाते हैं और घायल होकर दम तोड़ देते हैं।
0: तो बच्चों, जाना ना आपने पशु पक्षियों के अद्भुत संसार क्रम में सुमित से कछुए के बारे में। प्यारे बच्चों, कछुआ एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो कि हमेशा शांत रहता है ना, और शांत रहकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण हमेशा देता है। परंतु बच्चों, हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के चलते इस नन्हे प्राणी का शिकार करने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आने लगी है। तो बच्चों, इनकी कम होती संख्या को देखकर ही हर साल 25 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाने की घोषणा की गई। और बच्चों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, साथ ही बच्चों इनके बचाव हेतु जागरूकता भी फैलाना। प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें कछुओं का संरक्षण तो अवश्य करना चाहिए।

0: दी निष्ठूलों से, मेरे मन का मौन न जाने कोई, वन उपवन से करता मैं नित प्रणय वार्ता, पुष्पों से पूछी मेरे मन की हर एक व्याथा, वृक्षों से बाटी सुख दुख की गाथा, नदी झरनों में पाया मन का संगीत, तेरी गोद में पाकर मैं छाया, जीवन का हर दर्द साया साया, हे प्रकृति तू ही मेरा देवालय, तेरे नयन में देखूं मैं आलोकिक आश्चर्य।
1: तो बच्चों, अभी हमने नन्ही श्वेता से प्रकृति प्रेम को बयां करती बसंत ऋतु के आगमन का चित्रण करती हुई यह सुमधुर कविता सुनी, है ना। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस कविता के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। और बच्चों, हमारे लिए तो ये बड़े ही गर्व की बात है कि इनका जन्म कुमाऊं अंचल के अल्मोड़ा कौसानी में हुआ था, और इसी सप्ताह यानी कि 20 मई को हम मनाएंगे इनकी जयंती। तो चलिए बच्चों, आज प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में श्वेता से।
2: सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद हो गई थी और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। प्रयाग वर्तमान इलाहाबाद में उच्च शिक्षा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और महाविद्यालय छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य का स्वाध्याय किया। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। बाल्यावस्था से ही वे प्रकृति के प्रति आकर्षित रहे और यही आकर्षण उनकी रचनाओं में साफ झलकता है। उन्होंने अल्मोड़ा और फिर इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। सुमित्रा नंदन पंत मुख्यतः एक शब्द शिल्पी के रूप में छायावादी कवियों में विख्यात है। इनके काव्य में विषय वस्तु की अपेक्षा कला को अधिक महत्व मिला है। पंत जी ने आरंभिक रचना काल में परंपरागत काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया। वहीं अपनी काव्य भाषा के निर्माण में उन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दावली का सर्वाधिक सहारा लिया। शब्दों के रूप परिवर्तन द्वारा नवीन शब्द निर्माण के साथ ही पंत जी ने अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्दों का विशिष्ट अनुवाद कर अपनी काव्य भाषा को संपन्न किया। पंत की काव्य यात्रा तीन प्रमुख चरणों में विभाजित की जाती है। छायावादी चरण 1916 से 1935। इस दौरान उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की प्रधानता थी। वीणा, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना जैसे काव्य संग्रह इस अवधि में प्रकाशित हुए। पल्लव उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। प्रगतिवादी चरण 1935 से 1950। इस दौरान में पंत ने समाज और मानवता के प्रति अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त किया। युगांत, गुणवाणी और ग्राम्या जैसे काव्य संग्रह इसी अवधि के हैं। पंत की प्रमुख रचनाओं में वीणा, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा, स्वर्णधूली, अतिमा और रजत शिखर शामिल है। उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, अनुवाद में भी योगदान दिया। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो पंत जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1960 कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1968 चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, 1961 भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत। सुमित्रा नंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुआ। उनका जन्म स्थान कौसानी में उनका घर अब सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वेदिका संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किए गए हैं।
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने श्वेता से सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कितना कुछ जाना, है ना। तो चलिए बच्चों, आने वाले 20 मई महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के अवसर पर आइए बाल वाटिका की ओर से उन्हें करते हैं

0: तो बच्चों ये तो हमने जानी बहुत सी बातें कछुओं के बारे में, है ना प्यारे बच्चों। आजकल हम सभी अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चले हैं कि हम प्रकृति के मनमोहक सुंदर दृश्यों का आनंद तो लेना भूल ही जाते हैं, है ना। परंतु बच्चों प्रकृति के साथ लगाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्यारे बच्चों प्रकृति के साथ लगाव बनाए रखने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है, है ना। तो चलिए बात जहाँ हमने प्रकृति पर कर ही है, क्यों ना एक कविता हो जाए प्रकृति पर ही।
1: छोटे से जीवन की सुख दुख की कथा वही, जो कह ना सके तुमसे कह दीनिश फूलों से, जो कह ना सके तुमसे कह

0: और अब बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी की बाल कल्पनाओं को अपनी कविता में लिए हमारे साथ हैं नन्हे करण।
1: मैंने छुपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, पर बंजर धरती में एक राम को

0: सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलर पावड़े बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था।
1: प्यारे बच्चों, कविवर पंत जी ने अपनी इस कविता में बाल कल्पनाओं को कितनी सरलता से प्रस्तुत किया है ना? प्यारे बच्चों, इनकी ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो कि विशेषकर आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रेरणादायक हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई किस्से कहानियां प्रसंग सुनते हैं तो उनसे हमें कुछ न कुछ सीख तो जरूर मिलती है ना? और कहानियां कथाएं तो आप नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालती हैं। तो चलिए कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन की ये कथा सुनते हैं अच्छी बात क्रम में, जिसका शीर्षक है हंस और राजकुमारी। प्यारे बच्चों, एक हंस था, वो नीलमणि तालाब में रहता था। तालाब निर्मल पानी से भरा हुआ था, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर कमल भी खिले रहते थे। हंस कमलों के बीच तैरता हुआ न जाने क्या सोचा करता था। एक बार पूरब की राजकुमारी तालाब में नहाने आई, हंस को देखकर वह बहुत खुश होने लगी। उसने अपनी सखियों से कहा, देखो तो कितना सुंदर हंस है, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? तो कमलों से आवाज आई, नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये तो परियों की रानी का है। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा ये परियों की रानी कहाँ रहती है? तो कमल बोला, आओ चाहती हो तो हम तुम्हें मिला देते हैं। वे उसे तालाब के बीचों बीच लेकर गई। पलक झपकते ही वह परियों के महल में पहुंच गई और सारी परियों ने उसे घेर लिया, फिर अपनी रानी के पास लेकर गई। परियों की रानी ने पूछा, तुम कौन हो? तो राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं पूरब की राजकुमारी हूँ, आपके हंस को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। जो कमल के फूल आपके दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, वो ही मुझे आपके पास लेकर आए हैं। तो परियों की रानी ने कहा, तुम हंस ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, परंतु एक शर्त है। तो पूरब की राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा, क्या है वो शर्त? तुम अपनी सहेलियों को यहाँ छोड़ जाओ और हंस को ले जा लो। तो राजकुमारी बोली, नहीं नहीं ये कैसे होगा, मैं भला अपनी सहेलियों के बिना कैसे रहूंगी? परियों की रानी ने बोला, हंस भी तो हंसिनी के बिना कैसे रहेगा, वह भी तो मर जाएगा, है ना? ये सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसे पता ही नहीं था कि पशु पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और हंस के मरने की बात से उसे बहुत दुख हुआ। वो बोली, हंसनी के बिना क्या हंस सचमुच मर जाएगा? नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, तब तो मैं हंस को नहीं लेकर जाऊंगी। ये कहते हुए पूरब की राजकुमारी वापस जाने लगी, परंतु चारों ओर तो पानी ही पानी था, वो कैसे जाती? उसे तैरना भी नहीं आता था। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर परियों की रानी समझ गई। उसने अपनी सीपियों की सुंदर सी नाव मंगवाई, राजकुमारी को भेंट में बहुत से सुगंधित फूल और मीठे फल भी दिए और राजकुमारी को विदा किया। पूरब की राजकुमारी नाव में बैठकर तालाब से बाहर आ गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही ना कि जो जहाँ पर होता है उसे वैसे ही वहाँ खुश रहने देना चाहिए, हमें कभी भी किसी को अलग नहीं करना चाहिए, है ना? और सदा आपस में खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जब हम खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास रहने वालों को भी खुशियाँ ही बांटते हैं, है ना बच्चों? और जब आप ऐसे हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो यही तो होती है अच्छी और मीठी बात। मीठी बोलियाँ। बच्चों, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं ये एक शिक्षित समाज है ना, जहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही शिक्षा का समान अधिकार है ना बच्चों? लेकिन बच्चों, एक समय ऐसा था जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो उस समय बच्चों अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने हेतु अनेक प्रयास की, तब जाकर आज महिलाओं को समानता और शिक्षा का अधिकार दिया गया। तभी बच्चों आज हम एक शिक्षित समाज का गठन कर पा रहे हैं। और इन समाज सुधारकों में सबसे पहले नाम लिया जाता है राजा राम मोहन राय जी का। प्यारे बच्चों, इन्होंने देश के ऐसे दौर में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जब समाज में अनेक तरह के अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई थी। और बच्चों, इनका मानना ये था कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाएं। तो चलिए बच्चों, आज प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में विस्तार से जानते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। पूर्णिमा सिंह,
2: राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ। प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय ने कम आयु में ही बंगला, अरबी, फारसी और इस्लामी संस्कृति का गहन अध्ययन कर लिया था। उन्होंने काशी में लगातार 4 वर्षों तक भारतीय साहित्य और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। वे हमेशा कुछ न कुछ नया काम करने में विश्वास रखते थे। 14 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था। फलस्वरूप पुरानी रूढ़ियों से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया। कुछ दिनों तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लगे रहे। इस कारण उन पर अंग्रेजी साहित्य का अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है। उनके समय में बंगाली समाज में विधवा विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां विकराल रूप धारण कर चुकी। वे सती प्रथा के घोर विरोधी थे। उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को धर्म के नाम पर समाज के ठेकेदारों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध भाभी को धधकती चिता में धकेल दिया। उस घटना के बाद से उन्होंने इस कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया। सन 1921 में लॉर्ड विलियम बैंटिंग के साथ सहयोग कर उन्होंने ही यह कुप्रथा समाप्त कराई। राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। विवाह को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। समाज को धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों के दायरे से निकालने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का अद्वितीय योगदान है। संपूर्ण मानव जाति के लिए उनका संदेश था, कर्म करो।
1: तो बच्चों, अभी हमने पूर्णिमा से राजा राम मोहन राय जी के बारे में कितना कुछ जाना है ना। तो बच्चों, हमें भी ऐसे महापुरुषों के जीवन और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए।

0: और अब बच्चों चलिए सुनते हैं एक कहानी नंदनी की जुबानी।
1: मेरा नाम नंदनी पंत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दोस्त के जूते। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीटा निकला। चीटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चीटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चीटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चीटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चीटा अपने जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चीटे का दोस्त कन खजूरा था।

0: बाल वाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बाल वाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या है 26360। और अब बच्चों मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: बच्चे अभी सुन रहे थे बाल वाटिका, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 9 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
3: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर

0: मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि कई राज्यों के यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइश के फिल्मी नगमे गीत निर्झर में।

तो श्रोताओं, गीत निर्झर की निर्झर सुरमयी सुर सरिता में श्रोताओं के फरमाइशी सतरंगी तरानों संग महकती सुबह में अलबेले मौसम के सुरीले नगमों के सफर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत सत्कार और कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो दोस्त अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। और श्रोताओं, आज गीत निर्झर का आगाज गुलजार साहब के इस खूबसूरत नज्म के साथ। नीले नीले से शब के गुंबद में, नीले नीले से शब के गुंबद में तानपुरा मिला रहा है कोई, एक शफाक कांच का दरिया जब खनक जाता है किनारों से, देर तक गूंजता है कानों में, पलकें झपका के देखती हैं शम्मएं और फानूस गुनगुनाते हैं, मैंने मुंद्रों की तरह कानों में तेरी आवाज पहन रखी है।

Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa.

तो आप सभी श्रोताओं को हमने भी बहुत बहुत स्वागत किया इस खूबसूरत महकते हुए नगमे के साथ, जिसे सुनना चाहा था जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। बीड शहर से हमारे श्रोता हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल, साथ ही इनके दोस्त हैं राम निवास अग्रवाल। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये पहला गाना था तोहफा फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ें थीं। इंदिवर ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत था।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
3: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
5: गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, पूजा, विक्की, सुरेंद्र, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, परमजीत सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत, अनारकली बाजार जगराव से श्रोता हैं, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अगला नगमा हमने लिया है प्रेम बंधन फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बहुत ही सुंदर लिखावट और उतनी ही खूबसूरत चित्रकारी से सजा ये रंग बिरंगा पत्र फरमाइश के साथ भेजा है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, सुजाता पोहरकार ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, यहीं से इनके कई दोस्त और साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मोहम्मद अजीज का गाया नगीना फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो वक्त गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा बसी रहती हैं, तरोताज़ा रहती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ थी मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास की। उनकी गज़लें लोगों की भावनाएं हुआ करती थीं। उनकी गायकी में ऐसी मधुरता थी, मिठास थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। आज 17 मई इस महान कलाकार पंकज उधास की जन्म जयंती है। 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में उनका जन्म हुआ। उन्हें फिल्मों में पहला मौका साल 1972 में आई फिल्म कामना से मिला। फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी आवाज़ को लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने गज़ल गायकी की ओर कदम बढ़ाया, उर्दू सीखी ताकि गज़ल को सही भाव और अंदाज में गा सकें। साल 1980 में उनका पहला गज़ल एल्बम आहट रिलीज़ हुआ। इस एल्बम ने उन्हें नई पहचान दी। इसके बाद तरन्नुम, महफिल और नायाब जैसे एल्बम आए, जिन्होंने उन्हें गज़ल की दुनिया में बहुत शोहरत दिलाई। फिर साल 1986 में फिल्म नाम का गाना चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, ये गाना आया और पंकज उधास रातों रात स्टार बन गए। ये गाना आज भी हम सुनते हैं तो आंखें नम कर देती हैं। पंकज उधास ने सिर्फ गज़ल ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी कई यादगार गाने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाए हैं। 26 फरवरी 2024 को पंकज उधास इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी मखमली आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी सुरीली आवाज़ का जादू हमेशा असर दिखाता रहेगा। पंकज उधास के लोकप्रिय गीतों की यूं तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें फिल्मी और गैर फिल्मी गज़लें और गीत शामिल हैं। जैसे नाम फिल्म का जिक्र मैंने किया, चिट्ठी आई है, निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है और आहिस्ता कीजिए बातें, चांदी जैसा रंग है तेरा, फिर हाथ में गिलास, सच बोलता हूँ मैं, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, साजन फिल्म से, मोहरा का गीत, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, दयावान का गीत, आज फिर तुम पे प्यार आया है, ये दिल लगी का गाना, मैं दीवाना हूँ, मुझे आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, ये शीर्षक गीत जैसे कई खूबसूरत गीत गज़ल शुमार हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में। तो आज पंकज उधास जी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए उनके सुप्रसिद्ध गीत और उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं फिल्म नाम से।

तो श्रोताओं, पंकज उधास और साथियों का भी आपने सुना नाम फिल्म में आनंद बख्शी के बोल थे और सुरों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की, चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले, राजवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा। और अब कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है जूली फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की, पलना ब्लॉक लमगड़ा से पुष्कर बिष्ट, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, ताजपुर मोरवा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। तो सुनिए अपनी फरमाइश का, जूली फिल्म का ये गाना।

झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी, देबेन जी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज नदीम, शमीम ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, राजनगर गांधी निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता, राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुड़ी, माधवी साध्वी, हैप्पी रिद्धि, गुनगुन चुलबुल, रेणु ज्योति जी, शालू दीप शिखा अर्चना, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका वंश बत्ता। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म भीगी पलके में, बोल एमजी हशमत के और तर्ज बनाई है जुगल किशोर और तिलक राज ने।

और अब श्रोताओं, चलते चलते आपको चलते चलते फिल्म का ही गाना सुना देते हैं। किशोर कुमार ने इसे गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है, पप्पी लहरी का संगीत है। सुनना चाहा है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशान कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी, फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बीबी आराध्या, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू, बी के सुर गनैया, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद।

जी हाँ श्रोताओं, कभी अलविदा ना कहना, गीत ज़रूर याद रखना, और जिनकी फरमाइश आज शामिल नहीं हो पाई वो बिल्कुल खफा ना होना, क्योंकि कल गीत निर्जर में फिर आपकी फरमाइशों को मौका मिलेगा। आज अंजू पंक्ति के साथ गीत निर्जर का सफ़र यहीं तक। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में, समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर

दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में रॉयल चैलेंज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का प्रोग्राम सबरंग। आगाज कर रहे हैं पंकज उधास के गाए इस नगमे के साथ।

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
4: सबरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की ही आवाज़ में मुमताज़ राशिद का गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: शुद्धों आज जानी मानी पार्श्व गायक गजल गायक पंकज उधास जी की जन्म जयंती है और आज सब रंग में उनकी आवाज़ के कई रंग हम पेश कर रहे हैं। तो एक और खूबसूरत नगमा आइए सुनते हैं, जमील मुजाहिद ने इसे लिखा है, आवाज़ पंकज उधास की।

पंकज उदास जी की आवाज़ का एक और खूबसूरत रंग हम पेश कर रहे हैं, जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा है। तो ये गाना है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल।

पंकज उधास के गाय से खूबसूरत नगमे के साथ सबरंग संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति उपजाति समुदाय OBC की सूची में है, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये बात उन्होंने देहरादून में OBC वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। श्री धामी ने कहा कि राज्य की नीति और बजट को गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि OBC संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है। चंपावत में 13 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 का कल हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलजू महोत्सव प्रदेश की लोक संस्कृति, परम्परा, कला और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चंपावत में धार्मिक पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। गोलचू कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, सड़क चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगई की पहल हेलो हेल्प पिथौरागढ़ को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शुक्रवार से शुरू हुए इस शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म पर पहले ही दिन 57 शिकायतें दर्ज की गई। प्रशासन के अनुसार प्राप्त शिकायतों को रियल टाइम में संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। एयर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश वर्मा ने बताया कि लोग लगातार कॉल कर अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं। नई व्यवस्था को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हेलो हेल्प पिथौरागढ़ कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित है। इसके अलावा नागरिक व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये पहल जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 को सुव्यवस्थित व समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए मेला प्रशासन तैयारी में जुटा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़ी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका सभी तैयारियों पर लगातार नजर बनाए रखने के साथ ही रोजाना अधिकारियों की मीटिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रही है। साथ ही जिले के अलावा जो अलग कार्य हैं उनके भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उनके भी समीक्षा कर नई योजनाओं को तैयार करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के थल मुवानी मोटर मार्ग में एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मृत्यु और एक अन्य घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दोपहिया वाहन पर सवार 3 युवक थल कस्बे से मसमोली गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वाहन के खाई में गिरने से ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। आज है रविवार और आज के दिन हम सुरबहार में लेकर आते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। सुरबहार के सभी श्रोताओं को अंजू पांक्ति का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज सुरबहार में फिल्मी गाने जो हमने चुने हैं उसके लिए चुना है राग दरबारी। राग दरबारी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत गंभीर और भावपूर्ण राग है। हिंदी सिनेमा में जो फिल्मी गीत इस राग पर बेस्ड हैं उनमें अक्सर दर्द, वियोग और भक्ति से भरे गीतों को प्राथमिकता दी जाती है और इस राग पर आधारित कुछ बेहद लोकप्रिय और सदाबहार फिल्मी गीत हम लेकर आए हैं सुरबहार में। तो शुभारंभ सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गाने से। ये गाना जितना सुरीला है भक्ति भाव से परिपूर्ण है। लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली मखमली आवाज से इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इस फिल्म में जीनत अमान मंदिर की घंटी को छूकर जब इस गीत को गाना आरंभ करती हैं तो एक खास तरह की आभा फिल्मी पर्दे पर साकार हो जाती है जो दिलों तक पहुंचती है और इस गीत को बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ जड़ा है, लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने और संगीत से बेहद सुरीला बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, रात दरबारी में सजे जो फिल्मी गाने हैं उनमें कोमल स्वरों की अगर हम बात करें तो खासकर कोमल ग और ध का खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है और इन गीतों को जब भी हम सुनते हैं ये यादगार गाने पुराने दौर से आज तक एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने सजे हैं इस राग में। राग दरबारी में ही बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत गाना है काजल फिल्म से, जो कि मीना कुमारी पर फिल्माया गया था, जिसके बोल हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। श्रोताओं, ये एक ऐसा गीत है जो प्रकृति के आंगन में आरंभ होता है।

है जिसमें मोर का नृत्य है, पक्षियों के कलरव हैं, बारिश की बूंदें हैं, और उसके बाद मीना कुमारी प्रभु के सामने वाद्य यंत्र पर गीत गा रही हैं। इसको आशा भोसले ने खूबसूरती से गाया है, लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत रवि का है। ये फिल्म गुलशन नंदा ने लिखी थी और ये गाना एक भक्ति भाव से परिपूर्ण सुंदर गीत है। आइए सुनते हैं।

और अब श्रोताओं, राग दरबारी में एक और गाना आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म है बैजू बावरा और गाने के बोल हैं, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरई मेरे नाले। इस गीत को शकील बदायूनी जी ने लिखा है, संगीत नौशाद का है और मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को बखूबी अपनी आवाज़ से सजाया है। आइए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, राग दरबारी वैभव विराट और उदात्त की परिकल्पना रचने में सक्षम राग है, इसीलिए इसमें ख्याल गायन में कई तरह से विविधता भरी जाती है और इसीलिए इसको दरबारी भी कहा जाता है। और फिल्मी गानों की बात करें तो आप सुन ही रहे हैं, इतने खूबसूरत गाने सजे हैं राग दरबारी में। और अब कार्यक्रम है समापन की ओर, तो एक गाना और बेहद खूबसूरत ये गीत है जो आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है, आइए सुनते हैं।

सुरबहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन।

सैनिक भाइयों, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना एलओसी कारगिल फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे हुए ये बोल थे, अनु मलिक का संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में लव आजकल फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, आवाज़ है मोहित चौहान की।

0: 90.
1: सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। और श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में वांटेड फिल्म से। अरुण भैरव ने इस गीत को लिखा है, संगीत है साजिद और वाजिद का।

सैनी भाई, वांटेड फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं रेडी फिल्म का गीत तुलसी कुमार और केके की आवाजों में। नीलेश मिश्रा के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है प्रीतम ने।

सैनी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में रन फिल्म का ये खूबसूरत गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अलका याग्निक और सोनू निगम के गाए रन फिल्म के इसी दो गाने के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, अनुमति दीजिए। जय हिंद।

सैनिकों के लिए। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर पर राग देस। आपके साथ तबला संगीत की है अनिंदो चटर्जी ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर पर राग देस। आपके साथ तबला संगीत की थी अनिंदु चटर्जी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गुमशुदा से संबंधित ये सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बागेश्वर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम विनायक थाना थल जनपद पिथौरागढ़ निवासी 84 वर्षीय रेवती देवी पत्नी स्वर्गीय हरगोविंद दिनांक 20 अप्रैल 2026 से ग्राम गोखरी थाना कांडा जनपद बागेश्वर से लापता हैं। उनका कद 5 फीट, इकहरा शरीर, चेहरे का रंग गेहुआ है। लापता होने से पहले वो लाल ब्लाउज, नीली साड़ी, गले में माला और हवाई चप्पल पहनी थीं। इनकी मानसिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। इनके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त हो तो थाना कांडा जनपद बागेश्वर पर संपर्क करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। नमस्कार श्रोताओं, मेरी पसंद कार्यक्रम के साथ मैं हूं उर्मिला जोशी।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है हिंदी सिनेमा के निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके फिल्मी सफर से जुड़ी बातों और उनकी फिल्मों के सदाबहार गीतों के साथ।

श्रोताओं, 27 जुलाई साल 1939 को बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा ने अपना करियर 1950 में गीतादत्त और शक्ति सामंत के साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में शुरू किया, लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ साल 1968 में, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, हसीना मान जाएगी। शशि कपूर और बबीता अभिनीत ये फिल्म हिट रही और बॉलीवुड में प्रकाश मेहरा के नाम की चर्चा होने लगी। इस फिल्म का गीत संगीत भी क्या कमाल का रहा। कल्याण जी, आनंद जी के संगीत से सजे एक से बढ़कर एक मधुर गीतों संग ये फिल्म हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की याद दिलाती है।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी

0: पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन, साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। श्रोताओ, साल 1973 प्रकाश मेहरा की फिल्म आई जंजीर। ये फिल्म बॉलीवुड की वो फिल्म रही जिसने प्रकाश मेहरा को तो पहचान दी ही, लेकिन इस फिल्म से अभिनेता अमिताभ बच्चन उभर कर आए एंग्री यंग मैन के रूप में। श्रोताओं, इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की कई फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही थीं। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने उनकी अभिनय क्षमता को पहचाना और उन पर भरोसा किया, और इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रूप में उन्हें पर्दे पर ऐसे पेश किया कि उनका किरदार, उनकी कठोरता, उनका गुस्सा, ये सब हिंदी सिनेमा के लिए वरदान बन गया, और यहीं से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का।

शुद्ध जंजीर फिल्म के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी फिल्में शामिल रहीं। इन फिल्मों की कहानी, किरदार और गीत संगीत इतना लोकप्रिय रहा कि ये फिल्में सदाबहार फिल्मों के रूप में आज भी याद की जाती हैं।

श्रुतो प्रकाश मेहरा ने निर्देशक के रूप में कुल 13 फिल्में बनाई, जिनमें हसीना मान जाएगी, मेला, समाधि, जंजीर, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, आखिरी डाकू, मुकद्दर का सिकंदर, देशद्रोही, लावारिस, नमक हलाल, शराबी और जख्मी सिपाही शामिल हैं। निर्माता के रूप में उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिनमें ऊपर बताई गई इन फिल्मों के अलावा शामिल हैं फिल्म ईमानदार, जादूगर और बाल ब्रह्मचारी। श्रुतो, उनकी फिल्मों की खासियत थी संवाद अदायगी, कहानी में इमोशन और एक्शन का जबरदस्त संगम, और साथ ही किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर के गाए सदाबहार गीत, जो उनकी फिल्मों की ताजगी को बनाए हुए हैं।

श्रोतो, प्रकाश मेहरा का कहना था कि मैं पब्लिक के लिए फिल्में बनाता हूँ, आलोचकों के लिए नहीं। अगर जनता इन फिल्मों से जुड़ पा रही है, मनोरंजन कर रही है, तो मेरी फिल्म हिट है। और श्रोताओं, उनकी फिल्मों ने वाकई मनोरंजन का वो दौर दर्शकों को दिया जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। उनकी फिल्में बेमिसाल और लाजवाब रही हैं। 17 मई साल 2009 को प्रकाश मेहरा इस दुनिया को

अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत, उनका दिया हुआ एंग्री यंग मैन हमेशा हिंदी सिनेमा में जिंदा रहेगा। प्रकाश मेहरा को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी श्रद्धांजलि।

श्रोताओ, ये थी आज की मेरी पसंद, अपनी पसंद के चंद फिल्मी गीतों के साथ। कल इस कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए आज के मेरी पसंद कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मेरी पसंद। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी बहन गीता कनवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों अपने आज के आधे घंटे के खूबसूरत सफ़र में हम करेंगे आपसे कुछ और नए रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों किसी भी देश के विकास के लिए उसके समाज का जागरूक होना आवश्यक है। समाज को जागरूक करने में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन संचार साधनों में रेडियो अपना विशेष स्थान रखता है और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का मनोरंजन करने के साथ ही नई नई जानकारियां तो प्रदान करता ही है, साथ ही अपने श्रोताओं को शिक्षित और जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैंने हमारे देश में रेडियो का आगमन वर्ष 1936 में हुआ। उस समय देशवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे और रेडियो ने देशवासियों के मन में राष्ट्रीय चेतना की भावना भरी। साथ ही देश आज़ाद होने के बाद रेडियो ने आकाशवाणी के रूप में समाज को नई दिशा प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाई है। बहनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़े रहते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रसारित होने वाली वार्ताओं और भेंट वार्ताओं के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं पर मिलने वाली जानकारियां हमें जागरूक करने के साथ ही इन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मैंने अगर हम बच्चों के कार्यक्रम की बात करें तो बच्चों के कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारियां उनके शैक्षिक मानसिक और भावनात्मक विकास को विस्तार देने के साथ ही उनकी रचनात्मकता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साथ ही बच्चे इन कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी सीखते हैं और बच्चों में नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। इसी तरह बहनों युवा श्रोताओं के लिए आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में समसामयिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा और भेंट वार्ताओं के माध्यम से नई नई जानकारियां प्रदान की जाती हैं। साथ ही ज्ञान विज्ञान और खेल जगत से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करने और अपने भविष्य निर्माण करने की ओर अग्रसर और प्रेरित करते हैं। मानव समाज को सुदृढ़ बनाने में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है और आकाशवाणी महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों में नारी समाज की समस्याओं और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी देने के साथ ही महिलाओं को अपने जीवन की चुनौतियों को समझने और इनके समाधान के बारे में सोचने के बारे में भी प्रेरित करता है। साथ ही बहनों शासन स्तर पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां देकर महिलाओं को इन योजनाओं से जुड़ने और इनका लाभ उठाने के लिए भी जागरूक किया जाता है। बहनों हमारा समाज हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। किसानों की अनेक समस्याएं होती हैं और आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की समस्याएं समझने और इनके समाधान के लिए समय समय पर गोष्ठियों के माध्यम से जानकारियां प्रदान कराता है। विषय विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को अपनी उनकी फसल पैदावार और आधुनिक उपकरणों की जानकारियां दी जाती हैं, साथ ही आधुनिक तरीके से खेती करने के उपाय भी बताए जाते हैं। मैंने आकाशवाणी मनोरंजन का सस्ता और सुलभ साधन है और मनोरंजन के साथ ही अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी हमारी संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर देश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक कलाकारों को अपनी कला को निखारने के लिए आकाशवाणी ने मंच प्रदान किया है और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा लोकगीत संगीत समाज को उस संस्कृति से जोड़ता है और क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा बहनों आकाशवाणी समय समय पर अपने समाचार बुलेटिन के माध्यम से देश विदेश की घटनाओं के समाचार भी पूरी विश्वसनीयता के साथ प्रसारित करता है और हम तक पहुँचाता है।

मैंने आकाशवाणी ने साहित्य को संरक्षित करने में भी अपना योगदान दिया है और अपने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागरूक करने में आज भी प्रयासरत है। मैंने आज मोबाइल और सोशल मीडिया जानकारी और मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम बन गए हैं, लेकिन आकाशवाणी विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता को आज भी बनाए हुए है, क्योंकि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अपनी विश्वसनीयता और सर्वसुलभ जानकारियों के साथ स्वस्थ मनोरंजन के लिए भी जाना जाता है। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें जागरूकता बढ़ाता आकाशवाणी विषय पर, और अब आइए कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: मैडम, महिलाएं पूरे

0: किया ने किया डिजिटल पेमेंट बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: मैडम, महिलाएं पूरे घर की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करते हुए वो प्रेम और स्नेह से अपना कर्तव्य निभाती है और अपनी व्यस्तता भरी दिनचर्या में जाने अनजाने ही सही कई समस्याओं से घिर जाती है, और उन्हीं में से एक समस्या है उच्च रक्तचाप। तो बहनों, आइए बातचीत के इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर श्वेता चौहान, एसोसिएट ऑफिसर, सोबन सिंह जीना, आयुर्विज्ञान संस्थान बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत।
4: स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
5: धन्यवाद आपका।
4: मैम, आजकल महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या काफी देखने में आ रही है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तचाप होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है।
5: देखिए, रक्तचाप जिनको हम आम भाषा में कहते हैं BP की शिकायत, और एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में हम कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी कि जो हमारे नसों में जो खून बहता है उसमें जो प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन, उसे BP कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो BP होता है 110/70 यानी कि 110/70 के नीचे होना चाहिए, लेकिन जब ये लोगों का ज्यादा होता है, और स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर ये BP 120/1 से ज्यादा हो, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल गर्भवती महिलाओं की बात करें, उनका अगर BP 140/90 से ज्यादा हो, तो उसको हम हाइपरटेंशन की शिकायत या आम भाषा में BP की शिकायत कहते हैं।
4: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या बहुत कम या यूं कहें कि देखने को ही नहीं मिलती थी, लेकिन आज के समय की बात अगर करें तो महिलाओं में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण है?
5: देखिए, अगर मैं कहूँ तो उच्च रक्तचाप की समस्या पहले भी होती थी, लेकिन पहले लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं थी। आजकल ज्यादा जानकारी लोगों को है, सोशल मीडिया या आपस में बातचीत में, या अवेयरनेस लोगों को इतनी हो गई है, और जब से प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पतालों में डिलीवरी करवाना अनिवार्य हो गया है, तो हर उसकी जितनी भी बार अगर वो गर्भवती महिला अस्पताल आती है तो उसकी BP की जाँच होती है। हर समय वह आती है और BP की जाँच समय समय पर होती है, तो उसमें रक्तचाप यदि किसी का होता है तो वह जानकारी में आ जाता है। पहले के लोग घरों में ही डिलीवरी करते थे, अस्पतालों में आना ना सही नहीं माना जाता था और घर में ही डिलीवरी कराई जाती थी, तो उस वहाँ पर कोई BP का चेकअप ही नहीं होता था, तो जिससे यदि किसी को उच्च रक्तचाप की शिकायत होती भी होगी तो वो जानकारी में नहीं आ पाती थी। तो आजकल अवेयरनेस की वजह से और अस्पतालों में लोगों का जो ध्यान हो रहा है कि अब हमें अस्पतालों में डिलीवरी करानी है और समय समय पर दिखाना है, उसकी वजह से भी ये रिकॉर्ड में अब ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा है कि पहले भी रहा होगा, लेकिन वह चीज जानकारी में नहीं आती थी।
4: इसके अलावा मैम, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या होते हैं?
5: देखिए, उच्च रक्तचाप के लक्षण में होता है, एक तो मरीजों को हेडेक होता है, सर दर्द, और स्पेशली जिनको BP की शिकायत होती है तो उनको सर के पिछले हिस्से में सर दर्द रहता है, नींद नहीं आना। नींद अगर आती है, जो आप मरीज यह कहेगा कि पहले उसे नींद अच्छी आती थी, लेकिन अब नींद डिस्टर्ब नींद होती है, एकदम अच्छे से सुकून भरी नींद नहीं होती है, सर में हमेशा भारीपन और सर दर्द रहता है, घबराहट सी बनी रह सकती है, यही मेन लक्षण उसके होते हैं। यह बात है अगर औरत गर्भवती नहीं है, पर जब यदि महिला गर्भवती है और उसमें उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो उसको आंखों में धुंधलापन, सर में दर्द, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, पैरों में अत्यधिक सूजन आना, और वो ऐसी सूजन होना कि वो आराम करने के बाद, जैसे रात भर 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी यदि सूजन, पैरों की सूजन में आराम नहीं मिलता है, तो ये उच्च रक्तचाप के लक्षण हो सकते हैं गर्भवती महिलाओं। और जो अगर गर्भवती नहीं है तो उनमें सर दर्द, घबराहट, सर के पिछले हिस्से में दर्द होना और अच्छी तरह से नींद ना आना, ये लक्षण होंगे।
4: जी डॉक्टर साहब, आज देखें तो हमारी जो दिनचर्या है बहुत व्यस्त है, जिस कारण काफी तनाव भी रहता है, तो जानना चाहेंगे कि इस तनाव का उच्च रक्तचाप से क्या संबंध है?
5: देखिए, जब भी इंसान तनाव में रहता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं, है ना, तो स्ट्रेस हार्मोन्स के कोर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल जब हमारे शरीर में आता है तो इंसान स्ट्रेस में होता है। आप एक एग्जांपल उदाहरण दूंगी कि यदि आपके सामने आप कहीं जा रहे हैं बिल्कुल आराम से सुकून से और अचानक सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? दिल में घबराहट होगी, एकदम इंसान टेंशन में आ जाएगा, एक स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस मोड में इंसान आ जाता है ना, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को खून

0: की सप्लाई तेज चाहिए, तो हमारी जो धमनियां होंगी, खून की नसें होंगी, वो एकदम से सिकुड़ेंगी। खूब तेज तेज ब्लड सप्लाई हमारे हर वाइटल ऑर्गन को होगा और हम लोग, हमारा जो शरीर है बहुत स्ट्रेस मोड में, मतलब कि किसी परेशानी से को हटाने के उसमें काम करेगा। तो इस तरह से जब इंसान हमेशा तनाव में रहता है तो क्या होगा, वही वाली चीज जो आप उदाहरण के तौर पर कि यदि सामने शेर आ गए तो इंसान सोचेगा मैं कैसे भागू, क्या करूँ, कैसे इससे बचूँ। यदि जब शरीर में स्ट्रेस होता है तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से हमारी जो नसें होती है, फिजियोलॉजी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो उससे क्या होंगी, हमारी धमनियां सिकुड़ती हैं और बीपी का प्रवाह, बीपी बढ़ जाता है, यानी कि जो खून का प्रवाह हमारी नसों में है उसकी जो वॉल्स हैं उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है क्योंकि खून बहुत तेजी से जाता है। तो उसकी वजह से उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है और जिसको रोकने के लिए इंसान को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाएं, ये कुछ चीजें होंगी जिनसे आराम होगा और तनाव के साथ हमेशा उच्च रक्तचाप तो संबंधित रहेगा।
1: जी साथ ही मैम, अगर किसी महिला में उच्च रक्तचाप की समस्या देखने में आती है तो उसे अपना रूटीन चेकअप करवाना कितना जरूरी है?
0: देखिए, उच्च रक्तचाप अगर हमारे देश की बात करें या हमारे स्टेट की बात करें, उच्च रक्तचाप ऐसे पकड़ने में नहीं आता है, डायग्नोज नहीं होता। ज्यादातर लोग अस्पताल में किसी और कारणवश आते हैं, उनका जब बीपी चेक होता है तो उसमें रक्तचाप आता है। तो हमेशा ये कोशिश की जाए कि जब भी आप अस्पताल में आते हैं तो आपका बीपी जरूर चेक हो। जो भी गर्भवती महिलाएं अस्पताल जाएं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि उनका बीपी जरूर चेक किया जाए और यदि जो लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण आए तो अपना बीपी जरूर कराएं। और बीपी तो आजकल मैं कहूंगी कि जो अगर घर के आसपास अगर यदि अस्पताल नहीं भी है, आजकल ऑटोमेटिक बीपी मशीनें आ गई हैं जिससे कि बीपी लेना आसान है ऑटोमेटिक, तो उससे भी लिया जा सकता है। तो हर महिला को यदि वो 40 के ऊपर है और या गर्भवती है तो उसका बीपी का चेक होना, रक्तचाप का चेकअप होना अनिवार्य है। और उन महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो अस्पताल विजिट करें तो उनका बीपी जरूर चेक हो।
1: जी मैम, इसके अलावा मैम गर्भावस्था में भी कई महिलाओं का रक्तचाप बढ़ जाता है, तो इसके क्या कारण होते हैं और व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए?
0: देखिए, गर्भवती महिलाओं में जैसा मैंने पहले भी बताया, नॉर्मल बीपी जो रक्तचाप होता है वो 120/80 और नए स्टैंडर्ड की बात करें तो 110/70 होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में यदि बीपी 5 महीने की प्रेगनेंसी या 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद यदि बीपी 140/90 से ज्यादा आता है तो उसे उच्च रक्तचाप की समस्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो उसके कई उसमें और भी चीजें आती हैं जैसे प्री एक्लेम्पसिया। महिलाओं में यदि जैसे मैंने बताया कि बीपी बढ़ने की वजह से पैरों में सूजन आना, आंखों में धुंधलापन आना, सर में दर्द होना या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है तो ये गर्भावस्था की वजह से उस महिला में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। और गर्भावस्था में जो बीपी बढ़ता है वो सामान्यतया डिलीवरी के 3 हफ्ते के बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो यह बीपी की समस्या सिर्फ उसकी गर्भावस्था के कारण होती है और जो कि स्पेशली 5वें महीने यानी कि 20 हफ्ते के बाद बढ़ती है और 140/90 से बीपी ज्यादा होता है तो उसे हम गर्भावस्था की वजह से बीपी बढ़ना कहते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्पसिया कहा जाता है।
1: मैम, अगर किसी महिला में उच्च रक्तचाप हो ही गया है तो फिर उसे क्या सावधानियां रखनी जरूरी है और सावधानियों का ध्यान न रख गया तो इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? साथ ही महिलाओं को किस उम्र के बाद अपनी नियमित जांच करवानी चाहिए?
0: अगर मैं महिला की जो गर्भवती नहीं है, अगर उन महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को 40 के बाद तो स्पेशली अपना बीपी हमेशा चेकअप कराना चाहिए। अगर बीपी उनका बढ़ा हुआ आता है तो जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई है वो जरूर समय समय पर लेनी है। ज्यादातर यह देखा गया है कि महिलाओं को दवाइयाँ दी गई, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, उन्होंने 5 दिन या हफ्ता भर दवाई खाई, चेक किया, बीपी नॉर्मल आया और फिर बीपी छोड़ दिया। यह सबसे गंभीर समस्या हो सकती है कि बीपी की दवा लेने के वो अनियमित तरीके से लेना, उसके बाद क्योंकि बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो सकता है और जिसकी वजह से कई लोगों का बीपी अनकंट्रोल होकर लकवा तक मार सकता है। तो मेरा सबसे पहला यही सुझाव होगा कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहे और तब तक लेते रहे कि जब तक डॉक्टर आपको खुद से दवा बंद या उसकी डोज को ऊपर नीचे करने के लिए ना कहे। दूसरा, बीपी के उच्च रक्तचाप के लोगों को नमक का हमेशा परहेज करना चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ खाने में नमक कम, अचार या पापड़ हो गया, नमकीन हो गया, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, प्रायतः देखा गया कि खाना जैसे खाया उसमें नमक कम है तो लोग ऊपर से नमक को छिड़क के खाते हैं, वो भी उच्च रक्तचाप का शिकायत करता है। हमेशा जो पका हुआ नमक होता है, खाना बनाते हुए जो आपने नमक डाल दिया और वो जो खाना पक गया, नमक जो खाने के साथ पक गया, वो ज्यादा सेफ होता है। जो आप ऊपर से ऐड करते हैं, ऊपर से जो नमक छिड़क के खाते हैं तो उससे भी बीपी बढ़ता है। तो नमक का परहेज करना होगा। सकता है। सबसे चीज पहली चीज, अब गर्भवती महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो उनमें अगर 20 हफ्ते के बाद उनका बीपी 140/90 से ज्यादा आता है तो डॉक्टर द्वारा उनको

0: दवाई दी जाती है वह नियमित समय पर लेना है। और साथ में क्योंकि उच्च रक्तचाप के गर्भवती महिला के अजन्य शिशु पर भी पड़ता है, तो उसका समय समय पर जो अल्ट्रासाउंड यदि डॉक्टर एडवाइस करते हैं बच्चे की ग्रोथ जानने के लिए, तो वो भी डॉक्टर के सुझाव के आधार पे करते रहना चाहिए।
1: जी मैम। मैम, आज की व्यस्त दिनचर्या में महिलाएं घर और कार्यस्थल दोनों संभाल रही हैं, तो इससे उनके शरीर पर भी इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कुछ विशेष बातें आपसे जानना चाहेंगे जिसका ध्यान रखकर महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकती हैं।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी परिवार की समझिए रीढ़ की हड्डी होती है। यदि रीढ़ की हड्डी ही बैठ जाए तो शरीर क्या उठ पाएगा नहीं। तो महिलाओं को सबसे पहले प्रायोरिटी अपने हेल्थ को भी देनी चाहिए। पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपना बाहर का काम का ख्याल रखें, सब रखें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको भी समय समय पर, जैसे मैंने कहा कि यदि अस्पताल जाते हैं तो अपना बीपी चेकअप करवाना, शुगर चेकअप कराना, और 40 की उम्र होने के बाद जब महिलाओं का रजोनिवृत्ति जिसे कहते हैं या मेनोपॉज आने वाला होता है, तो उससे पहले कई बार उनकी मासिक धर्म में अनियमितताएं होती हैं या और समस्या शरीर में हो रही है, तो उसके लिए उन्हें अस्पताल जरूर विजिट करना चाहिए। बीपी, शुगर की जांच, थायराइड की जांच, 40 के पार, ये महिलाओं में प्रायतः बहुत आम बात होती है कि इन चीजों में दिक्कतें आने लगती हैं, तो इन टेस्ट को जरूर करें। और जिस प्रकार आप अपने घर परिवार का ख्याल रखती हैं, बच्चों के, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का या अपने पति का ख्याल रखती, उतने ही अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें। इन टेस्ट के साथ अपना खाना, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
1: मैम, आप हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ी और महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर काफी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की। साथ ही मैम, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मैंने अभी आप सुनी थी महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर श्वेता चौहान, एसोसिएट ऑफिसर, सोबन सिंह जीना, आयुर्विज्ञान संस्थान बेस, चिकित्सालय अल्मोड़ा से की गई ये क्षेत्र संकलित बातचीत। और आइए अब कार्यक्रम में आगे करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

तो बहनों, इसी गीत के साथ अपनी बहन गीता कनवाल को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अगले अंक में आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: घर संसार। अभी महिलाएं सुन रही थी अपना ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।

0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी देहरादून से 1:05 हुए हैं। अब समय प्रादेशिक समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। कल खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का शुभारंभ किया और भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री मोदी ने ये यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री

0: महामहिम श्री उल्फ क्रिस्टन के निमंत्रण पर हो रही है। 2018 में श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार विक्रेता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, एक दूसरे की खुशहाली, औद्योगिक समृद्धि और साझा विकास से भी जुड़े हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान लीड आईटी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसमें प्रौद्योगिक हस्तांतरण, साझा विकास और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए एक औद्योगिक मंच पर जोर दिया गया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व बाजार उपलब्ध हुआ। इससे भारत से कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भारी वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ यूरोप से उच्च तकनीकी सेवा और निवेश के द्वार खुलेंगे। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। डोली आज रात्रि विश्राम को पनार बुग्याल पहुंचेगी। कल 18 मई को सुबह रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 12:45 पर भगवान रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी सहित देश विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि 18 मई को दोपहर में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
1: ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और 18 तारीख मई 11:30 और 12 बजे के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार, जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है, सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि आस्था का जो सैलाब उमड़ा है, उससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होगी।
2: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली का यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर ग्रीष्मकाल में मई से लेकर अक्टूबर माह तक 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। शीतकाल में 6 माह रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाचार दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिक एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में केंद्रीय विद्यालय ONGC ग्राउंड देहरादून में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्री जोशी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण देना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और अन्य आवश्यक संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। सरकार ने पुराने RCMS पोर्टल को आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के साथ अपग्रेड कर URCMS पोर्टल तैयार किया है। इससे राशन कार्ड संबंधी सेवा

0: सेवाएं तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक होंगी। अब लोगों को राशन कार्ड बनवाने में उसमें संशोधन कराने के लिए दफ्तरों और राशन दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि नई व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के समय की भी बचत होगी।
1: शासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है, उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए EKYC का है, वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना।
0: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली द्वारा खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षी सामान्य ड्यूटी के कुल 404 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। कमांडेंट कार्यालय 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा इस संबंध में जिला खेल अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को पत्र भेजकर जनपद के सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में इसका व्यापक एवं प्रभावी प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि सीमांत क्षेत्र के अधिक से अधिक योग्य खिलाड़ी इस अवसर का लाभ उठा सकें। भर्ती की पूरी प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जाएगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार में नगर निगम द्वारा निर्मित रजत जयंती पार्क, बुद्धा पार्क का लोकार्पण किया। ये पार्क नगरवासियों, युवाओं एवं बच्चों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ, हरित एवं प्रेरणादायी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। श्री बलूनी ने कहा कि ये पहल केवल शहर की सौंदर्यता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली और जन सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में ये पार्क स्थानीय नागरिकों के लिए संवाद, विश्राम और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना हुई। कल खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली का शुभारंभ किया। और भारत सरकार की स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

बाबुल सुप्रियो का गाया ये नगमा अभी आपने सुना। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपक, कहानी ऐसे बनती है। प्रस्तुति है विनोद कुमार की।

हो सकता है कि ये सवाल बहुत पुराना हो कि आखिर कहानी का जन्म होता कैसे। कहानी यूं ही तो लिखी जाती नहीं। चलिए सुविधा के लिए मान लेते हैं कि इसके लिए किसी घटना, व्यक्ति या पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है जो अकेले या मिलकर कहानी की नींव तैयार करता है और लिखने वाला शब्दों की लय ताल पर पिरोकर एक कहानी गढ़ देता है। लेकिन सच तो यही है कि किसी कहानी के उद्भव और विकास का इतिहास कहानीकार ही बता सकता है। कहानीकार पूरी दुनिया जहान में अपनी संवेदनाओं के साथ घूमता है, सोच और दर्शन की कई परतों से होकर निकलता है, अपनी रचना धर्मिता,

0: अपनी समझ की पोटलियों को टटोलता है, अपने भावों को खंगालता है, तब जाके बैठता है कहानी लिखने। सिर्फ और सिर्फ कहानीकार ही बता सकता है कि भाई कहानी ऐसे बनती है, कहानी ऐसे बनती है। रूपक में आज हम प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला के साथ आपके समक्ष है। सबसे पहले तो इस कहानी का आनंद लीजिए और उसके बाद असगर वजाहत से एक छोटी सी मुलाकात, ये जानने के लिए कि कहानी आखिर बनती कैसे है। तो लीजिए सुनिए रूपक, कहानी ऐसे बनती है।
1: दिल्ली शहर देश की राजधानी। दिल्ली में कला और संस्कृति के लिए खास होता है जाड़े का मौसम। इस मौसम में शहर श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। खलखलाते, उबलते, चहकते, रिझाते, लबालब श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटक हमारी संस्कृति के सबसे बड़े खरीदार हैं। ये भाई खरीदार हैं इसलिए मान लेते हैं कि यही असली पारखी है। और बड़े घरों की महिलाएं लिपी पुती कैलेंडर आर्ट बनकर जाड़े की शामें किसी आर्ट गैलरी में या नाटक देख के गुजारना पसंद करती हैं। सचमुच जाड़े का मौसम कला और संस्कृति का मौसम है। सूरज जल्दी ही डूब जाता है और नरम मुलायम गर्म कपड़ों से टकराती ताजगी देने वाली हवा आर्ट गैलरियों और ऑडिटोरियमों के आसपास महक जाती है। ऐसी सुगंध की बस पूछिए मत। लोग कला और संस्कृति में डूब जाते हैं, कला और संस्कृति लोगों में डूब जाती है। ऐसी ही एक शाम थी। ऑडिटोरियम में पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्रम था। पंडित भीमसेन जोशी के गायन के परम प्रशंसक दास गुप्ता को गेट के बिल्कुल सामने खड़े होने पर जाने वाले दिखाई दे रहे थे, जो अपने कद को और ऊंचा दिखाने की नाकाम कोशिश में इस तरह लापरवाही से टहलते अंदर जा रहे थे जैसे पूरा आयोजन उन्हीं के लिए किया गया। लेकिन दास गुप्ता का बिना टिकट अंदर जाने का कोई जुगाड़ नहीं लग पाया था। बाहर सड़क पर एक घने पेड़ के नीचे अजब सिंह का खोखा था, चाय पान का खोखा। दास गुप्ता गेट के सामने से हटकर अजब सिंह के खोखे के पास जाकर खड़े हो गए। हाँ, सर्दी कुछ बढ़ गई थी और अजब सिंह ने तसले में आग सुलगा रखी थी।
2: कब आई बे पिया सैलानी? कसम मगाई पान की दास गुप्ता बाबू, सिर खुजाने से कुछ नहीं होगा। जोशी जी को सुनना है तो खीसे में से पैसे निकालिए, टिकट लीजिए, अंदर जाइए।
3: कितना चाय हो गया मेरा रे? 10 तो हो गया होगा।
2: 10-30 हो गई दास गुप्ता बाबू। अरे 2 तो भीमसेन जोशी जी का बोर्ड देख के ही पी ली थी आपने, गिनवाऊं क्या?
3: 30 है एकदम, 30 हो गया।
2: हाँ 30, वो भी तेज पत्ती की।
3: अजब, तुम चिंता मत करो, हम तुमको ना पैसा दिए बिना मरेगा नहीं। आर पिला दो ना रे बाबा, गर्मा गर्म है।
2: 3 पी के 1 गिनने वाला हिसाब किताब बहुत बढ़ जाता था, पर मुझे मत समझाइएगा। हाँ ये लीजिए दास गुप्ता बाबू, आज जुगाड़ नहीं लगेगा?
3: अजब लगेगा, एकदम लगेगा।
2: मेरी मानिए तो आप घर जाइए, 11 बजने वाले।
3: क्यों क्यों क्यों घर क्यों जाए हैं? हमको तो पंडित भीमसेन जोशी को सुनना है। तुम 2 सादा बनारसी लगा दो।
1: अचानक दास गुप्ता के मन में ये ख्याल आया कि सब तो आगे के गेट पर हैं, पुलिस वाला ऑर्गेनाइजर का बंदा सब लोग। अगर वो हॉल के पीछे से अंदर घुस जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ओफो, ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। ये सोचता हुआ वो हॉल के पीछे पहुंचता है जहां काफी अंधेरा था।

0: यहाँ तो कोई नहीं है, एकदम वीरान पड़ा है। बेकार में इतना देर में आगे खड़ा था। इस छोटा सा दीवार को फांदकर कर अंदर घुसना है, फिर तो पांडित जी के सामने बैठकर उनको सुनने का पूरा मजा लेगा।
1: कौन है वे?
2: मैं दासगुप्ता।
1: इधर क्या कर रहे हैं अंधेरे में?
2: निपटने आया हूँ। हे भगवान, इधर भी पारा लगा दिया। ओ साहब, टॉर्च था तो बुझी दो। अरे टॉर्च बुझा दो साहब, बोला तो निपटने आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: बिना टिकट अंदर जाने की कोशिश बेकार हुई। अब चूंकि पंडित भीमसेन जोशी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो लाउड स्पीकर लगाने वालों को भी कोसता है। भीमसेन जोशी की आवाज को सुनकर दासगुप्ता सोचता है कि अंदर वालों के कितने मजे हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जिन्हें शास्त्रीय गीत संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
0: पंडित भीमसेन जोशी का गायन ये लोग क्या समझेगा है? पंडित जी का तान को एंजॉय करना इनका बस का बात नहीं है। अरे इनसे अगर बोलेगा कि पंडित जी अपना तान में मंदो सप्तक से मध्यम और मध्यम सप्तक से तार सप्तक तक सुर का पुल बना देते हैं, तो ये लोग ना घबरा कर भाग जाएगा है? चला आया पंडित जी को सुनने। अरे अभी 10 मिनट में उठकर ना बाहर भागेगा।
4: दादा सर्दी है, उंगलियां ऐठ रही हैं।
0: ए सर्दी क्यों नहीं होगा रे? दिसंबर है, दिसंबर।
4: अरे टहलने से क्या होगा दादा, थोड़ा सा बैठ लो ना।
2: ए अजब अजब, ये तबला पर कौन है रे?
4: अरे मुझे क्या मालूम कौन बजा रहा है तबला।
2: वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना गरिमा, इतना गंभीर। बाबा अंदर तो आवाज उतर रहा है, अजब, एकदम एकदम अंदर तो आवाज उतर रहा है।
3: मुख्य द्वार के पास ही में एक छोटे से पंडाल के नीचे एक कैंटीन बनाई गई थी। दो मेजों का एक काउंटर सा था वहां पर, एक कॉफी प्लांट लगा था, ऊपर 200 वाट का एक बल्ब चल रहा था। खाने में भी काफी कुछ था, हॉट डॉग, हैमबर्गर, पॉपकॉर्न। दास गुप्ता ने कान फिर अंदर से आने वाली आवाज की तरफ लगा दिए। तभी वहां कुछ जवान लड़के लड़कियां आ जाते हैं। लड़की ने जींस पहन रखी थी और बाल इतने लंबे थे कि कमर तक लटक रहे थे। एक लड़की के बाल इतने छोटे थे कि कानों तक से दूर थे। लड़के ने चमड़े का कोट पहन रखा था और पैंट इतनी तंग थी कि उसकी पतली पतली टांगे फैली हुई और कुछ अजीब सी लग रही थी। लंबी और पतली टांगों वाले लड़के ने कैंटीन के बैरे से पूछा।
5: Really, what's too heavy for me? Can you sing like this?
6: Oh, please, I am so sleepy. And you know, I'm so thirsty right now.
5: Yeah, same here. Hello, listen. Tumhare paas cola hai? Do you have a cola?
7: Sorry, sir. Abhi khatam ho gaya.
6: Oh, my God. How silly. How stupid canteen they have. We must complain.
5: Don't worry, sweeties. Let's have coffee.
8: But I can't have coffee here.
5: Why? Why, my dear?
8: I always have coffee in my house or in Oberoi.
5: Oh, I see. Fine, fine, no problem. Let's go to the Oberoi's then.
7: Sir, sir, cola aa gaya. Chhotu crate lekar aa hi gaya. Wo dekhiye.
6: Oh, cola has come.
5: Are to suno, o paar karo, karo, karo, karo, cola paar karo.
6: Paar cola.
5: Paar karo, paar karo, paar karo. अरे पिला भी दे।
2: भगवान अगर बंदूक होता ना तो अभी का अभी इनको गोली मार देता।
8: बट नाउ आई वांट टू हैव कॉफी इन ओबेरॉयज।
0: जहर मिले ना पॉइजन तो वो भी पी लेना।
6: बट वी केम हियर टू लिसन टू

0: Joshi na.
1: Oh, don't be silly, please. He will sing for the whole night, for God's sake. Achha, ek kaam karte hain. We'll have coffee in the Oberoi and then we can come back, okay? Please, even we can have a sleep and come back. Let's go, please, come, please.
2: दूर कहीं 12 बजने के घंटे की आवाज सुनाई थी। सड़क पर सन्नाटा था। सड़क के किनारों पर दूर दूर तक मोटरों की लाइन लगी हुई थी। अब लोग बाहर निकलने लगे थे, ज्यादातर अधेड़ उम्र और गंभीर चेहरे वाले, उकताए और आत्मलिप्त।
3: अयो जो, देख रहा है, है? पंडित जी का प्रोग्राम में जमा ही आ रहा इनको। नींद से इनका आंख भारी हो रहा है।
4: दादा, अब आप कहेंगे टिकट बर्बाद कर दिया।
3: और क्या, अरे इसको टिकट बर्बाद करना नहीं बोलेंगे

0: लिप्त आए और आत्मलिप्त।
1: अयो जो देख रहा है, है? पंडित जी का प्रोग्राम में जमा ही आ रहा इनको, है इनको, नींद से इनका आंख भारी हो रहा है।
2: दादा अब आप कहेंगे टिकट बर्बाद कर दिया।
1: और क्या, अरे इसको टिकट बर्बाद करना नहीं बोलेंगे तो क्या बोले है? अरे पंडित जी तो 2 बजे के बाद मूड में आएंगे।
2: अच्छा।
1: अरे इनका क्या है, सब मालदार लोग हैं। ड्राइवर भेजकर टिकट मंगवा लिया होगा है? या मुफ्त का पास जुगाड़ कर लिया होगा। अरे घंटा 2 घंटा बैठा उठ गया। ये लोग ना यहाँ प्रोग्राम देखने नहीं आता है अजब, ये लोग ना आता है सिर्फ पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए।
2: और आप जैसे लोग जिनको सचमुच पंडित जी की कदर है यहाँ बाहर खड़े रहते।
1: क्या करेगा है? ऐसा लोग ना टिकट डिजर्व नहीं करता है, पैसा वेस्ट कर दिया, पंडित जी को भी वेस्ट कर दिया। ऐसा राती ऑडियंस है रे
3: दादा। अरे वो देखो वो लोग जा रहे हैं, उनकी जगह खाली होगी होगी
1: है? लेकिन तभी ना हमको बैठने नहीं देगा अजब। हे अजब तुम बताओ, ये पैसा तो इनका पूरा मिल गया है तभी हमको नहीं बैठाएगा, क्या तमाशा है रे बाबा।
2: सर्दी बढ़ गई है दादा, इधर आ जाओ, आग ताप लो। कोई नहीं समझेगा कि पंडित जी का इतना बड़ा कदरदान बाहर खड़ा है।
3: दादा आर्ट सेंटर का डायरेक्टर बाहर निकल रहा है, अरे उसे लपक लो, क्या पता आपका काम बन जाए। जाओ जाओ जाओ।
1: वो तो फालतू आदमी है रे, दूसरों का पेंटिंग बेच बेच कर 2-2 कोटी बना लिया, अब सैनिटरी फिटिंग का कारोबार डाल रखा है, यहाँ आर्ट कल्चर का जाप करता है। मालूम है क्यों?
2: क्यों
1: है? क्योंकि इनको पब्लिक रिलेशन का काम सबसे अच्छा आता है। ये लोग ना बड़ा बड़ा पार्टी देता है, एक हाथ से लगाता है दूसरा से कमाता है, अपना वाइफ के नाम पर इंटीरियर डेकोरेशन का ठेका लेता है, वो भी खुद नहीं करता है दूसरा से करवाता है 1000-2000 में, और कमाता है लाखों में। घटिया काम से वोट खरीदने तक साफ धंधा जानता है।
3: दादा वो देखो क्या हो रहा है वहाँ।
1: वो तो होगा ही, तू पहचाना नहीं उसको है? कुसुम, कुसुम गुप्ता, ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर है वो।
3: वो उसके कार का दरवाजा खोल रही है जैसे वो मालिक और ये नौकर।
1: खोलेगी क्यों नहीं है? अरे ब्रोशर में दिया होगा 1 लाख का विज्ञापन है, 1 लाख। ऐसा लोगों के लिए आर्ट कल्चर भी धंधा है भाई, धंधा। फैक्ट्री ना डाला, बड़ा केंद्र खोल लिया।
2: ओहो दादा यहाँ बैठे बैठे गरियाने से कुछ नहीं होगा।
3: अरे कुसुम गुप्ता को क्यों नहीं पकड़ लेते हो, क्या पता अंदर ही धकेल दे आपको। जाओ दादा
2: कुछ अंग्रेजी में गिटर पिटर करो, क्या पता मान जाए।
3: अरे जाओ ना।
1: ठीक होता है, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम।
4: यस
1: मैडम, माय नेम इज बीरेन, बीरेन दासगुप्त। आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी।
4: सो
1: मैडम कैन यू प्लीज।
4: नो नो आई एम सॉरी, वी हैव स्पेंट 20 लाख्स टू अरेंज दिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री एंट्री देन सॉरी।
1: प्लीज मैडम, अभी तो अंदर बहुत जगह खाली हो गया है।
4: गेट लॉस्ट
1: मैडम, मैडम मैडम प्लीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी मैम, प्लीज मैडम
4: लीव मी अलोन, लीव मी अलोन।
1: मैडम आप मेरे बात को सुनिए मैडम, मैडम।
3: दादा क्या हुआ?
1: 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फायदा नुकसान के अलावा इनको कुछ नहीं समझता है। एक पान लगा दो।
2: 32वां जोड़ा हो जाएगा दादा, ये
1: ठीक है, एकदम ठीक है।
5: My God, what nonsense is happening here?
6: Yeah, no, it was too much.
5: Did you like the program?
6: Oh, he's so handsome.
5: Did you notice the ring he's wearing?
6: Oh, yes. So beautiful. Must be very expensive, huh?
5: Sure, sure. My mother's uncle got the same ring.
6: That is platinum.
5: Yep. Hey, 2 cup tea.
6: Cup clean hai na?
1: Sunne bhi nahi deta hai. Bakor bakor ki jata hai.
6: He has just come back from Europe. He has a house in London.
5: Must be very rich.
6: Naturally, he takes 5 lakh.

0: $100 for a night.
1: My God, really? Then I must call him to sing in our marriage.
2: Hey, औकात तो देखो, हैं? अपना बल पर एक टाका भी नहीं कमा सकता है। बाप का दौलत का बाल बूते पर पंडित जी को शादी में गाने के लिए बुलाएगा, हैं? अरे मेरे मन में तो आता है ना उठकर के एक चोर दूं, हैं? और बताऊं कि पंडित जी ना तुम जैसा चीरकुटा का शादी में नहीं गाता है।
3: वही चाय साय होगी के घनी सर्दी पड़ रही।
4: अरे बैठो ड्राइवर साहब, हमारा तो चाय का ही काम है, अभी पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय।
3: 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते हवा पतली होगी। अब साहब को गाना सुनने की सूझरी। 2 बजे को आए, पता नहीं कब तक चलेगा ये प्रोग्राम।
4: सुबह 6 बजे तक चलेगा।
3: अरे भाई तब तो फंस गए।
4: ड्राइवर साहब ये लो चाय। कोई पास वास तो नहीं है आपके पास?
3: पास अंदर जाना है कि?
4: हाँ जी, वो अपने बड़े भाई है, उनको जाना है।
3: अरे पास तो नहीं है भाई, पर जुगाड़ हो सके।
4: अच्छा
3: अभी देखता हूँ, रुक, या गेट पर खड़े हवलदार कब काम आओगे।
5: हाँ जी भाई साहब, हाँ जी एसपी साहब का ड्राइवर हूँ जी। DYSP क्राइम ब्रांच और DSP ट्रैफिक की फैमिली ने पास मंगवाया जी। नहीं आप कहो तो बात करा दूंगा आपकी। अच्छा जी,
3: लो भाई जोड़ पास
6: मिल गया। अरे ये तो कमाल हो गया, भगवान भगवान।
4: दादा अब लपक लो अंदर।
6: अच्छा ये तो 4 पास है, हम 4 पास का क्या करेगा है?
3: अरे ले लो जी, सभी रख लो, जगह बदल बदल कर बैठ जियो।
6: एक ले लेता है हम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
4: जाओ दादा जल्दी जाओ, पंडित जी को कम से कम एक कदरदान सुनने वाला तो मिले।
6: है हो जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
7: ड्राइवर ने बचे हुए 3 पास तसले में जलती हुई आग में डाल दिए और दास गुप्ता गेट की तरफ लग गए। तो दोस्तों, असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला का अंत यहीं पर होता है। आखिर पंडित भीमसेन जोशी का कदरदान उनके पास पहुंच ही गया उनको सुनने के लिए। और अब बारी है इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कि आखिर कहानी बनती कैसे है, और इसके लिए एक छोटी सी मुलाकात कहानीकार असगर वजाहत से।
8: असगर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे श्रोताओं ने अभी अभी आपकी कहानी सरगम कोला का लुत्फ उठाया है। इससे पहले कि मैं कहानी के बारे में आपसे कुछ और चर्चा करूं, हमारे श्रोताओं के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कहानी ऐसे बनती है, ये चूंकि हमारा शीर्षक भी है, तो आप अपने शब्दों में से बताएं।
9: देखिए कहानी ऐसे बनती है जहां घटना विचार संवेदनाएं लोगों को आंदोलित करने के ये सारे के सारे जो उपकरण हैं, ये सारे के सारे टूल हैं, ये जीवन में परिवर्तित होते हैं, ये जीवन में घटित होते हैं और जीवन में घटित होकर ये जीवन की व्याख्या करते हैं, जीवन की परतें खोलते हैं और जीवन को समझने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी जब अपना आकार लेती है तो वो जीवन से आकार लेती है, जीवन की व्याख्या करती है, जीवन को समझने का एक उपकरण बनती है और जीवन को जानने का एक माध्यम होती है। सरगम कोला की कहानी जो है वो दरअसल एक ऐसे समाज की कहानी है जहां पर कला और बाजार का एक ऐसा संगम हो रहा है, जिस संगम के कारण जो कला मर्मज्ञ हैं, जो वास्तव में कलाकार हैं या कला को समझते हैं, तो वे हाशिए पर जा रहे हैं और जो कला को कम समझते हैं या नहीं समझते हैं वो मुख्य पृष्ठ के ऊपर आ रहे हैं।
8: क्या बात है। अच्छा असगर साहब एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जो चरित्र चित्रण होता है या जो पात्र होते हैं कहानी के, वो कहाँ से उपजते हैं और कैसे उसमें आप प्रयोग करते हैं?
9: ये पात्र की कल्पना करें आप तो वो स्वयं बताता है कि इन घटनाओं में वो क्या करेगा, क्योंकि लेखक की पात्र के साथ इतनी आत्मीयता हो जाती है कि एक प्रकार से वो पात्र के साथ रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, महान लेखक जो टॉल्स्टॉय हैं उनके बारे में कहा

0: जाता है कि वो एक होटल से सीढ़ियां उतर रहे थे, सीढ़ियां इतनी पतली थी कि एक आदमी उतर सकता था, एक चढ़ सकता था। तो जो आदमी चढ़ रहा था उसके चढ़ने के लिए ये रुक गए, तो उस आदमी ने पूछा कि आप उतर भी सकते थे, एक आदमी उतर सकता था। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ अन्ना कैरिनिना थी मेरी पात्र।
1: जी जी।
0: तो लेखक इस रूप में अपने पात्रों को जीता है।
1: जी।
0: आमतौर से ये होता है कि जो कहानी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ पात्र जो है वो सहायक बनते हैं, तो ऐसे पात्रों की कल्पना की जाती है। लेकिन कल्पना में ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि ये कोरी कल्पना न हो।
1: चलिए तो बात करते हैं हम लोग सरगम कोला की। सरगम कोला कहाँ से उपजी?
0: इसका जो मुख्य पात्र है तो वो मुझे एक वास्तविक पात्र के रूप में मिला, मंडी हाउस के आसपास घूमता हुआ, दास गुप्ता का। और फिर धीरे धीरे ये पूरा की पूरी कहानी का रूप जो है वो मेरे मन में आने लगा। ये एक छोटी सी वास्तविक घटना पर आधारित है।
1: आपने जो इसमें निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के चरित्रों को उसमें उठाया है, तो ये तीनों वर्गों को जानबूझ के आपने इसमें रखा कि आपको लगा कि शायद ये तीनों वर्ग तीन वर्गों का रिप्रेजेंट करेंगे या उसका प्रतिनिधित्व करेंगे?
0: देखिए, ये जो हमारा कहानी का जो परिवेश है ये इनके बिना बनता नहीं है। अगर आप इनमें से किसी एक वर्ग को निकाल देंगे तो कहानी का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये एक प्रकार से पूरी सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है, जिस क्रॉस सेक्शन में वो लोग भी हैं कि जिनको साहित्य से, संगीत से, कलाओं से कोई रुचि नहीं है, वो एक अप संस्कृति जो है, अप कल्चर जो है वो उसके लोग हैं, वे हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, और वे हैं जो अपना पेट पाल रहे हैं। तीनों जो हैं वो एक प्रकार से मिला करके सिनेरियो को बनाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये तीन रंग हैं, जिन तीन रंगों से ये चित्र बन रहा है। अगर हम एक रंग भी कोई निकाल देंगे तो वो चित्र हमारा अधूरा रह जाएगा।
1: चूंकि कहानी में जैसे आपने दिखाया भी है कि जो निम्न वर्ग का इंसान है, जो छोटा सा ढाबा चला रहा है वहां पर, वो फिर भी सरोकार रखता है उस शख्स से जिसको पास नहीं मिला है, या उसको लगता है कि शायद मेरा दायित्व है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूं। और दूसरी तरफ वो लोग जो अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो सभ्य हैं, जिनके पास पैसा भी है, जो आराम से सुन भी सकते, तो ये जानबूझ के आपको लगा कि इस तरह से दिखाना जरूरी है ताकि इसका चित्रण और बढ़िया नजर आए, बहुत अच्छा निकल कर आए।
0: देखिए, कहानी का तो मुख्य जो ढांचा बन रहा है वो बन यही रहा है कि वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे चाहे कला की समझ रखते हों या न रखते हों, वही कला के संरक्षक और वही कला के पारखी माने जा रहे हैं। इसलिए कि उनके पास आयोजन करने का, उनके पास चीजों को मैनेज करने का साधन है, तो जानबूझकर ही रखे गए हैं ये पात्र। और ऐसा है भी कि हमारे देश में आप देखिए कि किस प्रकार से साहित्य और संस्कृति को बदल दिया गया है एक बहुत बड़े व्यवसाय में, ये शो बिजनेस बन गया है, जहाँ पर क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि ये है कि मीडिया के लिए, उसके बाद ये है कि विज्ञापनों के लिए। बिना विज्ञापन के किसी प्रकार की संस्कृति जो है हो ही नहीं सकती है, आज स्थिति है। तो बिना बाजार के संस्कृति नहीं चल सकती। तो ये सरगम और कोला, ये दो शब्द जो हैं वो संगीत और बाजार के प्रतीक हैं। तो ये है कि कहानी कहती है कि जब तक इनको आप जोड़ोगे नहीं तब तक संस्कृति शायद जो है संस्कृति के रूप में नहीं रहेगा, सरगम नहीं होगा बल्कि सरगम कोला होगा, क्योंकि कोला उसमें आकर के एक ऐसा तत्व जुड़ा है जिसको कि मार्केट इकोनॉमी ने जोड़ दिया है कि आप उससे निकल ही नहीं सकते।
1: दो और जो चरित्र हैं बहुत मुख्य चरित्र हैं, एक ड्राइवर और एक वो ऑर्गेनाइजर, ये जब आप उठाते हैं तो कहाँ जोड़ते हैं और किस तरीके से आप इन चरित्रों को जोड़ते हैं आप?
0: देखिए, ये ड्राइवर एक प्रकार से सत्ता का एक अंग है, इसलिए उसके लिए वो सब कुछ बहुत सरल है जो कि दास गुप्ता के लिए बड़ा कठिन है। सत्ता का एक अंश होते हुए भी क्योंकि वो निम्न मध्य वर्ग का है तो किसी न किसी रूप में वो उसके दर्द को समझता है, दर्द को समझ रहा है। हालांकि उसे संगीत में कोई रुचि नहीं है ड्राइवर को, लेकिन उसको ये जब वो देखता है कि सर्दी में एक आदमी बाहर बैठा है, इतनी देर हो गई है और इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं अंदर जा सकूं, तो उसके मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती है। मतलब सहानुभूति आयोजक के मन में नहीं होती है, इस ड्राइवर को एक मानवीय आधार के ऊपर ये लगता है कि हम अगर इसकी सहायता कर सकेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो जाता है, वो उसकी सहायता करता है, उसको पास ला कर देता है। और कहानी ये भी स्थापित करती है कि देखिए जेन्युइन आदमी के लिए जो कुछ पाना इतना मुश्किल है, तो एक आदमी के लिए वो सब पाना कितना आसान है। अगर वो पावर से जुड़ा हुआ है, उसने दो तीन नाम लिए, तो आयोजक जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब।
2: अभी आप प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला पर आधारित नाट्य रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर दलजीत सचदेवा का था और भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, संजय वर्मा, सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह नेगी, नितिन भसीन, राजकुमार नाहटा, नीलाक्षी, शालू सिंह और मनाल सईद। प्रस्तुति सहयोग किया हरदीप सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार।
3: श्रोताओ, ये रूपक आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

AIR at 90. ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत हैं उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश प्रसाद के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

माया छोड़ जाली भुगतली हाल चौगर सा बुढ़ कसी हसन की काल लाए माया छोड़ जाली भुगतली हाल मेरा हिया भरी ऊंचा चसिननी

काटी में को साचा झगुली को पोंछा धर्म को गोछा साटी में को साचा झगुली को पोंछा धर्म को गोछा मदनवा नोछा दिल्ली में बैरू छा नन भवा खेलू छा जय घड़ी समझू छी।

ढकुन्यालो ठायो तेल चायो सनमुख मेल भरी पायो के पुलिया रायो ढकुन्यालो ठायो तेल चायो सनमुख मेल भरी पायो मुखड़ी को मासु मेरो सुरती ले खायो बुढ़िया का बल दले अदगड़ो पायो अरे घी दूध की कमी पड़ी पका ले यूं सायो

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज के कलाकार हैं सुरेश प्रसाद।

0: सुरेश प्रसाद के गाए इस कुमावनी लोकगीत के साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है खुमानी, आड़ू और प्लम की बागवानी में रोग और नियंत्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल कुमार।
8: बागवान भाइयों व बहनों, उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा, भौगोलिक परिस्थिति और जैव पर्यावरणीय विविधताओं के कारण फसलों उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल है। राज्य में आड़ू, प्लम व खुमानी जैसे गुठलीदार फलों का एक विशेष महत्व है। आड़ू, प्लम व खुमानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत आदि जिलों में उत्पादित किए जा रहे हैं। इन फलों में कई प्रकार के विटामिन, खनिज पदार्थ और अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपभोक्ताओं के लिए बहुत लाभदायक है। किसानों का गुठलीदार फलों की ओर अधिक आकर्षण का बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ता तापमान पर्वतीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले मुख्य फलों जैसे सेब आदि की खेती के लिए प्रतिकूल होता जा रहा है। किसान सेब की खेती से आड़ू, प्लम व खुमानी की खेती की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किसानों ने सेब जैसे फलों के लिए गुठलीदार फलों को ही क्यों उपयुक्त विकल्प चुना। इसका कारण

कारण जलवायु परिवर्तन से गुठलीदार फलों की खेती के लिए अनुकूल होती परिस्थितियां हैं। सभी शीतोष्ण फलों में गुठलीदार फलों को सबसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। यही विशेषता गुठलीदार फलों की वर्तमान तथा भविष्य में खेती के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गुठलीदार फलों में समय समय पर कई बीमारियों व कीटों का प्रकोप होता है, जिससे उत्पादन में 30-40% कमी आ सकती है। आड़ू, प्लम व खुमानी में लगने वाली बीमारियों व कीटों की समय पर रोकथाम करके अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गुठलीदार फल कई प्रकार के रोगों से प्रकोपित हैं। उनमें मुख्य रोग इस प्रकार से हैं: पत्ती मुड़न, आड़ू की जड़ों पर गांठे बनना या क्राउन गाल, खुमानी का सफेद चूर्ण रोग। पत्ती मुड़न दो कारणों से होता है, पहला फफूंद तथा दूसरा कीट है। ये दोनों ही आड़ू व खुमानी के पत्तों को मोड़ते हैं, परंतु बगीचे में इनके लक्षणों की पहचान करना आसान नहीं होता है तथा उत्पादकों के लिए यह पता लगाना मुश्किल होता है कि यह पत्ता फफूंद से मुड़ा है या कीट के कारण। इस असमंजस में किसान यह नहीं समझ पाते हैं कि इस समस्या की रोकथाम के लिए फफूंदनाशक इस्तेमाल करें या कीटनाशक। इसी दुविधा के कारण यह समस्या गुठलीदार फलों में फैलती जा रही है तथा इसकी रोकथाम मुश्किल होती जा रही है। पत्ता मुड़न के कारण पौधे कमजोर पड़ जाते हैं तथा फल भी कम तथा छोटे आकार के लगते हैं। अब बात करते हैं फफूंद से होने वाले पत्ती मुड़न की। यह बीमारी आड़ू व खुमानी उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे ही नई पत्तियां निकलती हैं, यह बीमारी टेफ्रिना डिफॉर्मेंस नामक फफूंद के कारण पैदा होती है। प्रकोपित पत्तियां मुड़ती हुई, सिकुड़ती हुई व मोटी दिखाई देती हैं। इन पत्तियों का रंग लाल से बैंगनी और पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। जैसे जैसे मौसम बीतता है, लाल रंग हल्का हो जाता है, पत्तों का हरापन लगभग गायब हो जाता है और प्रभावित भागों पर एक चूर्णी आवरण का लेप दिखाई पड़ता है। इस तरह पौधे की शक्ति क्षीण हो जाती है और फलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फल छोटे व टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं और वे जल्दी गिर जाते हैं। पुराने फलों पर टेढ़े मेढ़े व झुर्रीदार क्षेत्र दिखाई देते हैं। रोगी पत्ते आकार में स्वस्थ पत्तों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं तथा अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। फफूंद के बीजाणु कलियों व नई टहनियों की छाल पर शिशिरातिचार करते हैं और वे आगामी बसंत ऋतु में नई पत्तियों को प्रकोपित करते हैं। जब नई पत्तियां खिलती हैं तब ठंडा और नम मौसम रोग के लिए अनुकूल होता है। इस प्रकार बीमारी की तीव्रता एक साल से दूसरे साल बदलती रहती है। इसके बाद बात करते हैं एफिड से होने वाले पत्ती मुड़न की। यह आड़ू, प्लम व खुमानी का सबसे नुकसानदायक कीड़ा है। इसका नाम माइजक स्पर्शकी है। यह खिलती कलियों का रस चूसता है, जिसके कारण पत्ते मुड़े हुए निकलते हैं। प्रकोपित पेड़ों पर फूलों की कलियां भी कमज़ोर होती हैं, जिससे फल कम लगते हैं और छोटी अवस्था में ही गिर जाते हैं। यह कीट फूल आने से पहले और फूल आने पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। पत्ती मुड़न एफिड के संदर्भ में एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इससे मुड़ने वाला पत्ता बाहर की तरफ मुड़ता है और पत्तों पर कीट रहते हैं। यह लक्षण बगीचे में पत्ती मुड़न एफिड के प्रकोप की पहचान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कीट का जीवन चक्र स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। वयस्क मादा कीट पतझड़ के मौसम में प्रकोपित वृक्ष की शाखाओं पर अंडे देती हैं। इसके बाद बसंत ऋतु तक अंडों का निरंतर विकास होता रहता है तथा फरवरी व मार्च के महीने में अंडे फूट जाते हैं। अंडों का रंग शुरू में पीला या हरा होता है, जो कि परिपक्व होने पर काला पड़ जाता है। अंडे फूटने के पश्चात नवजात निरंतर पौधे के कोमल भागों से रस चूसते रहते हैं। इस प्रकार कीट का जीवन चक्र चलता रहता है। पत्ती मुड़न से किसानों को काफ़ी आर्थिक हानि होती है। पैदावार की दृष्टि से देखा जाए तो इस समस्या से उत्पादकों को
30-50% हानि हो सकती है। उत्पादित फल आकार में छोटा होने के कारण अच्छे स्तर का मूल्य नहीं पाता है। इस समस्या से आड़ू, प्लम व खुमानी के फलों की निर्यातक गुणवत्ता पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अधिक क्या कहें, फल अपने निर्यात करने की अधिकतर विशेषताएं खो देते हैं, जिससे उत्पादकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। गुठलीदार फलों के अच्छे उत्पादन के लिए पत्ती मुड़न समस्या का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसमें फफूंद से होने वाले पत्ती मुड़न के लिए सुषुप्तावस्था के अंत में या पत्तों की नोक निकलने पर या गुलाबी कली बनने से पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या कार्बेंडाजिम का 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग का प्रकोप अधिक हो तो एक छिड़काव कलियां खिलने से पहले तथा एक फल लगने के उपरांत करना आवश्यक होता है। इसके अलावा एफिड से होने वाले पत्ती मुड़न के लिए फूल खिलने के 7-10 दिन पहले अथवा गुलाबी कली अवस्था में मेटासिस्टाक्स का 5 ग्राम या ml प्रति 10 लीटर पानी की दर से या डाइमेथ्यूएट का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। यदि पहले छिड़काव नहीं किया हो या प्रकोप अधिक हो तो फूलों की पंखुड़ियां झड़ने पर भी छिड़काव करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे पेड़ पर अच्छी तरह से छिड़काव होना चाहिए। एफिड की रोकथाम के लिए एफिड को खाने वाले मित्र कीट काफ़ी लाभदायक होते हैं। इन कीटों का जीवन चक्र भी लगभग एफिड की तरह होता है। मित्र कीटों की संख्या मार्च व अप्रैल के महीने में बहुत अधिक होती है। ये कीट एफिड के नवजात शिशुओं तथा वयस्कों को खाते हैं, परंतु मार्च और अप्रैल में बागवानों को कीटनाशकों तथा फफूंदनाशकों के छिड़काव से इन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से ये मित्र कीट मर जाते हैं। इन कीटों में लेडी वर्ड बीटल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फफूंद से होने वाला पत्ता मुड़न और एफिड से होने वाला पत्ती मुड़न बगीचे में एक साथ हो जाए तो क्या करेंगे? ऐसा होने पर समस्या और भी गंभीर हो जाती है। उसमें या तो पहले बताए गए छिड़काव करें या फरवरी मार्च में फूल खिलने से पूर्व या गुलाबी कली अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से और डाइमेथ्यूएट को 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से एक साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। ऐसा करने से दोनों समस्याओं की रोकथाम हो जाती है। गुठलीदार फलों का दूसरा महत्वपूर्ण रोग है आड़ू की जड़ों पर गांठे बनना। इस समस्या को क्राउन गाल भी कहते हैं। गुठलीदार फलों को उगाए जाने वाले क्षेत्रों में यह मुख्य मृदा जनित रोग है। यह रोग पौधशालाओं तथा छोटे पौधों में एक गंभीर समस्या है, परंतु यदि पौधे स्वस्थ पौधशालाओं से नहीं लिए गए हों तो इस रोग का प्रकोप बगीचों में भी देखा जा सकता है। इस रोग के कारण पौधों की जड़ों पर गांठें बन जाती हैं। कई जगहों पर यह रोग 70-90% तक की हानि पहुंचा सकता है। जड़ों पर गांठें बनने के कारण पानी और पोषक तत्वों का संचार प्रभावित होता है। नर्सरी में यदि गांठें मुख्य जड़ों पर बनी हों तो पौधे विकने योग्य भी नहीं रहते हैं और किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। यह रोग एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशेंस नामक जीवाणु से होता है। यह कई प्रकार की फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण पौधों की जड़ों पर गांठें बनती हैं, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इस रोग के द्वारा बने जख्मों के माध्यम से कई अन्य सामान्य रोगाणु भी पौधों को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी के कारण पौधों की जड़ों और क्राउनों पर गांठें बन जाती हैं। इसके अलावा कई बार पौधे के तनों और शाखाओं पर भी गांठें देखी जा सकती हैं। अधिकतर गांठें पौधशालाओं में बनती हैं। ये पौधों के ग्राफ्ट यूनियन के ठीक ऊपर साइन किस्म पर देखी जा सकती हैं। गांठों का व्यास कुछ सेंटीमीटर से कई इंचों का हो सकता है। छोटी गांठें बड़ी गांठों के मुकाबले
मुलायम होती हैं।

इस रोग से जड़ों पर बनने वाली गांठें कई बार सूत्रकृमियों द्वारा बनाई गांठों से भ्रमित करती हैं। इसकी सही पहचान करने के लिए जड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। आमतौर पर जीवाणु द्वारा बनाई गई गांठें जड़ों की एक तरफ बनती हैं, जबकि सूत्रकृमियों द्वारा बनाई गई गांठें जड़ों के चारों तरफ बनती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गांठें जड़ों पर बन जाती हैं परंतु ऊपरी भागों पर कोई भी लक्षण पैदा नहीं होते हैं। क्राउन गाल का जीवाणु अधिकतर पौधशाला की मिट्टी में निवास करता है और बहुत कम बार बगीचों की मिट्टी में निवास करता है। इस रोग

0: कई बार ऐसा भी होता है कि गांठें जड़ों पर बन जाती हैं परंतु ऊपरी भागों पर कोई भी लक्षण पैदा नहीं होते हैं। क्राउन गाल का जीवाणु अधिकतर पौधशाला की मिट्टी में निवास करता है और बहुत कम बार बगीचों की मिट्टी में निवास करता है। इस
1: खुमानी, आड़ू और प्लम की बागवानी में रोग और नियंत्रण, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार की वार्ता। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपरेखा। हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवार स्तरीय संगीत सभा। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर प्रसारित होगा शाम 5:05 पर। आज के कलाकार होंगे नैननाथ रावल। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी प्रसारित होगा शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायत्री कनवाल की वार्ता, विषय होगा डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कुमावनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:41 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे अनूप जलोटा और घनश्याम वासवानी के गाए भक्ति गीत। प्रादेशिक संगीत का आनंद लीजिएगा 7 बजे। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि प्रसारित किया जाएगा। आज की जानकारी का विषय होगा पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरक के प्रयोग का महत्व। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा, संचालन होगा श्री संजय कुमार आर्य का। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे। हमारे सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 7:40 पर। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, आज की फनकार हैं अभिनेत्री नुसरत भरूचा। 17 मई साल 1985 को मुंबई में जन्म हुआ नुसरत का। बचपन बिल्कुल आम बच्चों की तरह पढ़ाई और मस्ती में बीता, लेकिन कहीं दिल में छुपा हुआ था एक सपना कैमरे के सामने आने का। साल 2006 में इन्होंने टीवी सीरियल किटी पार्टी से अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर आई इनकी पहली फिल्म जय संतोषी माँ, और इसके बाद बॉलीवुड में इन्हें पहचान मिली साल 2011 में लव रंजन की फिल्म प्यार का पंचनामा से। इस फिल्म में बबली का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो कमाल की अदाकारा हैं। और श्रोताओं, फिर कई फिल्मों में उन्होंने अपने इस चुलबुले अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल से।
1: कुल की राधा चली
2: ओ चली ओ चली
1: गोकुल की राधा चली
2: ओ चली चली चली
1: गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार

शुदो नुसरत को असली पहचान मिली साल 2018 में आई फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। इस फिल्म में स्वीटी का स्वीट किरदार निभाकर उन्होंने अपनी पहचान को मजबूत किया। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खूब सफलता मिली और नुसरत का सितारा चमक उठा। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।

श्रोतो, नुसरत ने अभिनय की चुनौतियों को हमेशा स्वीकार किया है। ड्रीम गर्ल, छोरी और जनहित में जारी जैसी फिल्मों में अलग अलग मूड के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता को उन्होंने परखा और साबित किया है। उनकी अन्य फिल्में रहीं कल किसने देखा, छलांग, हुड़दंग, राम सेतु और सेल्फी। इसके अलावा उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। और श्रोताओं, आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं उनके फिल्म छलांग का ये गीत।

0: रानी सिंगा।
1: श्रोताओ, छलांग फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार अब संपन्न हुआ। आज की फनकार थी अभिनेत्री नुसरत भरूचा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashwani at 90.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं, लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्मिला जोशी। श्रोताओं, आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम उन गीतों से सजा है जो पंकज उधास की मीठी आवाज का रस कानों में घोल देती हैं। यूं तो पंकज उधास का जिक्र होते ही कई खूबसूरत गजल याद आने लगती हैं, लेकिन श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत को भी उन्होंने अपनी आवाज की मधुरता से सराबोर किया। आज विशेष रूप से हम इनकी आवाज को याद कर रहे हैं इनके जन्मदिन पर। 17 मई साल 1951 को गुजरात के राजकोट में इनका जन्म हुआ था। बड़े भाई मनहर उधास ने पार्श्व गायक के रूप में हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई, तो दूसरे भाई निर्मल उधास भी गजल गायकी का जाना माना नाम है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पंकज उधास ने भी गजल गायकी और पार्श्व गायन में अपने नाम को रोशन किया। आइए कार्यक्रम में पहला

श्रुतो पंकज उधास की गायकी की खासियत उनकी आवाज का ठहराव है। नर्म, गहरी और दिल को छूकर पिघलती हुई सी उनकी आवाज सुकून की वो चादर है जो हर संगीत प्रेमी ओढ़ना चाहता है। आइए उनकी आवाज के इस सुकून को महसूस करते हैं साजन फिल्म के इस गीत में। गीत लिखा है समीर और फैज अनवर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

शुद्ध पंकज उधास की गायकी में लफ्जों का एहतराम है। वो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि हर एक शब्द को जीते थे और हर एक शब्द को उसका हक देते थे। उन्होंने गजल की जुबां आम आदमी तक पहुंचाई। मुश्किल उर्दू के शब्दों को अपनी गायकी के अंदाज में इस तरह पेश किया कि वो सुरों के साथ हर दिल तक पहुंच गई। अगला गीत आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ फिल्म ये दिल लगी से। शब्द रचना समीर की है, संगीत है दिलीप सेन और समीर सेन का।

शुद्ध पंकज उधास की गायकी में सादगी झलकती है, शांत स्वभाव, गले में सुर और आंखों में एहसास। महफिल में बैठते तो हर सुनने वाले को यही लगता जैसे वो सिर्फ उन्हीं से रूबरू हों। उनके गाए गीतों में सरलता, मधुरता और भावों का ऐसा सुंदर मेल सुनाई पड़ता है जो दिल के तारों को छेड़ता नहीं बल्कि दिल के रिश्ते को गहराई दे जाता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उनका गाया हुआ फिल्म दयावान से। इस गीत में उनके साथ आवाज दी है अनुराधा पोडवाल ने, गीत लिखा है अजीज कैसी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रुतो, पंकज उधास की गायकी में एक और ख़ास बात थी लफ्ज़ों के बीच की खामोशी। वो लफ्ज़ों के बीच जो खामोशी छोड़ते थे वो सुनने वाले के जज्बात से जुड़ जाती। दर्द, मोहब्बत, जुदाई, सब कुछ उनकी आवाज़ में इतना साफ था कि समझना नहीं पड़ता, बस महसूस हो जाता है। आइए इस एहसास को एक बार फिर महसूस करते हैं मोहरा फिल्म के इस दो गाने में, जिसे आवाज़ दी है पंकज उधास और साधना सरगम ने। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत है विजू शाह का।

श्रोतो, 26 फरवरी साल 2024 को पंकज उधास इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो हर उस चिट्ठी में जिंदा हैं जो परदेश से आती है, हर उस दिल में जिंदा हैं जो मोहब्बत में तड़पता है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं संगीत फिल्म का ये दो गाना पंकज उधास और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

श्रोताओ, संगीत फिल्म के इसी दो गाने के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार

शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है। अब आप सुनेंगे समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने ईरान

0: को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज आबू धाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। आबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नैननाथ रावल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, नैनना त्रावल के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 रविवासरी संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होगा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस और विश्व हाइपरटेंशन दिवस विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता विषय पर। वार्ताकार होंगी गायत्री कनवाल। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं शाम 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि का समय रहता है शाम 7:15। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरक के प्रयोग का महत्व विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा और संचालन करेंगे श्री संजय कुमार आर्या। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं संध्या 6:41 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम सबरस में। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष में। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:20 और सुबह 10:30 पर प्रादेशिक समाचार, दोपहर 1:05 पर पुनः उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। विचार बिंदु कार्यक्रम में आप सुनेंगे संस्कार विषय पर विचार प्रातः 6:05 पर। आज की बात का समय रहता है प्रातः 6:40। देशगान आप सुनेंगे प्रातः 6:45। कार्यक्रम विविध हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ का 97वां भाग। महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 12:30। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी सोशल मीडिया के समय में सामाजिक बने विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हौसलों की उड़ान एक नई शुरुआत विषय पर सुश्री शिखा शर्मा उद्यमी नानक मत्ता उधम सिंह नगर से संगीता तिलारा की बातचीत। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1286वीं कड़ी। किसान भाई खेती की बातें कार्यक्रम सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों महत्ता एवं उपयोग विषय पर पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार होंगे श्री नवीन चंद्र बेलवाल। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी का समय रहता है शाम 5:15। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे संस्कृति संरक्षण में संग्रहालयों का महत्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी मेघा कपकोटी। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता

सुनते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी सूर्य विषय, विश्व वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे जन सामान्य के लिए संग्रहालय का महत्व विषय पर। समन्वयक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र SSJ विश्वविद्यालय श्री चंद्र प्रकाश फ्लोरिया से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे संजय जोशी। ग्राम जगत प्रसारित होगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विषय पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में। दोपहर 2 बजे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में और शाम 5:05 पर कार्यक्रम शैलस्वर में। भक्ति संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30 और सुबह 11:30 पर। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर कार्यक्रम सबरंग में। दोपहर 1:15, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सबरस और रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत नेचर में। सुबह 10:35 पर कार्यक्रम सुरबहार में। सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम मेरी पसंद में। अपराह्न 2:45 पर एक ही फनकार में। अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों में। शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम सब मना रहे हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यानी विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। दोस्तों, ये दिवस लोगों को संचार तकनीक और इंटरनेट के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में दूरसंचार की भूमिका बढ़ती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुँचने से नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाओं ने जीवन को सरल और तेज बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और सही जानकारी का उपयोग भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकियों ICT के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर डिजिटल डिवाइड को कम करना है। हमें तकनीक का उपयोग समाज के विकास और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित, सुलभ और उपयोगी बनाने का संकल्प लें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आज हम सब मना रहे हैं विश्व हाइपरटेंशन दिवस, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के खतरों, बचाव और सही उपचार के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि अक्सर ये बिना किसी बड़े लक्षण के दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। आज दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, और कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि सभी नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और इसे नियंत्रित रखने के लिए उचित जीवन शैली अपनाएं। भोजन में नमक और तले भुने खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित करें, साथ ही हरी सब्जियां और ताजे फलों का अधिक सेवन करें। रोज़ाना व्यायाम करने की आदत डालें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करें और खुश रहें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। हर महिला को तकनीकी शिक्षा और इंटरनेट तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। डिजिटल क्षेत्रों में लैंगिक समानता होनी चाहिए। तो आइए इस विषय पर अधिक जानते हैं और सुनाते हैं डिजिटल क्षेत्रों में लैंगिक समानता को लेकर ये वार्ता, जिसकी वार्ताकार हैं गायत्री कनवाल।
3: समानता। दोस्तों, आज के दौर में डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल सुविधा नहीं बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो एक बड़ी खाई नज़र आती है जिसे डिजिटल जेंडर डिवाइड कहा जाता है। 2025-26 के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों का प्रतिशत लगभग 77% है, जबकि महिलाओं के लिए यह केवल 63% है। ये लगभग 14% है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। वहाँ महिलाओं के पास स्मार्टफोन तक पहुँच पुरुषों की तुलना में 12% कम है। अक्सर घरों में एक फ़ोन होता है जिस पर पुरुषों का नियंत्रण होता है और महिलाओं को उसे केवल सीमित समय के लिए या निगरानी में इस्तेमाल करने दिया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे तकनीक की कमी नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच, आर्थिक निर्भरता और शिक्षा का अभाव है। डिजिटल टूल्स के माध्यम से महिलाएं अब घर बैठे ई कॉमर्स, मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमा रही हैं। बैंकिंग और यूपीआई जैसी सेवाओं ने उन्हें अपने पैसों पर अपना नियंत्रण रखने की शक्ति दी है। स्वयं और दीक्षा जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म ने उन महिलाओं के लिए भी शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं जो किन्हीं कारणों से कॉलेज नहीं जा सकती। आज 2026 में करोड़ों महिलाएं इन पोर्टल्स के माध्यम से नए स्किल सीख रही हैं। दोस्तों, जब एक महिला इंटरनेट का उपयोग करती है तो वह स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में खुद जागरूक होती है, जिससे समाज में उसकी भूमिका उपभोक्ता से बदलकर निर्णय लेने वाले की हो जाती है। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं, नई चुनौतियाँ भी खड़ी हो रही हैं। AI सिस्टम अक्सर उन डेटा पर आधारित होते हैं जिनमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। इससे ऐसी तकनीकें विकसित हो सकती हैं जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हों, जैसे कि नौकरी के आवेदनों की छटनी में वर्तमान में AI के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स में महिलाओं की संख्या केवल 22% है। यदि हम तकनीक बनाने में वाली टीम में महिलाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो तकनीक सभी के लिए समान हो पाएगी। समानता के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा है। डिजिटल दुनिया महिलाओं के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं रही है। ऑनलाइन ट्रोलिंग और साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराध महिलाओं को इंटरनेट से दूर रहने पर मजबूर करते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 60% युवा महिलाएं ऑनलाइन खतरों के कारण महिलाएं खुद को सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा लेती हैं। इससे उनकी प्रगति रुक जाती है। इस कारण महिलाएं डिजिटल एंग्जाइटी महसूस करती हैं। साथियों, डिजिटल समानता का अर्थ केवल यह नहीं है कि महिलाएं फेसबुक, व्हाट्सएप चला सकती

असली समानता तब आएगी जब तकनीक की उपभोक्ता की बजाय तकनीक की निर्माता बनेगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की संख्या केवल 20 से 25% है, जब कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई डिज़ाइन करने वाली टीमों में महिलाएं नहीं होती तो वह तकनीक अक्सर महिलाओं की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देती हैं। उदाहरण के लिए, शुरुआती दौर में कई हेल्थ ऐप्स में पीरियड ट्रैकिंग जैसा बेसिक फीचर भी नहीं था, क्योंकि उन्हें बनाने वाली टीम में महिलाओं की कमी थी। इसीलिए डिजिटल परिवर्तन में समानता का मतलब है बोर्ड रूम से लेकर कोडिंग लैब तक महिलाओं की सक्रिय मौजूदगी। हमें यह समझना होगा कि जब एक महिला डिजिटल रूप से साक्षर होती है तो वह पूरे गांव को बदल देती है। भारत के ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदी और नमोड्रोन दीदी जैसी योजनाएँ इस बदलाव का जीवित उदाहरण है। आज गाँव की महिलाएँ ड्रोन के माध्यम से खेती में कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। जो तकनीक कभी केवल पुरुषों की संपत्ति समझी जाती थी, आज उसे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ नियंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, डिजिटल सखी कार्यक्रम के तहत महिलाएं घर घर जाकर लोगों को डिजिटल बैंकिंग सिखा रही है। यह न केवल वित्तीय साक्षरता बढ़ा रहा है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके सामाजिक स्तर को भी ऊँचा उठा रहा है। डिजिटल डिवाइड एक और महत्वपूर्ण पहलू है, समय की गरीबी। एक पुरुष अपने खाली समय का उपयोग इंटरनेट पर नई चीज़ें सीखने या मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक महिला घर के काम और देखभाल की दोहरी जिम्मेदारी होती है। डिजिटल परिवर्तन तभी सफल होगा जब हम तकनीक को इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि वह महिलाओं का समय बचाए, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डाले। स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को इतना सरल बनाना होगा कि एक माँ अपने बच्चे को संभालते हुए भी अपने मोबाइल से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके। दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाले काम ने महिलाओं के नए दरवाजे खोले हैं। पहले जिन महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती थी, आज वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऑनलाइन ट्यूशन जैसे कामों से जुड़ रही हैं। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है, क्या महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है? दोस्तों, शोध बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अक्सर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में कम होती है। डिजिटल परिवर्तन में समानता का मतलब यह सुनिश्चित करना भी है कि डिजिटल लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ना हो और उन्हें उनके कौशल का पूरा मूल्य मिले। दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन का सबसे बड़ा असर वित्तीय स्वतंत्रता पर पड़ा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने ही कार्य के लिए घर के पुरुष या बैंक जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। आज जनधन आधार मोबाइल ने इस तस्वीर को बदल दिया है। UPI के आने के बाद से एक छोटी सी दुकान लगाने वाली महिला भी सीधे अपने बैंक खाते में पैसे ले रही है। यह केवल एक ट्रांजेक्शन नहीं है, यह उस महिला का आत्मसम्मान है। जब पैसा सीधे उसके पास में आता है तो वह उसे अपनी इच्छा से खर्च करने और निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है। यही असली डिजिटल सशक्तिकरण है। दोस्तों, जैसे जैसे हम और अधिक डिजिटल हो रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी का मामला नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना सुरक्षित बनाना होगा कि कोई भी महिला अपनी फोटो या अपनी जानकारी को साझा करते समय डरे नहीं। डेटा प्राइवेसी कानूनों को जेंडर सेंसिटिव बनाना होगा। हमें ऐसी AI तकनीकें विकसित करनी होंगी जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले डिजिटल अपराधों को अपने आप पहचान सके और उन्हें रोक सके। अगर हम दुनिया की बात करें तो यूनेस्को के अनुसार तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की कमी से अधिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यदि हम डिजिटल जेंडर गैप को भर दें तो दुनिया की GDP में भारी उछाल आ सकता है। यह केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती है। हमें अपनी अगली पीढ़ी यानी हमारी बेटियों को बचपन से ही कोडिंग और कंप्यूटरिंग को वैसे ही सिखाना होगा जैसे हम उन्हें भाषाएं सिखाते हैं। दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को खत्म किया है। पहले महिलाओं को विधवा पेंशन, मातृत्व थे और मध्यस्थों का सामना करना पड़ता था। आज सीधा बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT

0: के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। डिजिटल समानता का अर्थ है कि हर महिला को इन सरकारी पोर्टल्स को चलाना आना चाहिए। दोस्तों, जब एक महिला अपना डिजिटल हेल्थ आईडी स्वयं संभालती है या ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लेती है, तो वह सही मायनों में आत्मनिर्भर बनती है। डिजिटल साक्षरता उसे मध्यस्थों के शोषण से बचाती है। दोस्तों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से गुजर रही है। डिजिटल तकनीक इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रही है। महिलाएं खेती और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सबसे आगे होती हैं। यदि स्मार्ट एग्रीकल्चर टूल्स का उपयोग करना सीख जाए, तो वह न केवल अपनी फसलें बचा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी नेतृत्व कर सकती है। डिजिटल परिवर्तन का एक ऐसा पहलू है जो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। डिजिटल अंतराल के भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यह डिजिटल आत्मविश्वास की कमी भी है। हमारे समाज में एक अनकही धारणा है कि तकनीक पुरुषों का काम है और महिलाएं मशीनें या गैजेट्स ठीक से चला नहीं सकती हैं। यह रूढ़िवादिता महिलाओं के मन में एक प्रकार का तकनीकी भय पैदा करती है। जब एक लड़की को बचपन में ही कंप्यूटर के अलावा खिलौने और रसोई के सामान दिए जाते हैं, तो यह जो है उन्हें सीमित किया जाता है। दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन में समानता तब आएगी जब हम इस मनोवैज्ञानिक दीवार को गिराएंगे। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां महिलाएं बिना किसी भय के गलती करने और सीखने के लिए स्वतंत्र हो। तकनीक सीखने की कोई उम्र या लिंग नहीं है। डिजिटल जेंडर गैप को भरने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सस्ते स्मार्टफोन और विशेष डेटा पैक उपलब्ध कराने होंगे। हमें परिवारों को यह समझाना होगा कि बेटी के हाथ में मोबाइल खतरा नहीं, बल्कि उसकी तरक्की का रास्ता है। दोस्तों, डिजिटल परिवर्तन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। यदि हम चाहते हैं भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, तो हमें अपनी आधी आबादी को डिजिटल रूप से साक्षर और सुरक्षित बनाना ही होगा। डिजिटल समानता का अर्थ केवल इंटरनेट पहुंच नहीं, बल्कि महिलाओं का तकनीक के विकास में नेतृत्व करना है। एक आदमी को शिक्षित डिजिटल साक्षर करने से एक व्यक्ति सशक्त होता है, लेकिन एक महिला को डिजिटल साक्षर करने से पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ी सशक्त होती है।
1: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में अब आज के अंक घटनाक्रम की ओर, जिसमें देंगे जानकारी इस सप्ताह घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। दोस्तों, 15 मई वर्ष 2026 को हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सिंधु जल संधि पर दिए गए फैसले को भारत के विदेश मंत्रालय ने अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया और इसे शून्य और शून्य यानी नल एंड वॉइड घोषित किया। दोस्तों, ये फैसला सिंधु नदी के पानी और भारत के बांधों को लेकर दिया गया था। भारत कश्मीर में किशनगंगा और रातली जैसी जल विद्युत परियोजनाएं बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने इन बांधों के डिजाइन पर आपत्ति जताई और मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया। दोस्तों, वर्ष 1960 में भारत और पाक मध्य जल बंटवारा समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, जिसके तहत तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलज पर भारत का और तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर 80% अधिकार पाक को दिया गया था। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति के दबाव के बीच दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली में बवाल देखने को मिला। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच तेज करते हुए कई आरोपियों को कस्टडी में लिया है। दोस्तों, 16-17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड का दौरा किया। इस दौरान भारत और नीदरलैंड के बीच 2026 से 2030 के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई। इस यात्रा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच गुजरात के धौलेरा में पहला फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने की ऐतिहासिक साझेदारी हुई। चलिए दोस्तों, घटनाक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको एक प्यार।

चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की ओर और डालते हैं नज़र आज यानी 17 मई को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों आज के दिन वर्ष 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपास उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। आज के दिन वर्ष 1861 में स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लंदन में टैटन रिबन की पहली रंगीन तस्वीर रॉयल इंस्टीट्यूशन को दिखाई थी। दोस्तों आज के दिन वर्ष 1975 में जापान की जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। दोस्तों आज के दिन वर्ष 2000 में रूसी संसद के ऊपरी सदन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की थी। दोस्तों आज के दिन वर्ष 2007 में भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था। दोस्तों आज के दिन वर्ष 2010 में देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। चलिए एक नज़र आज भी मुख्य व्यक्तियों के जन्म तथा निधन पर। आज के दिन वर्ष 1739 में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। दोस्तों वर्ष 2014 में भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति और होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का निधन हुआ था। चलिए दोस्तों आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, अंतः प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, प्रतिवर्ष 16 मई को अंतः प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, शुमांशु पांडे, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश चौहरी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, ग्राम नागर कोहरा से बबलू शाहू, जामुन देवी शाहू, एसएम जावेद गुमला झारखंड से, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में

अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

श्रोताओ, उत्तरायण कार्यक्रम में आज हम आपको डिलीवरी एरिया कुमाऊनी और गढ़वाल लोकगीत फरमाइश कार्यक्रम पुराण तो बहुत बहुत स्वागत छू आपको कार्यक्रम में और आपको सभी श्रोतान के आपको दगड़ी मनी साग प्यार भरी नमस्कार। तो पहली कन्नू कुछ बातचीत। श्रोताओ, शिक्षा उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित ना बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करण छू, समाज राष्ट्र निर्माण करने वाल नई पीढ़ी विकास दगाड़ एक नई शिक्षित समाज का निर्माण करनी, किले की समाज राष्ट्र निर्माण करने वाल नई पीढ़ा विकास वास्तव में शिक्षा के एक उद्देश्य छू, जिमें निर्णय निर्णय मानसिक विकास समस्या समाधान और तार्किक सोच जा कौशल विकसित करना के लिए शिक्षा एक आवश्यक उपकरण मानी जा, यह रचनात्मक और नवीनता जस नई नई चीज़ों को जन्म दी। शिक्षा ज्ञान कौशल और चरित्र गुणों संचरण छू और यह हमको नागभाल चीज़ के बारे में सीखूँ और बतूँ। जैसे भीमराव अम्बेडकर जूल करो छू कि शिक्षा मनखी में पहली बे मौजूद पूर्णता अभिव्यक्ति छू, शिक्षा वो छू जो मनखी के हर क्षेत्र में जाग में निर्भर पड़ूँ और एकता सीखूँ जो हमको अपूर्ण जन्म सिद्ध अधिकार के समझूँ और उनके स्वतंत्रता हवेर संघर्ष करण सीखूँ। शिक्षा एक मनखी के आकार दें, जैसे कोई देश एक स्थिति निर्धारित करण में मनखी आवश्यक होनी, उसी के हर एक राष्ट्र देश एक स्थापना शिक्षा पर रहें, किले की यह एक विशेष स्तर में ज्ञान नैतिकता और जागरूकता के बढ़ावा दी और प्रौद्योगिकी विकास लीजिए महत्वपूर्ण मानी जा। समाज में शिक्षा भूमिका पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़नी, जिमें जीवन की गुणवत्ता बढ़ून बलिभेर समाज के बदलने की क्षमता वाले प्रतिभाशाली मनखी के विकास के बढ़ावा देने में शामिल छू, किले की ज्ञान और कौशल सीखने में संभावना प्रदान करूँ जो वास्तव में पूरी दुनिया के बदलने लाग रहे। शिक्षा समाज के लिए महत्वपूर्ण छू, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध न केवल व्यक्तित्व विकासक लीजिए बल्कि पूर्व रूप सामाजिक विकास लीजिए महत्वपूर्ण मानी जा, जमें गरीबी कम करण देश में स्वास्थ्य में सुधार अपराधों में कमी सामाजिक जीवन में सुधार कमजोर आबादी जीवन के लीजिए बेहतर गुणवत्ता। श्रोताओं, हर मन के कहें शिक्षा मौलिक अधिकार छू जो कोई देशक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हमारे भारत दुनिया दोहर सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश छू, जैक साक्षरता वर्तमान में लगभग 80% छू, कोई देशक युवा भविष्य लीजिए नींव धनी या हम कह सकनू कि देशक भविष्य होनी, जमें अगर ज़्यादा अवसर प्रदान करी जाओ तो एक प्रभावी शिक्षा और शिक्षण प्रणाली स्थापित करनी, युवा अपन और राष्ट्र द्वेल जी एक उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करण में सक्षम होनी, यह लीजिए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बढ़ावा देना लीजिए शिक्षा के लिए भूमिका बहुत जरूरी मानी जा। शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊँ, क्योंकि यह कोई देश एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान थी, यह एक प्रगति आधारशिला और एकजुट और एकीकृत समाज के बढ़ावा देना साधन मानी जा जो राष्ट्र निर्माण में शिक्षा भूमिका में राष्ट्रीय पहचान के बढ़ावा दी, जिनमें शिक्षा छात्रों को देश के इतिहास संस्कृति परंपराओं और मूल्यों

बारे में पढ़वीर राष्ट्रीय गौरव और पछाड़ों भावना के पैद करने में मदद करूँ। यह राष्ट्रक नागरिक होने के अर्थ चुकी यह एक साझा समझ बनने में मदद करूँ। शिक्षा माध्यम में कई पृष्ठभूमि व्यक्ति दगाड़ एक साथ बातचीत करने और सीखने का अवसर मिलूँ। यह अपन समझ सम्मान और सामाजिक एकजुटता के बढ़ावा दूँ। एक सामान्य राष्ट्र में जुड़ी होने बढ़ावा भावना के यह बढ़ावा दूँ। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा पूर्व क्षमता उपयोग प्रणाली सरकारों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणालियों में निवेश करण महत्वपूर्ण कदम मानी जाए जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति प्रवाह किए बिना समग्र लीजिए एक सुलभ सरल रह सकूँ। यह के अलावा एक पाठ्यक्रम जो देशा के मूल्यों और आकांक्षाओं प्रतिबंधित करूँ और महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल के बढ़ावा दूँ। सक्रिय और व्यस्त नागरिकों को पोषण के लिए आवश्यक छू जो देशिक प्रगति में सार्थक योगदान दे सको। तो दगड़ियो तो छी अब दगे कुछ बातचीत अखिल आप लोगों का मनोरंजन और आपको सुनानू प्रहलाद सिंह मेहरा गई हो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में अखिल बात कर लूँ हिट इंडिया फिट इंडिया बारे में, जो एक जन केंद्रित आंदोलन छू जगह यथासंभव ज्यादा वे ज्यादा मनखिन भागीदारी दगड़ स्वैच्छिक आधार पर चलाई जाए। यह एक उद्देश्य स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट्स योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्गत देश में स्वदेशी खेलों के संरक्षितकरण और बढ़ावा देना छू। जब शरीर फिट रहो तो मन ले तब फिट रहो, सभी सफल लोग अपन फिटनेस पर ध्यान देने और जीवन शैली में नन नन बदलाव स्वास्थ्य लाभ के लिए हम और मन की तरले पहुँच सकने। श्रोताओं एक जानी मानी बात चूँकि नियमित शारीरिक व्यायाम बढ़ी जीवन फिट बढ़ते रहूँ और स्वस्थ मन की लंबे वक्त तक ले जीवित रहूँ। और देखो मन की जतू फिट रहो उतु ओके बीमारी ले कम हाल। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य खेल योग आसन पैदल चढ़ साइकिल चढ़ो नृत्य या कोई अन्य शारीरिक व्यायाम माध्यम पर मन की कहें फिटनेस और दैनिक जीवन में एक महत्व बारे में जागरूक पैदा करना जो खेलों संस्कृति के बढ़ावा देने में शामिल हो और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा नागरिकों भागीदारी की दगा स्वैच्छिक आधार पर यो चलाई जाए। श्रोताओं फिटनेस केवल एक शब्द ना बल्कि यो एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन आवश्यक स्तंभ छो। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता अनुपस्थित ना बल्कि एक पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक खुशहाली स्थिति छो। एक स्वस्थ व्यक्ति रोजमर्रा गतिविधियों में निपुण लीजिए कोई ले परिवेश मुताबिक अपन अनुकूल करने में सक्षम हो। देखो यह कहिए हिंदी में एक कहावत ल प्रचलित छू पहला सुख निरोगी काया। यह उद्देश्य प्रणाली जी भारत में फिट इंडिया मूवमेंट नींव धरेगी। फिटनेस दैनिक दिनचर्या हिस्से बोर्ड आह्वान करते हुए फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ भारत दिशा में अखिल बढ़ाएगी और एक महत्वपूर्ण कदम ये मानी गई। फिट इंडिया के सभी मनखी के अपन जीवन में एक हिस्से बनाऊे क्योंकि स्वस्थ ऊर्जावान और बीमारियों में मुक्त जीवन जनक लीजिए व्यायाम करण बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के मजबूत करो और मानसिक तनाव को कम करो और यो गंभीर बीमारियों जोखिम बल काफ़ी हद तक है कम करो और यो शारीरिक कार्य क्षमता के लिए बढ़ो जेल अपू दिन भर सक्रिय रुचा और जो हमारे शरीर छू वीक रक्तचाप के लिए नियंत्रित करूँ।

श्रोता वल्ला पुलसुनों की संसन सिराड़ी गई हो कुमावी लोकगीत और आप भगत हगो फरमाइशी लोकगीत नो कार्यक्रम बुरा सुने जब मैं अपन फरमाइशी गीत का हम शामिल करूं तो हमारे पास जो पहली फरमाइश है उछ ग्राम गुणाबाज पोस्ट दनिया अलमार बटी और ये भेजने वाले हमारे श्रोता छीन अमित गोकुल गीता और राजू ये सब दगड़ी सुनने जानी आप फरमाइश पर सुरेश प्रसाद गई हो कुमावी लोकगीत।

जय जसी छजरो छिसाना बुरा से की भूल जैसी हाय मेरी बाना काफलों जय जसी छजरो छिसाना बुरा से की भूल जैसी

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अखिल शामिल करनू एक और फरमाइश जोहर है ग्राम भकुना बसौली जिल अलमड़बटी और एक भेजने वाले हमारे श्रोता छिन नितिन रवि गंगा और संजय। और यह अखिल अपूर फरमाइश पर लिखने की हमार आकाशवाणी केंद्र अलमड़बट जतुल कार्यक्रम होनी जैसे एक उत्तरायण ग्राम जगत किसानवाणी गीत निर्जर यह हमन के भल लागनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्ण हमारे कार्यक्रम सब छोड़ छा और इनुल अपूर्ण फरमाइश जो हमन के दी रहे उमय सुनो जानी एक गढ़वाल लोकगीत जे एक गायक कलाकार छिन अनिशा गुसाई।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, अब अगले हमारे जो फरमेसर है उचू ग्राम कनगाड़ जिल बक्सर बटी और जगह भेजनगर हमारे श्रोता छिन दीपक मनोज कंचन और कैलाश। ये सब दगड़ी सुनने चाहनी प्रदीप कुमार गाई लोकगीत और ये गीत के सुनने जी हमारे पास एक और फरमेसर है उचू ग्राम खुड़धामस जिल अरमाड़ बटी और एक भेजने वाले हमारे श्रोता छिन दीपक सुरेश ठाकुर और आनंद।

श्रोता और कार्यक्रम में अखिल शामिल करनू और फरमाइश जो हमारे भेजे ग्राम कुंवल मछखल जिल अलमड़ा बटिक भोपाल सिंह आनंद सिंह बसंती और कविता ग्राम रेलापाली अलमड़ा बटिक बीरू दीपा सरस्वती और जया और वह ग्राम चबडोला दनिया अलमड़ा बटिक हिमांशु भट्ट मोहन भट्ट राकेश और माया यह सब दगड़ी आप फरमाइश पर सुनना चाहनी नरेंद्र सिंह ने ही गाई हो गढ़वालू गीत।

श्रोताओं, नरेंद्र सिंह नेगी का यो गढ़वाल लोक गीत गए आज कुमाऊनी और गढ़वाल लोक गीत फरमाइश कार्यक्रम प्रभास इतनी का संपन्न हूँ। श्रोताओं, अगर आप बोले आप फरमाइश हमार पत्र कार्यक्रम बुरांस द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अलमाड़ पिनकोड 2-6-3-6-0-1 या फिर हमार मोबाइल नंबर 9411-0112 पर व्हाट्सअप ले आप कर सकता। वो फिर भेंट करें, तब तक लीजिए आप दगड़ी मनीषा के दियो आ गया। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर, और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का शिलान्यास किया। चमोली जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा धारचूला गुंजी में व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया, और टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फार्म को शीतकुल क्षेत्र से जोड़ने हेतु सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण से क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, तथा शीतकुल सितारगंज एवं विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुल क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।
2: चित्रपुल का क्षेत्र आसपास का सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफर हो जाएगा। हमने भी बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य, यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, गुला नदी पर पुल का निर्माण होना है, सभी काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सितारगंज एक उत्कृष्ट क्षेत्र बने, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
1: चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक से वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। बैठक के दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर समन्वय से अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधूरे एवं गतिमान कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। श्री चौधरी ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी वर्ष की योजना जिले के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है, और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं, वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के उनको नामित करें।
1: उत्तरकाशी जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पूर्ति विभाग स्थिति को सुधारने में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा मार्गों पर विभाग की तरफ से मार्च और अप्रैल में छापेमारी कर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि पहले घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन

0: बुकिंग न होने से आम जनता काफी परेशान नजर आ रही थी। वर्तमान समय में जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है।
1: गैस की स्थिति थोड़ा सुधर गई है, जितना बैकलॉग था वो बिल्कुल कम हो गया है। जितने लोग भी अगर आपके पास DAC नंबर है और आपको अगर 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो अभी थोड़ा समस्या कम हो गई है, उनको मिल पा रहा है, आसानी से मिल पा रहा है। लाइन लग रही है क्योंकि डिलीवरी पॉइंट्स उत्तरकाशी में डिलीवरी पॉइंट्स है, अभी होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है और क्योंकि पर्वतीय जनपद इससे बाहर है होम डिलीवरी से, तो इस वजह से अभी जितनी सप्लाई आ रही है बराबर है, पर्याप्त है। इंडियन गैस एजेंसी की लगभग 2 गाड़ियाँ प्रतिदिन आ रही हैं, सफिशियंट है, जिनको हम पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो कवर होते हैं तो उनका एक रोस्टर निकल जाएगा जिसमें रूट चार्ट निकल जाएगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा धारचूला गुंजी यात्रा मार्ग पर व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 80 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिनमें 12 प्राइवेट वाहनों की भी जांच शामिल रही। जांच के दौरान विभिन्न नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 32 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई, जबकि 6 वाहनों के RC एवं परमिट जब्त किए गए। चेकिंग के दौरान 3 ऐसे वाहन पाए गए जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख समाप्त हो चुके थे। बावजूद इसके वे ARTO प्रवर्तन सिवांश कांडपाल ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान बिना वैध अभिलेखों के किसी भी वाहन को यात्रियों के साथ संचालित नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया जाएगा। टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी युवाओं के उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रही है। चंबा ब्लॉक सभागार में संचालित लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी के खुलने से स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत सभी विकास खंड मुख्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है।
3: माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी, उसका उद्देश्य है कि आजकल जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उतने में बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसा प्रमुख स्थान मिले। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि घर में अलग अलग चीज़ें चलती हैं तो उनको घर में पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो ब्लॉक में उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किया गया है जहाँ पर वो लोग आ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट सुविधा है, उनके लिए डेजिनेटेड डेस्क और चेयर है, वो लोग सुबह किसी भी वक्त आ सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने निरीक्षण किया तो बच्चे सुबह 7 बजे से आए हुए थे और वो पूरे दिन भर बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे वाईफाई भी है उनके लिए। उसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें भी फ्री में इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा राधिका ने बताया कि जिला प्रशासन की इस पहल से छात्र छात्राएं ब्लॉक मुख्यालय में रहकर ही तैयारी कर रही हैं।
4: मेरा नाम राधिका है और मैं चंबा से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ब्लॉक में 1 महीने पहले एक लाइब्रेरी खुली थी जिससे हम स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता था देहरादून या फिर अदर सिटी में तैयारी करने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वीडियो सर के द्वारा, जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ।
0: पिथौरागढ़ स्थित हरे सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 1 से 16 मई तक आयोजित प्रतियोगिता में समीर ने प्री क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे, क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी और रजत पदक हासिल किया। ये स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 150 मीटर स्पांसीसी पुल का शिलान्यास किया।

0: चमोली जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं को अनुमोदित किया गया। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा धारचूला गुंजी में व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया गया और टिहरी जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल माई ब्लॉक माई लाइब्रेरी योजना के तहत छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत की इस पावन बेला का शुभारंभ कर रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में इस मधुर भजन के साथ।

श्रोताओं, आइए भक्ति संगीत की इस पावन बेला को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में ये भक्ति वंदन।

श्रोताओं, घनश्याम वासवानी के स्वर में इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने को हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: रूपाणी, देहरादून बीटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा, नी वीरेंद्र दत्त गेरोला। पहली खास समाचार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सितारगंज मां सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 150 मीटर स्पॉन सीसी पुल को शिलान्यास करी। चमोली जिला में जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना का अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपये की योजनाओं तय अनुमोदित करी गई। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना का तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिए गई और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रुद्रनाथ मंदिर कुणी रवाना हुई। भोल 12 बजे तक 45 मिनट पर कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जाला। अब समाचार एक छोड़ बिटी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सितारगंज का शक्ति फार्म सिडकुल क्षेत्र से जोड़ने की खातिर सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 150 मीटर स्पान सीसी पुल को शिलान्यास करी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि ये महत्वपूर्ण पुल का निर्माण से क्षेत्र का लगभग 50,000 लोगों तय सीधु लाभ मिललू और सिडकुल सितारगंज और विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुँचना कुणी लगभग 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाली। उन बोली कि यू पुल क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित करण का साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तय भी नई गति प्रदान कर लो। श्री धामीन बोली कि शक्ति फार्म में पीपीपी मोड मॉडल की माध्यम से मिल्क पाउडर आइसक्रीम एवं चीज निर्माण से संबंधित आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करे जाने छ। एक साथ ही प्रहलाद फलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क को निर्माण कार्य तेजी से चलनु छ, जैकू लगभग 75% कार्य पूरु हो चुकी। चमोली जिला का प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक आयोजित करी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना का अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपये की योजनाओं तय अनुमोदित करी गई। बैठक का दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करी गई। प्रभारी मंत्री निर्देश दिन की योजनाओं तय क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का साथ लागू करे जो और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर समन्वय से अधिकतम लाभ आम जन तक पहुँचाए जो वो न अधूरा एवं गतिमान कार्यों तय प्राथमिकता से पूरा करण का निर्देश भी देने। श्री चौधरी ने जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का प्रस्तावों तय जिला योजना में शामिल करे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त कर दू बोली कि अगला वर्ष की योजना में जिला का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली।
1: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएँ नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करें।
0: भारत सरकार का गृह मंत्रालय का अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली द्वारा खेल कोटा का अंतर्गत आरक्षी सामान्य ड्यूटी का कुल 404 पदों पर भर्ती कुणी आधिकारिक विज्ञापन जारी करी गई। कमांडेंट कार्यालय 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा ये संबंध में जिला खेल अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी और जिला सूचना

0: एवं जनसंपर्क अधिकारी तय चिट्ठी भेजकर जनपद का सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में एक व्यापक एवं प्रभावी प्रचार प्रसार करण को अनुरोध करे गई, ताकि सीमांत क्षेत्र का अधिक से अधिक योग्य खिलाड़ी ये अवसर को लाभ उठा सकूं। भर्ती की पूरी प्रक्रिया द्वि चरणों में आयोजित करे जाली।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणू जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना का तहत राशन कार्ड सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य से यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू कर दिए गई। नई व्यवस्था का तहत अब नागरिक घर बैठे नयू राशन कार्ड बनाने, नौ जोड़ने, हटाने और आवश्यक संशोधन ऑनलाइन कर सकला। सरकारन पुराना RCMS पोर्टल तें आधुनिक तकनीक और सरल प्रक्रियाओं का साथ अपग्रेड करिक URCMS पोर्टल तैयार करिए छे। ये से राशन कार्ड संबंधी सेवा तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक होली। देहरादून का जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवालन बोली कि नई व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ली और लोगों को समय का बचत होली।
2: प्रशासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसने कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे, इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए EKYC का है, वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं मैक्सिमम हमारा, हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना।
0: पंच केदारमन एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान व पूजा अर्चना का बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर को रवाना हुई। डोली आज रात्रि विश्राम को पनार बुग्याल पहुँचली। भोग 18 मई को सुबेर रुद्रनाथ धाम पहुँचली, जैका बाद 12:45 पर भगवान रुद्रनाथ का कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जाला। ये अवसर पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी सहित देश विदेश से बड़ी संख्या में आया श्रद्धालु मौजूद रहन। रुद्रनाथ का पुजारी हरीश भट्ट ने बताई कि 18 मई को दोपहर में रुद्रनाथ मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिया जाला।
3: जेठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, और 18 मई 11:30 और 12 बजे के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बोली कि आस्था को जो सैलाब उमड़ी वैसी सनातन धर्म से मजबूती प्रदान होली।
4: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली का यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा।
0: आखिर में मुख्य समाचार एकदा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

0: टायरगंज मासिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 150 मीटर स्पान सीसी पुल को शिलान्यास करी। चमोली जिला में जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक जिला योजना का अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपया की योजनाओं को अनुमोदित करी गई। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना का तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू कर दिए गई और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रुद्रनाथ मंदिर को रवाना हुई। भोग 12:45 पर कपाट आम श्रद्धालुओं की खातिर खोल दिए जालू। एक साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त होंदू सिमन्या।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज के लोकगीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन ब्रजवासी के गाए इस ब्रज के लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के एल मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के संस्करण में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज के लोकगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के समापन में अब आपको सुनवाते हैं मदन मोहन ब्रजवासी का गाया ये ब्रज का लोकगीत।

श्रोताओं, मदन मोहन ब्रिजवासी के गाए इसी ब्रज के लोकगीत के साथ हमारा आज का प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
1: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, मैं संजय कुमार कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरकों के प्रयोग का महत्व। और इस विषय में आज हमारे जानकारी देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद संजय जी।
1: डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य सुधार क्या है।
2: संजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिट्टी और पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से खाद एवं उर्वरक के द्वारा प्रदान करना पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है
1: जी।
2: और साथ ही जैसे मृदा स्वास्थ्य सुधार का अर्थ है मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता को बहाल करना ताकि वह पौधों को लंबे समय तक पोषण देने में सक्षम बनी रहे
1: जी।
2: जैसे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है
1: जी।
2: वैसे ही हमारी मृदा के स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई बहनों और को ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जैव उर्वरक क्या है।
2: किसान भाई और बहनों, जिन्हें हम जैव उर्वरक के नाम से जानते हैं वह पादप वृद्धि कारक सूक्ष्म जीवों का धूलीय पदार्थों जैसे चारकोल, लिग्नाइट, टैल्क पाउडर और एवं एक विशेष तरल घोल बनाकर के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं
1: जी।
2: और जैसे हम देखें शब्द जो सूक्ष्म जीव है, दो शब्दों का बना है, सूक्ष्म और जीव, यानी ऐसे जीव
1: जी।
2: जो बहुत ही छोटे हैं तथा हम अपनी नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते
1: जी।
2: और जिनको केवल सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से ही देखा जा सकता है। और सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में जीवाणु या बैक्टीरिया, फफूंद या फंजाई या कवक, वायरस, नील हरित शैवाल एवं प्रोटोजोआ इत्यादि आते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहन ये भी जानना चाहते हैं कि ये जैव उर्वरक कौन कौन से पोषक तत्व फसलों को सुलभ करवाने में सक्षम होते हैं।
2: हाँ संजय, जैसे मैंने बताया कि ये जो जैव उर्वरक है वो सूक्ष्म जीवों के बने होते हैं
1: जी।
2: और उन सूक्ष्म जीवों से निर्मित जैव उर्वरकों में पादप वृद्धि कारक गुण एवं रोग प्रतिरोध गुण भी पाए जाते हैं
1: जी।
2: साथ ही ये पौधों को आवश्यक मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम
1: जी
2: और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लौह, मैग्नीज इत्यादि उपलब्ध कराने में सक्षम है
1: जी।
2: इसके साथ ही ये सूक्ष्म जीव कुछ हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है
1: जी।
2: और इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो कि फसलों को रोगों से बचाते हैं
1: जी।
2: और उनके प्रयोग का भूमि पर कोई दुष्परिणाम भी नहीं पड़ता, बल्कि ये भूमि की या मिट्टी के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी खरीफ का समय चल रहा है तो हमारे किसान भाई बहनों को खरीफ में बोई जाने वाली फसलों में किन किन फसलों में इन जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी।
2: संजय जी, हमारे किसान भाई और बहन खरीफ में बोई जाने वाली जैसे विभिन्न फसलें जैसे कि सोयाबीन, गहत या कुल्थी, राजमा, धान, मक्का, मड़ुआ, मादिरा, सब्जियों इत्यादि में विभिन्न पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए एवं फसलों के उन्नत उत्पादन के लिए इन पादप वृद्धि कारक जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, यानी इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं।
2: संजय जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है कि आपने कि ये सूक्ष्म जीव मृदा में, मिट्टी में, फसलों की जड़ों पर, विशेष रूप से दलहनी फसलों की जड़ों पर जो गांठें या ग्रंथियां होती हैं उनमें
1: जी,
2: पत्तियों पर एवं तने पर ये लाभ देने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा विभिन्न पोषक तत्व सुलभ कराने वाले जो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं और क्या हमारे किसान भाई बहन इनके प्रयोग से रासायनिक उर्वरक की बचत कर सकते हैं।
2: बिल्कुल संजय जी, पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले सूक्ष्म जीव दो प्रकार के हैं
1: जी।
2: पहले जो पौधों के साथ सहजीवी रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं
1: जी,
2: जैसे कि राइजोबियम, मीजोराइजोबियम, सीनोराइजोबियम और एजोराइजोबियम
1: जी।
2: और अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं। इसलिए फसल के अनुसार ही हमारे किसान बंधुओं को इसका प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न दलहनी फसलों में जैसे सोयाबीन, गहत या कुल्थी हो गई, राजमा इत्यादि में इनका प्रयोग किया जा सकता है
1: जी।
2: इनके प्रयोग से विभिन्न दलहनी फसलों की उपज में 10-15% तक की वृद्धि पाई गई है। और किसान भाई और बहनों, इनके प्रयोग से फसलों को 50 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है
1: जी।
2: तो इससे हमारे किसान बंधु जो हैं वो रासायनिक उर्वरक की बचत कर सकते हैं
1: जी।
2: अब वैसे तो विभिन्न दलहनों की जड़ों पर गांठों का निर्माण करने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि में विद्यमान है
1: जी,
2: परंतु कई स्थानों पर मिट्टी में इनकी पर्याप्त संख्या ना होने के कारण अथवा प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान राइजोबियम जीवाणु है
1: जी,
2: उसकी कम सक्रियता एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कम क्षमता के कारण
1: जी।

0: इस जीवाणु का जलधनी फसलों में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है
1: जी,
0: जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जड़ ग्रंथियों का निर्माण हो सके
1: जी,
0: और दलहनी फसलों में राइजोम जीवाणु के उपयोग का लाभ अगली बोई जाने वाली फसल में भी देखा गया है
1: जी।
0: तो ये तो बात हुई सहजीवी रूप से रहते हुए जीवाणुओं की बात
1: जी।
0: दूसरे जो स्वतंत्र रूप से रहते हुए जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर जीवाणु पूर्ण स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय आणविक नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं, जिसका प्रयोग पौधे सीधे कर पाते हैं
1: जी।
0: इसका प्रयोग विभिन्न धान्य फसलों जैसे मड़ुआ, मादिरा, मक्का एवं सब्जी इत्यादि में किया जा सकता है
1: जी।
0: इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है
1: जी,
0: और उनकी उपज में लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि करने में यह जैव उर्वरक सक्षम है
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त इस जीवाणु से बीज की जमाव की क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है एवं पौधों में रोगों का प्रकोप भी कम होता है
1: जी।
0: क्योंकि ये फसलों को संपूर्ण नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इसलिए अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए हमारे किसान बंधुओं को शेष नाइट्रोजन का प्रयोग जो है उर्वरकों द्वारा करना चाहिए
1: जी।
0: इसी क्रम में दूसरे जीवाणु जैसे बिजरिंकिया, एजोमोनास, ड्रेक्सिया, बैसिला, स्यूडोमोनास इत्यादि जो कि स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने में सक्षम है
1: जी।
0: इसी क्रम में एक तीसरा जो जीवाणु है एजोस्पर्म जीवाणु बोलते हैं उसको
1: जी,
0: जो कि आंशिक स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसलों को लाभ पहुंचाते हैं
1: जी।
0: इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ मिलता है
1: जी,
0: और फसलों की उपज में 5 से 10% तक की वृद्धि देखी गई है
1: जी।
0: इसका प्रयोग विभिन्न धान फसलों में किया जा सकता है, परंतु मक्का, मड़ुआ और मादिरा और धान आदि फसलों में इस जीवाणु का लाभ अधिक देखा गया है
1: जी।
0: क्योंकि इन फसलों के साथ इस जीवाणु की विशेषता पाई गई है। उर्वरक नाइट्रोजन के प्रयोग के साथ ही एजोस्पर्म उपयोग का फसल को लाभ प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि एजोस्पर्म के प्रयोग करने से जड़ों का अधिक विकास होता है, जिससे कि भूमि से अधिक पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकती है
1: जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये प्रश्न उठता है कि ग्रंथिका नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कैसे करते हैं?
0: यह प्रक्रिया जो है वो एक एंजाइम नाइट्रोजिनेज के द्वारा होती है जो कि राइजोबियम में पाया जाता है, साथ ही जो दूसरे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हमारे जीवाणु हैं जैसे एजोटोबैक्टर और जो स्पाइरलम है उनमें भी ये एंजाइम पाया जाता है
1: जी।
0: और अभी तक जो भी जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण तंत्र खोजे गए हैं उनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम अवश्य मिला है
1: जी।
0: और करीब करीब सब में एक समान होता है
1: जी।
0: दूसरे जीवाणुओं के नाइट्रोजिनेज की तरह सोयाबीन जीवाणु सम का नाइट्रोजिनेज भी ऑक्सीजन परिवर्ती 2 अम्लीय प्रोटीनों का बना होता है जिनको मोलिब्डो लौह प्रोटीन और लौह प्रोटीन कहते हैं
1: जी।
0: जब नाइट्रोजन कार्य द्रव के रूप में हो तब नाइट्रोजिनेज की सक्रियता का अंतिम उत्पाद अमोनिया होता है
1: जी।
0: और एक नाइट्रोजन अणु से 2 अमोनिया अणु संश्लेषित होते हैं
1: जी।
0: अमोनिया से फिर अमीनो अम्ल बनते हैं और इस प्रकार यह तत्व पौधों को प्राप्त होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई बहनों को फॉस्फोरस और पोटेशियम तत्व उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में कोई जानकारी दीजिए।
0: हाँ संजय जी, हमारे किसान भाई और बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये सूक्ष्म जीव से बने हुए जैव उर्वरक हैं वो अघुलनशील फास्फोरस और पोटेशियम को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं
1: जी।
0: और पौधे जो हैं इसका सीधा उपयोग कर पाते हैं। इन्हें फास्फेट या पोटेशियम विलयकारी सूक्ष्म जीवों के नाम से जाना जाता है, जैसे जीवाणुओं में बैसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम इत्यादि एवं कवकों या फफूंदों में जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा इत्यादि सूक्ष्म जीव
1: जी
0: से उत्पादित जैव उर्वरक होते हैं। अतः हमारे किसान बंधु इन फास्फेट पोटेशियम विलयकारी सूक्ष्म जीव से बने जैव उर्वरकों का सोयाबीन, गहत, कुल्थी, राजमा, धान, मक्का, मड़ुआ, मादिरा फसल में फास्फोरस एवं पोटेशियम तत्व की प्रदान करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
1: जी
0: उर्वरक फास्फोरस के बराबर लाभ प्राप्त होता है, और अगर रॉक फास्फेट के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस के बराबर लाभ प्राप्त होता है
1: जी।
0: क्योंकि फास्फोरस के उर्वरक अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, अतः इन उर्वरकों की क्षमता भी कम होती है
1: जी।
0: अतः फास्फेट और पोटेशियम विलयकारी जीवाणु का प्रयोग फसलों में फास्फोरस एवं पोटेशियम तत्व को उपलब्ध कराने के लिए हमारे किसान बंधुओं को अवश्य करना चाहिए
1: जी।
0: और उनका प्रयोग जो है नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जो जीवाणु से बने उर्वरक हैं जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्म, उनके साथ भी हमारे किसान बंधु कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अब यह सवाल है कि इन जैव उर्वरकों को हमारे किसान और भाई बहन किस प्रकार बेहतर पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयोग करके अधिक पैदावार ले सकते हैं?
0: हमारे किसान बंधु इसके लिए इन जैसे विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारे धूलिय पदार्थ जैसे चारकोल, लिग्नाइट, टैल्क पाउडर आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। साथ ही बाजार में तरल जैव उर्वरक इनमें सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को एक विशेष तरल घोल में जीवित रखा जाता है
1: जी।

0: इनकी जो जो लाइफ साइकिल है, जिसको बोलना चाहिए कि शेल्फ लाइफ है, वो भी अधिक है, जिन्हें प्राय कल्चर बायो फर्टिलाइजर इत्यादि के नाम से जाना जाता है और बाजार में आसानी से उपलब्ध भी हैं। किसान बंधु जिन फसलों में बीजों की सीधी बुवाई करते हैं उसके लिए सामान्यतः 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। तो किसान बंधु सबसे पहले किसी छायादार जगह पर साफ बोरी, अखबार, पॉलीथीन बिछाकर उस पर बीजों की ढेरी बना लें
1: जी।
0: और अब बीजों के ऊपर पानी को छिटक कर बीजों को अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे कि हमारे बीज जो हैं वो गीले हो जाएं। और अब हाथ में दस्ताने पहनकर जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को बीजों के ऊपर डालकर उसमें बीजों के साथ अच्छी प्रकार मिलाएं, ताकि प्रत्येक बीज के ऊपर जो है जैव उर्वरक की एक समान परत चिपक जाए
1: जी।
0: इस प्रकार उपचारित बीजों को 20 से 25 मिनट छाया में सुखाकर बीजों की बुआई कर देनी चाहिए
1: जी।
0: दो या अधिक जैव उर्वरकों का एक साथ प्रयोग करने के लिए इनकी आवश्यक मात्रा को एक साथ घोल बनाकर बीजों का उपचार हमारे किसान बंधु कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये बात हुई कि बीजों का उपचार करने के लिए। इसके साथ में किसान बंधु जिन फसलों में पौधों की रिपाई करते हैं
1: जी,
0: जैसे कि धान फसल हो गई, मड़ुए की हो गई और उसके साथ साथ सब्जियां हो गई, तो उनके लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए जैव उर्वरक की 200 ग्राम मात्रा का 25 से 30 लीटर पानी में घोल बना लें
1: जी।
0: और उसके बाद पहले जड़ों को बहते हुए पानी में धोने के पश्चात पौधे की जड़ों को इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखने के पश्चात पौधों की जो रुपाई जो है वो खेतों में किसान बंधु कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय किसान भाई बहनों को कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि सूक्ष्म जीवों से बने जो जैव उर्वरक हैं
1: जी,
0: इन्हें बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक प्राकृतिक जैव उत्पाद है, अतः इनके प्रयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान बंधुओं को कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैव उर्वरकों से मिलने वाला लाभ बहुत हद तक उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है
1: जी।
0: अतः किसी सरकारी या विश्वसनीय स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता का जैव उर्वरक हमारे किसान बंधु को क्रय करना चाहिए
1: जी।
0: इसके साथ ही जैव उर्वरकों को के पैकेट पर लिखी फसल के अनुसार ही पैकेट पर अंतिम तिथि से पूर्व उसको प्रयोग कर लेना चाहिए
1: जी।
0: साथ ही जैव उर्वरकों को अत्यधिक गर्मी एवं धूप से बचाकर छायादार और ठंडे स्थान पर उनका भंडारण करना चाहिए
1: जी।
0: जैव उर्वरकों से उपचारित करने के लिए बीजों को धूप में नहीं सुखाना है, छायादार जगह पर ही उनको उपचारित करना है, अन्यथा हमारे जीवाणु जो नष्ट हो जाएंगे
1: जी।
0: साथ ही जैव उर्वरकों से बीज का उपचार किसी साफ टब, अखबार, फर्श, पॉलीथीन या बोरे पर छाया वाली जगह पर ही करना चाहिए
1: जी।
0: इसके साथ ही हमारे किसान बंधुओं को ध्यान रखना है कि जैव उर्वरकों को सीधे रासायनिक उर्वरकों या खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशी आदि के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इस प्रकार हमारे किसान भाई बहन और इन कृषि उपयोगी जैव उर्वरकों का प्रयोग कर अपनी फसलों में बेहतर पोषक तत्व प्रबंधन कर निश्चित ही अधिक उपज प्राप्त कर मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे किसान भाई और बहनें डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों से अवश्य लाभ उठाएंगे। अगर इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या आप इस विषय से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे निःशुल्क फोन संख्या 1800-1800-2311 पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन संख्या 263601।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि, ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज में शिशोना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए लागत बढ़ने वाले 150 मीटर स्पान शीशी पुल शिलान्यास करो। चमोली जिले में जिल योजना बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं के स्वीकृत करी गो। भारत सरकार के स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू है गो। और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव डोल रवाना भो 12:45 पर मंदिर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जा। अब समाचार विस्तारन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सितारगंजक शक्ति फार्म के सिटकुल बटी जोड़नक लिजी शिशोना नदी पर लगभग 11,41,00,000 रुपए लागतल बढ़ने वाल 150 मीटर स्पान शिशी पुलक शिलान्यास करो। यो मौक पर मुख्यमंत्री कौ की महत्वपूर्ण पुलक बढ़नल क्षेत्रक लगभग 50,000 मैसू के सिद्ध फैद मिलल और सिटकुल सितारगंज और विकासखंड कार्यालय शिशोना तक पुजनक लिजी लगभग 9 किलोमीटर दूरी कम है जल। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र में सुगम आगमन सुनिश्चित करनक दगड़ दगड़ आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नई गति दल। श्री धामिल कहा कि शक्ति फार्म PPP मॉडलक माध्यम बटी मिल्क पाउडर आइसक्रीम और चीज बनाने हेबे जुड़ी आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई बनाई जा रही। यह दगड़ प्रहलाद पलशिया में लगभग 54 करोड़ रुपए लागतल एक्वा पार्क बनाना काम ले तेजील हो रो, जैक लगभग 75% काम पूरे है गो। चमोली जिला प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिल योजना बैठक है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74,23,70,000 रुपए की योजनाओं के स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान विभागवार प्रस्तावित योजनाओं की विस्तारल समीक्षा ले करी गई। प्रभारी मंत्री निर्देश दी कि योजनाओं के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण दगड़ लागू करी जाओ ताकि केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत समन्वयक ज्यादा फैद मैसू तक पुजाई जाओ। उन्हों लादू और जो काम हो रही उनके प्राथमिकता दगड़ पुर करनक निर्देश ले दी। श्री चौधरी जिल प्रशासनक द्वारा सभी प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के जिल योजना में शामिल करी जान पर खुशी जाहिर करते हुए कहो कि आने वाले सालक योजना जिलक सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा।
1: लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के रूप में लागू करें।
0: भारत सरकार गृह मंत्रालयक अधीन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली बटी खेल कोटाक अंतर्गत आरक्षी कुल 404 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी करी जा रो। कमांडेंट कार्यालय 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरगढ़ यह संबंध में जिल खेल अधिकारी, जिल रोजगार अधिकारी और जिल सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के पत्र भेज बेर जिलक सभी खेल प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेडियमों, खेल अकादमियों, स्कूलों और महाविद्यालयों में यह एक व्यापक और प्रभावी प्रचार प्रसार करने का अनुरोध कर रहा ताकि सीमांत क्षेत्र ज्यादा है भी ज्यादा योग्य खिलाड़ी यो मौका फायदा उठा सको। भर्ती पूर्व प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में है।

0: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। भारत सरकारक स्मार्ट पीडीएस योजनाक तहत राशन कार्ड सेवाओं के ज्यादा पारदर्शी सरल और तकनीकी रूप में मजबूत बनाना उद्देश्य यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम URCMS पोर्टल लागू करी है। नई व्यवस्था के तहत अब मैं घर बैठे नई राशन कार्ड बने सकनी, नाम जोड़न हटान और कोई लय संशोधन लय ऑनलाइन कर सकल। सरकारल पुराण RCMS पोर्टल के नई जमाना तकनीक और सरल प्रक्रियाओं दगड़ अपग्रेड करवे URCMS पोर्टल तैयार कर रो। ये राशन कार्ड हेवे जुड़ी सेवाएं तेजी पारदर्शी और ज्यादा सुविधाजनक है। देहरादून के जिल पूर्ति अधिकारी के अग्रवालल को की नई व्यवस्था राशन कार्ड सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेल और मैं शुक बखतक लय बचत है।
1: प्रशासन ने जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है, उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से जो है राशन कार्ड के लिए जो है कोई भी जो है जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनके यथावत चलते रहेंगे। उनके लिए EKYC का है वो दूसरा प्रोविजन है, वो सब लोग कर ही रहे हैं, मैक्सिमम हमारा हाँ वो भी चुका है, और जिनके बने हुए उनको कुछ नहीं करना।
0: पंच केदारों बटी एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्र नानक नाथक चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपनाथ मंदिर बटी रुद्रनाथ मंदिरक लीजी रवाना है। गए डोली आज रात्रि विश्रामक लीजी पनार बुग्याल पूजिल, भो 18 मई हते रत्ती रुद्रनाथ धाम पूजिल। जैक बाद 12:45 पर भगवान रुद्रनाथक कपाट आम श्रद्धालुओं के लीजी खोल दी जाल। यह मौक पर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी दगड़ देश विदेश बटी बहुत संख्या में आई श्रद्धालु मौजूद रहा। रुद्रनाथक मुख्य पुजारी हरीश भट्टल बता कि 18 मई हते दोपहर कने रुद्रनाथ मंदिर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए।
2: जेठ संक्रांति के दिन भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह मूर्ति वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर यहाँ प्रांगण में रखी गई थी। 15 और 16 तारीख को यहाँ पे सबके लिए दर्शनार्थ रख के आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, और 18 तारीख मई 11:30 और 12 बजे के बीच में सभी श्रद्धालुओं के लिए चतुर्थ केदार जहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन है सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
0: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को की आस्था जो सैलाब उमड़ रो वेल सनातन धर्म के मजबूती मिले।
3: भगवान रुद्रनाथ जी की डोली का यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूँ कि आस्था और श्रद्धा का जो समुद्र है वो चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ध्वजवाहक के रूप में हमारी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्वर्गीय हरवंश कपूर की स्मृति में देहरादून केंद्रीय विद्यालय ONGC ग्राउंड में पर्यावरण संकल्प साइकिल रैली फ्लैग ऑफ करवे शुभारम्भ करो। कार्यक्रम में बहुत ही संख्या में जवान नानतीन, स्कूली नानतीन और नागरिक शामिल हैं। यह मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को की पर्यावरण संरक्षण आजक बखतक सबू हबे ठूल जरूरत छू, और साइकिल चलान न केवल स्वास्थ्य के लिए भल छू बल्कि पर्यावरण संरक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम छू। उन्होंने कहा कि यह कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण संकल्प के लिए आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान छू। अंत में मुख्य समाचार एक बार आए सुनो।

0: पुष्कर सिंह धामिल सितारगंज में शिशोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए लागतल बनने वाले 150 मीटर स्पान शिशि पुलक शिलान्यास करो। चमोली जिले में जिल योजना बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 वार्षिक जिल योजना के अंतर्गत कुल 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की योजनाओं के स्वीकृत करी गो। भारत सरकार के स्मार्ट PDS योजना के तहत यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लागू है गो। और चतुर्थी केदार भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव डोल रवाना भो 12:45 पर मंदिर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यौ अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है उत्तम सिंह का।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून

0: धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: આગળના કાર્ય નિદેશાલય ઉત્તરાખંડ દ્વારા જનહિત મે જારી।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का ये खूबसूरत गीत। आवाज़ है उदित नारायण की। समीर के लिखे इस गीत को सरगम में बांधा है जतन ललित ने।

0: जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू।
1: श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं?

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के समापन में अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत सावंत और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म प्यार तो होना ही था का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: नचना यार, नचना।
1: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा, वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ऐ गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

श्रोताओं, अभिजीत सावंत और अलका याग्निक की आवाज़ में इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, अब पेश है गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल।

श्रोताओं, नूरजहाँ की आवाज़ में इसी प्रस्तुति के साथ हमारा आज का गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया और देश के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल का 74वां संस्करण आयोजित किया गया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेडो और डैनियल मार्थिन से 12-21, 23-25 से हार का सामना करना

0: पड़ा एक रिपोर्ट।
1: भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड ओपन में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में शुरुआती गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए जूझते दिखाई दिए और इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले गेम को 21-12 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और गेम को आखिर तक खींचा, जहां लगातार 5 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे आखिरकार 23-25 से हार गए। इससे पहले सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गुओ सेफेई और नूर इजुद्दीन को हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल में जगह बनाई थी। सात्विक और चिराग तीसरी बार थाईलैंड ओपन के खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। इससे पहले वे साल 2019 और 2024 में इस खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: शायद उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खिताब जीतने पे होती, लेकिन कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे एक शानदार टूर्नामेंट और एक शानदार प्रदर्शन भारतीय स्पेयर की तरफ से।
2: शक्ति ये तो जीतना चाहिए था, दो कारण, एक तो फॉर्म में थे और टॉप सीडेड हैं, सो बस का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी उम्मीद थी ये जो है ये जोड़ी जीतेगी और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। हालांकि टॉमस कप में ब्रॉन्ज मिला, बट फिर भी इस वक्त मैं कहूँगा कि एक अच्छी बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों। पर हाँ, आप इस जो क्रूशियल मुकाबला था उसमें पीछे रह गए।
0: जी, पीछे रह गए, क्योंकि हमने इस जोड़ी के साथ देखा पिछला वर्ष भी जिस तरह का रहा, एक फाइनल था काली, लेकिन इंजरीज ने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे एक रोल अदा किया है, क्योंकि चिराग शेट्टी या साईराज में से कोई भी एक खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है तो फिर पेयर बिगड़ता है और वो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं जाता है। तो कह सकते हैं कि इंजरी जो पिछले साल हुई इन खिलाड़ियों के साथ लगातार, जिसने साथ नहीं छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अभी भी लय तलाशने में दिक्कत कर रही हैं।
2: हाँ, पर वापसी तो हो ही गई थी, टॉमस कप में परफॉर्मेंस अच्छा था, तालमेल भी अच्छा था। पर ये आपने बात सही कही कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपके मन में एक वो डर रहता है कि फिर से इंजर्ड ना हो जाऊं, क्योंकि उस लेवल पे इंजर्ड होना और इंजरी से वापस आना बहुत कठिन होता है।
0: जी बिल्कुल, और ये तो डबल्स की बात रही, अगर हम सिंगल्स की बात करें इसी प्रतियोगिता में, पीवी सिंधु शुरुआत में बहुत अच्छी लय में नजर आई, एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक अच्छे एंड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, चाहे वो लक्ष्य सेन हो सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर बाहर होना। सिंगल्स में वो किताबों का सूखा काफ़ी हद तक नज़र आता है, क्योंकि एक दौर आया बीच में भारत में जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार पार्टिसिपेट करते थे और टाइटल्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब टाइटल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पूल तो बड़ा है लेकिन वो मेडल्स में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है।
2: जी हाँ, डबल्स में आप देखिए ना, 2024 में जीते थे यही जोड़ी, और आपने ये बात सही कही, सिंधु तो बहुत निराश कर रही हैं, उनको अपने गेम के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कितना और खेलना चाहेंगी वो, क्योंकि बार बार हारना मतलब उनके रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं में अगर आप देखें, नेहवाल और सिंधु, इन्होंने इंडियन बैडमिंटन को एकदम कहां से कहां पहुंचाया है, फिर जब वो शुरुआत में हार जाती है पहले दौर में दूसरे दौर में तो बहुत ख़राब लगता है। और लक्ष्य सेन तो खिलाड़ी हैं इसमें जो जो पिछले मान लीजिए 10 साल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए हैं, ऑल इंग्लैंड जीतना चाहिए था, ओलंपिक में चूक गए, पर वो यंग हैं अभी, उनके साथ उम्र है, सो आप उम्मीद रख सकते हैं इस सीज़न में अपनी लय पालेंगे।
0: जी बिल्कुल, हमने सीनियर्स खिलाड़ी की बात की, अब कुछ बात नए उभरते खिलाड़ियों की भी हो, जहां भारत की श्रेयांशी वल्ली शेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, सुपर 100 टूर्नामेंट है बहरहाल, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के लिए काफ़ी कुछ देके जाएगा, यहाँ से
2: सीखा होगा बहुत, क्योंकि आप ये एक समझ लीजिए शक्ति कि वर्ल्ड बैडमिंटन में चाइनीज़ हमेशा स्ट्रांग होते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सिंगल हो, डबल्स हो, और यहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट।
0: जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक जो नई पौध इंडियन बैडमिंटन की यहाँ पे खड़ी हो रही, जिसमें उन्नति शर्मा हैं, जिसमें उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, ऐसे उन्हीं सूची में अपना नाम दर्ज कराती हुई श्रेयांशी भी। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी।
3: धर्मशाला में आज क्वालिफिकेशंस का औपचारिक मार्ग हासिल करने की उम्मीद लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर ने वेंकटेश अय्यर की 40 गेंदों पर नाबाद 73 रन और विराट कोहली के 37 गेंद पर 58 रन की

0: बदौलत 4 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरप्रीत बरार ने पंजाब के लिए सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 223 रन का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। टीम के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि मार्कस स्टोनिस और कूपर कॉनली ने 37-37 रन का योगदान दिया। लेकिन ये पारी पंजाब को विजय लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रही। आरसीबी के लिए रसिक डार ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। ये पंजाब की सीजन में लगातार 6ठी हार है, जबकि आरसीबी ने 13 मैचों में 9 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और औपचारिक तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अधिक बात की जाए पहले मुकाबले पे, ये जो प्लेऑफ की 4 सीटें हैं इस पे एक सीट पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैठ गई है, अब 3 के लिए दावेदारी है।
2: इसमें मुझे लगता है हैदराबाद और गुजरात को आप गिन सकते हैं, मतलब जी रेस में तो हैं ही हैं, और राजस्थान को भी जीतने पड़ेंगे दोनों मैच। लेकिन आप शक्ति आप सोचिए कि पंजाब इतनी बेहतरीन शुरुआत और एकदम जो है जो डिक्लाइन आया है कि आप 6 मैच हारते हैं लगातार उस लेवल पे, जब आपके फैंस आपसे उम्मीद रख रहे हैं और टीम की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, आपके पास एक बहुत अच्छा कप्तान है, पर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये 6 मैच लगातार आप हारते गए?
1: जी बिल्कुल, और जिस तरह की शुरुआत हुई थी पंजाब सीजन में फेवरेट्स मानी जा रही थी, आपने 6 मैच खेले, एक बारिश के कारण धुला, लेकिन 5 में आपकी जीत और अब 6 हार, कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन पे अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे जब तक आपकी 5 हार थी आप टॉप 4 में थे, लेकिन आज आपने वो टॉप 4 का स्थान भी गंवा दिया है। आज की अभी के मुकाबले की बात की जाए, दिल्ली कैपिटल्स डू और डाई मैच है नो डाउट। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से एक ऐसी टीम रही है जो सितारों को नहीं लेती है, सितारे बनाती है। एक टीम से बढ़कर एक एकेडमी है और युवा खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टीम उस रेस में कितनी करीब और कितनी दूर पाई जाती है जो प्लेऑफ के लिए जारी है?
2: प्लेऑफ के लिए तो रेस में तो है राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर वो जीत जाती है अपने मैचेस तो टॉप 2 में आ जाएगी, उम्मीद रख सकते हैं। और फिर वही बात, उनके पास बैटिंग, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है राजस्थान के पास। सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी है जो अपने दम पे निकाल देता है मैच, और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है टीम का। सो मैं समझता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल मैच होगा दिल्ली के साथ।
1: जी बिल्कुल, और दिल्ली भी उम्मीद करेगी कि इतना जल्दी अपने सफ़र को समाप्त ना होने दिया जाए और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी संभावनाओं को आगे के लिए जिंदा रखा जाए। अहमदाबाद के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एक रिपोर्ट।
0: प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया। उन्होंने कुल 386 किलोग्राम का भार उठाया, जिनमें से स्नैच में 174 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का भार शामिल था। चैंपियनशिप में भारत के लिए पदकों की शुरुआत कोमल कोहर ने महिला वर्ग के 48 किलोग्राम के क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीतकर की थी। इसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्नैच में रजत और कुल भार में कांस्य पदक अपने नाम किया था। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था, जबकि कल संजना ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 3 कांस्य पदक जीते थे। पुरुष वर्ग में अजीत नारायण भारत के लिए पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। उन्होंने पुरुषों के 71 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीते। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: एक बहुत लंबे इंतजार के बाद गुजरात को भारत को मेजबानी मिली थी, क्या इससे प्रदर्शन कुछ और बेहतर हो सकता था? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, 10 पदक हमारी झोली में आए। मीराबाई चानू नहीं थी इस दल का हिस्सा, इतनी बड़ी खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद भी क्या, क्योंकि होम कंडीशंस थी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पक्ष में थी, कई बड़े देश कंपटीशन से बाहर थे, क्या और बेहतर की उम्मीद थी?
2: आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईरान जो सुपर हाउस पावर हाउस माना जाता है वेट लिफ्टिंग का, उनकी 2 ही एंट्री थी, जिन कारणों से मालूम है आपको वॉर सिचुएशन। पर भारत ने 10 मेडल जीत के अच्छा ही किया है, कम से कम आप आगे देख सकते हैं गर्व के साथ। और अजीत ने तो मतलब बहुत समय के बाद 2011 के बाद भारत को एक जो है मेडल दिलाया है। और मैं समझता हूँ लवप्रीत का जो पांचवा स्थान है वो आप अगर फील्ड देखेंगे जो उनका ग्रुप था उसमें बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और मैं ये आगे के लिए आपकी अच्छी तैयारी है जो जिससे उम्मीद की जा रही थी। आप देखिए मीराबाई नहीं थी शुरू में, एक बड़ा एक झटका लगा था भारत को, पर जो उम्मीद थी बाकियों से वो उस पर पूरे खड़े उतरे हैं।
1: जी बिल्कुल, उम्मीदों पे खड़े उतरे। और एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि काफी युवा खिलाड़ियों जैसे कोमल का जिक्र किया जाए, बेहद कम उम्र की खिलाड़ी हैं, मीराबाई की जगह पर आई और एक पदक लेकर के जा रही हैं, दो पदक, और कई नेशनल रिकॉर्ड्स हमने टूटते हुए देखे हैं इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। तो कह सकते हैं कि आने आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एक बेहतर उम्मीद जगी है इस आयोजन से।
2: बिल्कुल जगी है। और देखिए ये सब ओवरनाइट नहीं है, तैयारी हो रही है, जा जाके बहुत इनकी ट्रेनिंग होती है, बाहर भी जाके कैंप करते हैं, भारत में इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा संकेत है और आप उम्मीद रख सकते हैं इन खिलाड़ियों से।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद होगी आने वाले बड़े आयोजनों में जहाँ पे खिलाड़ी कुछ और पदकों के साथ देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 74वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दिल्ली में जीएसटी और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको जहां भी जब भी मौका मिले साइकिल जरूर चलाएं।
3: हम लोग हर संडे इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। साइकिल आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहां हमें न केवल फिटनेस पे ध्यान देना है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हमें ईंधन भी बचाना है, तो साइकिल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, साइकिलिंग जरूर करें।
1: तो नए नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं साइकिल से कि पर्यावरण, इकोनॉमी और फिटनेस एक साथ कई सारे निशानों पे तीर साधती हुई है साइकिल।
2: जी हाँ, और शक्ति मुझे तो याद आता है समय कि जब बहुत साइकिलें देखने को मिलती थी सड़क पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन लोग साइकिल करते थे। जैसे अभी हमने सुना फिटनेस के लिए ज़रूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक अच्छी आदत है और ये तो बहुत लोकप्रिय हो गया है। जो संडे साइकिलिंग है पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय है ये।
1: जी बिल्कुल, और संडे की सुबह सुबह शहर की सड़कों पर लोग अपनी नींद और बिस्तर को छोड़ के साइकिल लेके उतरते हैं और अच्छे संदेश के साथ अपनी सेहत के लिए भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां तीसरी नेशनल डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में विलवन सेंथिल कुमार और जोशना चिनप्पा ने दोहरी जीत हासिल की। उन्होंने अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल पुरुष और महिला डबल्स के खिताब जीतने के बाद एक साथ मिक्स डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया। टॉप सीड वाली जोड़ी ने अभय और सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरी बार मैच डबल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंथिल कुमार और जोशना ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता और जोशना राधिका ने महिलाओं के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी तमाम खबरों के साथ। विजय, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं।

0: स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते

0: नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपेन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2-दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग

अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

करके सिंगार।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कन्यादान का ये खूबसूरत गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, नीरज के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी का ये गीत। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता हूँ फिल्म बॉबी के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान

0: स्नान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
0: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
0: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला, सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं, वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है, वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
0: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं, उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उद्धार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं, आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए।

0: थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
0: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
0: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
0: बुरा मान ली प्लीज। बात यह कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, चिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
0: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
0: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगी?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
0: ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहाँ गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व तो एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही है। न जाने कितनी गांठे पड़ी है उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज सांत्वना प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी, मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूंछ है, औरत के तेज को छीनने वाली है।
0: देखो
1: ये दलीलें अब बासी हो
0: चुकी हैं।
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या
0: है। मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ शिक्षा रोक कर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं,
0: नहीं।
1: जाते हो या नहीं?
0: सांत्वना,
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं है, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं, इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछू?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?

मैं कौन हूँ ये पूछने का साहस है तुम्हें? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूँ। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था? अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो?

0: बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
1: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहाँ गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सरजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: मम्मा, मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
4: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
5: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
6: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
6: सांत्वना, हमें ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है?

0: मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
1: तुम शादी कर लो।
0: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
1: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हो करती हूँ।
1: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद?
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा? ओह, ये माथा तो नहीं है।
0: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओह, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। पर सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
2: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
1: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है।
1: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, बिछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में बिछो का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
1: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर, मैं यहीं उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया, लाइए मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
3: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब

0: बातें करेंगे दोनों, सामान ले आओ।
1: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

टू पे अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरी मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार,

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया।

0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National